0: शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए,
1: द बेटर इट विल बी फॉर आवर यूथ एंड आवर फ्यूचर जनरेशंस। ये बात तो तय है, माने हम अपने पुराने आध्यात्मिक पद्धति के तरफ हमने आना जरूरी तो है, लेकिन इसमें हम जल्दबाजी भी नहीं कर सकते
0: जी।
1: उसके लिए वक्त भी देना चाहिए। एंड यहां एक लोहार की नहीं चलेगी सर, 100 सोनार के ही लगेंगे। क्योंकि हमारे हाथ में लोहा नहीं है सर, हमारे हाथ में सोना है। तो सोने के लिए सोनार के 100 ही लगेंगे।
0: You are very true. बड़ी खूबसूरत तरीके से बात बताई आपने। कई बार मैं मानता हूं प्रवीण जी, और आपने इस बात को कहा तो उसी बात को मैं मान रहा हूं कि हम ये जनरेशन गैप की कहानी हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। हमारे से जो ऊपर थे वो हमारे बारे में ऐसा सोचते थे, हम अपने नीचे वालों के बारे में ऐसा सोचते हैं फिर। लेकिन आपने कहा भी कि उनको थोड़ा वक्त दीजिए, जैसे हमको दिया गया वैसे उनको भी दीजिए, तो दे विल कम अप विद समथिंग मोर ब्यूटीफुल देन वी डिड।
1: हमें वक्त दिया गया या नहीं, ये अलग बात है सर। अगर हमें वक्त ना भी दिया गया हो तो भी हमने कहीं वो चेन ब्रेक करना है कि जो शक्ति हमारे साथ बरती गई वही शक्ति हमने आगे बरतनी नहीं है।
0: करेक्ट।
1: वी हैव टू मेक अ चेंज समवेयर। वी हैव टू प्ले द गेम चेंजर्स। इफ आवर पेरेंट्स वर लेस अंडरस्टैंडिंग, वी हैव टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन।
0: करेक्ट।
1: कहीं ना कहीं हमने ये जनरेशन गैप कम करना है।
0: ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, नो डाउट।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सुंदर। तो दोस्तों बस 2 मिनट का एक पॉज लेते हैं, विचार करते हैं प्रवीण जी ने क्या कहा, और इस बीच में इस प्यारे से भजन को सुन लेते हैं और फिर वापस आते हैं प्रवीण जी के पास।

0: बहुत सुंदर भजन। प्रवीण जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, बात अभी यंग जनरेशन की ही हो रही थी, आध्यात्म की, उनकी समझ की, तो जाहिर से बात है आज की यंग जनरेशन और यूं देखा जाए तो आज का पूरा जमाना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डूबा हुआ है। अब
1: बिल्कुल
0: एक बहुत ही साधारण सा सवाल उठ के बाहर आता है कि साहब, सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ता है, या उल्टा कह लें, आध्यात्म को सोशल मीडिया यूज कैसे करता है, इसके बारे में क्या विचार है आपका?
1: सोशल मीडिया आध्यात्म को यूज कैसे करता है? I may be called negative or I may be called a little blunt, but social media आजकल लेटी को use कर रहा है, वो एक तरह से marketing के तौर पे use कर रहा है। ये मेरा humble opinion है, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। Because अध्यात्म में कोई खर्चा नहीं होता। अध्यात्म has no pre-qualifications। लेकिन आजकल अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो इस कोर्स के उतने फीस भरिए, उस कोर्स के इतने फीस भरिए, ऑनलाइन कोर्स है, आपके वक्त पे हो जाएगा। ये सारी चीजें देख ऑल्दो आई मिट साउंड सिनिकल एंड नेगेटिव, सोशल मीडिया यू नो लाइक अ पर्टिकुलर जॉनर ऑफ फिल्म्स, जहां वायलेंस दिखाया जाता है, जहां गलत चीजें दिखाई जाती हैं, जहां वल्गैरिटी दिखाई जाती है, दीज थिंग्स हैव बीन डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिस्टर्बिंग द यंग माइंड्स एंड इन टर्न अफेक्टिंग एंड करप्टिंग अवर सोशल फाइबर। बट इन स्पाइट ऑफ सच डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंसेस, टू स्टे ट्रू टू वंस कॉन्शियंस इज द टेस्ट ऑफ वंस स्पिरिचुअलिटी। ऑन अ वेरी होपफुल नोट, I could say, like all other aspects of our life, is like a matchbox. Sir, देखिए, एक माचिस की जो तीली होती है, उस माचिस की तीली से आप दिया जला सकते हैं भगवान के सामने।
0: जी।
1: जब अंधेरा हो तो आप मोमबत्ती जला सकते हैं। बुरा काम करना हो तो आप किसी का घर भी जला सकते हैं। उससे बुरा काम करना हो
0: जी,
1: तो किसी पे पेट्रोल डाल के उसे जला
0: भी जला सकते हैं।
1: सर, ये रिसोर्स हमारे पास है। इस रिसोर्स का हम कैसे उपयोग करते हैं, ये हमारी सोच, हमारे माइंडसेट पर निर्भर है।
0: बहुत सुंदर। तो किस तरीके से सोशल मीडिया आध्यात्म को यूज कर रही है, या आध्यात्म में सोशल मीडिया का हम पदार्पण या कंट्रीब्यूशन या कोलैबोरेशन देखते हैं, वो चीज प्रवीण जी ने अभी हमें बताई। अमेजिंगली ब्यूटीफुल। इस बात को भी विचार करने की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। देखिए, सोशल मीडिया मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, एक दुधारी तलवार है, अगर हमें चलाना ना आया तो वो हमें काट देगी, और अगर उसको सही इस्तेमाल करना आया तो वो हमारा फायदा भी कर सकती है। जैसे बताया प्रवीण जी ने बड़ी खूबसूरती से कि किस किस तरीके से यूज करते हैं, किसी का नुकसान पहुंचाना चाहें तो हम अंधेरे में उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला भी सकते हैं। तो देर आर थिंग्स विच वी नीड टू डिसाइड वॉट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। बहुत सुंदर। चलिए, विचार करिए, दो मिनट का पॉज लीजिए, विचार कीजिए, हम वापस आते हैं इस भजन के बाद।

0: बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हुए चलिए, सोशल मीडिया की बात हो गई, यूथ की बात हो गई, अब सोशल स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की हमारे पर असर क्या होता है, इफेक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, प्रवीण जी थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या आध्यात्म हमारा जो तनाव है, एंग्जाइटी है, परेशानियां हैं और हम हमेशा बहुत ज्यादा सोचने में डूबे रहते हैं, अगर इसको साधारण भाषा में और कहें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग, डूबे ही हैं हम उसमें, इसमें आध्यात्म हमारी मदद कैसे करता है, इससे आजाद होने में, मेरा कहने का मतलब है?
1: ये बात तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि जिन जिन तीन चीजों का आपने जिक्र किया है, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी एंड वन मोर थिंग, तो आई कैन रिलेट टू ऑल दोस थ्री सिचुएशंस इन विच यू सेड यस, स्पिरिचुअलिटी डज हेल्प इन मैनेजिंग एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग एंड यू नो आवर डिफिकल्ट माइंडसेट।
0: जी,
1: इंसान जब समुद्र में गिर जाता है तो हाथ पैर तो चलाने ही पड़ते हैं, हाथ पैर चलाते वक्त जो धीरज होता है, वो धीरज होता है, होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज द फोर्स दैट पुशेस अस टू कीप गोइंग,
0: राइट।
1: स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट हेल्प्स अस टू स्टे ग्राउंडेड एंड अवे फ्रॉम दी, हम क्या कहते हैं उन छह चीजों को, षड्रिपु ना, कभी कभी एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, ऐसी चीजें ना हो और इंसान अगर कम कष्टों से सक्सेस मिल जाए तो एक तरह का अहम आ जाता है। तो वैसे हालात में स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस टू स्टे ग्राउंडेड एंड अवे फ्रॉम दी सिक्स पर्सनल एनिमीज। पर्सनल एनिमीज आई से बिकॉज षड्रिपु, षड माने छे, रिपु माने एनिमीज। षड्रिपु होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर।
0: जी,
1: अगर स्पिरिचुअलिटी से हम लेवल हेडेड रहें, अगर हम अपने मन पे काबू कर पाए तो हम इन षड्रिपु से दूर रह सकते हैं। मेरे पिताजी ने कुछ किया हो, उसके बाद मैंने कुछ किया हो, तो हम ये भूल जाते हैं कि मेरे पिताजी ने भी कुछ किया था, मुझे सिर्फ ये याद रहता है कि मैंने क्या किया है।
0: जी,
1: आज मेरे पास अगर 11-12 हैं तो मैं ये भूल जाता हूं कि मेरे पिताजी ने 10 किए हैं और मैंने सिर्फ एक या दो उसमें
0: ऐड किए,
1: बढ़ाए।
0: जी,
1: वो जो 10 का बेस है, आई बिल्ट अप ओनली 1 or 2 ऑन दैट बेस। So this level-headed thinking, this humility comes from spiritual thinking, spiritual way of life.
0: जी,
1: spiritual माने ये नहीं कि आप सिर्फ नाक पकड़ के meditation करें, ध्यान धारणा करें, प्राणायाम करें। Spirituality also, like I said, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कहीं कुछ देर बैठ ये सोच सकूं, जो भी किया कहा माना, उसमें क्या बुरा भला। अगर ये बात हम अपने ध्यान में रखें तो हम लेवल हेडेड आसानी से रह सकते हैं।
0: जी,
1: इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज, डिस्ट्रेस एंड एडवर्सिटी, इट इज दिस स्पिरिचुअल थिंकिंग दैट कीप्स अस गोइंग विथ रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स फुलफिलिंग अवर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स टुवर्ड्स एवरीवन। Those who are weak at heart and mind,
0: जी,
1: माने ऐसा नहीं कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन जिनका स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग जिनकी नहीं होती या कम होती है, दे टेंड टू हार्म themselves either through vices, बुरी आदतें हों, substance abuse हों, या फिर extreme steps जैसे suicide हों।
0: जी,
1: स्पिरिचुअलिटी सर्व्स एज अ लाइट हाउस ड्यूरिंग द स्टॉर्म इन आवर लाइव्स। as we undertake the journey through the ocean of life.
0: Wow, beautiful.
1: That is where spirituality helps us mm-hmm. in overcoming stress, anxiety, overthinking, and from my own example, depression also.
0: Okay.
1: Yes.
0: Right. Amazing. बड़ी गहरी बात बताई है साहब प्रवीण जी ने. इस बारे में बिल्कुल बहुत प्यार से विचार करने की आवश्यकता है. प्रवीण जी के इस बातचीत को मुझे लगता है बार बार सुनने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है. देन ओनली हम किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, ओवरथिंकिंग को भी ओवरकम कर सकते हैं. बहुत सुंदर. लीजिए ना एक प्यारा सा भजन पेश करता हूं, फिर हाजिर होता हूं प्रवीण जी के पास.

0: प्रवीण जी, सिंपल बात अभी तक हुई जो थोड़ी सी गंभीरता से भरी हुई थी, हम लोगों को बहुत विचार करने की आवश्यकता है। वैसे भी दिव्य दर्शन का ये प्रोग्राम गंभीर ही है, हमारी जिंदगी के बारे में है। इट्स नॉट फन, इट्स सीरियस। तो अगर हम आगे बढ़े तो दो शब्द हैं जिनको बहुत आसानी से आपस में मिक्स कर दिया जाता है, हम कंफ्यूज भी रहते हैं। एक है अध्यात्म और दूसरा है धर्म, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। तो प्रवीण जी, आपको क्या लगता है, ये एक ही चीजें हैं या अलग अलग हैं?
1: अब देखिए, सिक्का तो एक ही है
0: जी,
1: लेकिन सिक्के के दो बाजू हो सकते हैं। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन आर टू सेपरेट कंसेप्ट्स।
0: ओके,
1: ऑल्दो देयर मे बी अ फ्यू सिमिलैरिटीज सच एज शोइंग द पाथ ऑफ राइचियसनेस, धर्म हो या स्पिरिचुअलिटी हो, आपको सही रास्ते पे ही चलाएंगे। ना धर्म कहेगा ना स्पिरिचुअलिटी कहेगी कि आप कोई बुरा काम करो। देन दे बोथ स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन टीच यू बिलीफ एंड फेथ इन द हायर सेल्फ और द सुप्रीम सुपर ह्यूमन एंटिटी। बट देन इन स्पाइट ऑफ दीज सिमिलैरिटीज बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड राइटियसनेस एंड रिलीजन
0: जी,
1: द डिफरेंस विल डेफिनेटली आउटनंबर द सिमिलैरिटीज।
0: अच्छा सर,
1: बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि स्पिरिचुअलिटी बिगिंस वेयर रिलीजन एंड्स।
0: जी आहा, क्या बात है
1: जी, जहां जहां रिलीजन खत्म हो,
0: जहां धर्म रुकता हो,
1: जहां धर्म थम जाता है, वहां से अध्यात्म शुरू हो जाता है। आई से दिस बिकॉज रिलीजन बाइंड

0: binds a person to a particular god, to a particular set of do's and don'ts, to a particular set of religious performances, religious practices, traditions, customs, etc., to be performed through a person, through a person's life journey. धर्म कोई भी हो, हर धर्म के अपने अपने मायने होते हैं, अपने अपने फ्रेमवर्क होते हैं, अपने अपने ढांचे होते हैं
1: जी।
0: और उन उस धर्म के मार्ग पर उस ढांचे के अंदर ही आपको चलना पड़ता है।
1: ओके,
0: यू आर नॉट यूजुअली अलाउड टू ब्रेक द फ्रेमवर्क, यू कैन नॉट बी अ गेम चेंजर। वेयर एज spirituality liberates you from all bondages and bindings. There are no do's and don'ts in spirituality. Only thing is, your actions have to conform to your conscience. धर्म में क्या करना है ये आपको वेदों में या अपने बाकी के धर्म ग्रंथों में बताया गया है। अध्यात्म में क्या करना है ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप जिनके जिनके बारे में पढ़े हो, आप जिनको पढ़े हो, उनके विचार अगर आपको सही लगते हैं तो आप उनके दिखाए मार्ग पर चलिए, बस इतना सा है। सी, रिलीजन इंट्रोड्यूसेस यू टू द कंसेप्ट ऑफ गॉड। इन कॉन्ट्रास्ट spirituality takes you on an inward journey and introduces you to the subconscious you, to the conscious you, which is your soul, your atma and your inner self.
1: Ji,
0: religion is an outside affair.
1: Mm-hmm.
0: Whereas spirituality is a total inside affair.
1: Oh, all right.
0: आप एक 100 लोगों का एक एक थॉट ग्रुप ले लें तो पीपल कैन बी फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, येट दे मे शेयर द सेम कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
1: यस,
0: दैट इज व्हाई आई फील रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू वेरी सेपरेट थिंग्स।
1: So, it's not that difficult at all. ये बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, कि अध्यात्म और धर्म दोनों एक चीज, अलग अलग चीजें हैं। और जैसा बहुत ही सिंपल भाषा में प्रवीण जी ने समझाया कि जहां पर धर्म एक तरीके से पूरा होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। बहुत खूबसूरत। ओके, विचार कीजिए इसी विचार पर एक बार और गहराई से, और तब तक लीजिए इस भजन को, आनंद लीजिए। हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर प्रवीण जी, आपने अभी तक हमें बताया अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, आज की जेनरेशन के बारे में जो कि तयशुदा तौर पर स्मार्ट है, ज्यादा रिसेप्टिव है, सिर्फ उसको सिखाने की आवश्यकता है जो कि हमारा धर्म है, हमको करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल मीडिया का यूसेज के बारे में आपने बताया, फिर हमें बताया अध्यात्म के फायदे के बारे में, किस तरह से हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग से आजादी पा सकते हैं, और डिफरेंस रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच। अब आपकी ये सारी की सारी बातें सुनकर कोई व्यक्ति अगर प्रभावित हो जाए और उसे लगे कि चलिए छोड़िए धर्म, तो चलिए जो हो गया, मतलब मैं कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं जाऊं लेकिन आध्यात्मिक हो जाऊं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3, बिल्कुल सिंपल बेबी स्टेप्स, क्या करे कि वो आध्यात्म की तरफ चल पड़े?
1: वेल, आपने, मेरे ख्याल से आप ही ने जवाब दे दिया।
0: मैंने समराइज किया सर जो आपने कहा।
1: जी जी बिल्कुल नहीं, आपने दो लफ्जों में उत्तर दे दिया अपने प्रश्न का।
0: जी,
1: आपने कहा बेबी स्टेप्स, तो दैट इज एवरीथिंग। देखिए, जब हम चलना शुरू करते हैं, जब हम बच्चे होते हैं
0: जी,
1: एकदम से थोड़े ही ना चलते हैं,
0: लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं।
1: पता नहीं कितने सौ बार हम लड़खड़ाए, कितने बार हम गिरे, कितने बार हमने चोटें खाई, सर पे चोट खाई, पांव पे चोट खाई, कहीं और चोट खाया, और किसी ना किसी का हाथ पकड़ के हमने चलना सीखा।
0: जी,
1: लाइकवाइज फिजिकली चलने की बात हुई, फिर हम स्कूल गए, पहले दिन हमें थोड़े ना कुछ आता था
0: जी,
1: वहां भी हमने वही बेबी स्टेप्स लिए। कॉलेज में हो तो स्कूल के जो बंदिशें थी, स्कूल के जो बंधन थे, वो कॉलेज में एकदम हम लोग फ्री हो गए। तो 11th में पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता था, लेकिन जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, कोई और हुए, आईएएस आईपीएस हो गए
0: जी,
1: तो पढ़ाई पूरी कंसंट्रेशन के साथ की हमने। दैट कंसंट्रेशन आल्सो वी लर्नड थ्रू बेबी स्टेप्स ओनली।
0: करेक्ट,
1: दैट इज व्हाई आई सेड कि आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया है। लाइकवाइज इवन इन स्पिरिचुअलिटी, कोई 10 ग्रंथ एक दिन में पढ़े ना तो ये मुमकिन है, ना ही ऐसा करना चाहिए, ना ही उसे कुछ हासिल होगा। तो स्पिरिचुअलिटी में भी बेबी स्टेप्स ही लेने हैं। स्पिरिचुअलिटी मेक्स द जर्नी इजियर।
0: प्रवीण जी, बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत ही प्यारा व्याख्यान हमें ठीक से समझने के लिए आपने समझाया, बहुत बहुत आभार है आपका। थैंक यू सो वेरी मच, यो इस प्रोग्राम में आकर आपने हमारे साथ,
1: प्लेजर ऑलवेज।
0: थैंक यू सर, प्लीज टेक केयर।
1: थैंक यू।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। आपने सुना होगा, गौरी खान एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, आदित्य चोपड़ा भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और हाँ, ड्रामा, ग्लैम और कॉफी के साथ करण जौहर भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी किसान का नाम जो फिल्म प्रोड्यूसर हो? नहीं ना? तो आज सुन लीजिए, एक नहीं, दो नहीं, 5 लाख किसान, जी हाँ, 5 लाख किसान फिल्म प्रोड्यूसर्स। और ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है, ये एक असली सिनेमा की हिस्ट्री है। स्टोरी शुरू होती है 1970s के बीच के दौर से, जब इंडिया में ना OTT था, ना रील्स थी, ना स्किप एड का ऑप्शन था। और उस दौर में दो लोग जिन्होंने सोचा, एक दूध रेवोल्यूशन के हीरो और एक सिनेमा के डीप थिंकर। एक तरफ थे वर्गीज कुरियन, जिन्होंने अमूल को सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक मूवमेंट बनाया, और दूसरी तरफ थे श्याम बेनेगल, जो मीनिंगफुल सिनेमा के लिए जाने जाते थे। बेनेगल साहब अमूल के लिए एड्स और डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि डॉक्यूमेंट्रीज लोग देख ही नहीं रहे थे। मतलब मैसेज तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन ऑडियंस मिसिंग। तो बेनेगल साहब ने कहा, सर डॉक्यूमेंट्री से काम नहीं चलेगा, हमें फुल लेंथ फीचर फिल्म बनानी पड़ेगी। अब आप सोचिए, 1970s में फीचर फिल्म बनाना मतलब बड़ा खर्चा। बजट बनाया गया तो 9 से 10 लाख रुपए। आज के हिसाब से ये शायद किसी स्टार की वैनिटी वैन का मंथली फ्यूल का बजट होगा, लेकिन तब ये बहुत बड़ा अमाउंट था। कुरियन साहब ने कहा, अमूल के पास इतना पैसा नहीं है। यहां कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। उन्होंने ये आइडिया फार्मर्स के सामने रखा। तब तक लगभग 5 लाख किसान अमूल यूनियन का हिस्सा हो गए थे, और उनका जवाब सुनिए, ये हमारी कहानी है, ये बताई जाएगी और हम ही इसे फंड करेंगे। बस फिर क्या था, हर किसान ने अपनी पेमेंट से 2 रुपये डिडक्ट करने की परमिशन दे दी, सिर्फ 2 रुपये। आज के टाइम में 2 रुपये में क्या मिलता है साहब, शायद पार्किंग का हाफ मिनट भी नहीं। लेकिन तब वो 2 रुपये बने एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन, और इस तरह बनी फिल्म मंथन, दुनिया की पहली क्राउड फंडेड फिल्म। आज हम क्राउड फंडिंग को स्टार्टअप कल्चर का कूल वर्ड समझते हैं, तो गांव के किसान क्वाइटली काम ये ऑलरेडी कर चुके थे बैक इन द डे 1970s में। सोचिए, जब फिल्म रिलीज हुई ना, तो गुजरात के गांव-गांव से लोग ट्रक भर के थिएटर्स आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने टिकट नहीं, फिल्म खरीदी थी। वो सिर्फ ऑडियंस नहीं थे, वो प्रोड्यूसर्स थे, और जब स्क्रीन पर उनकी कहानी चल रही थी, वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे थे। इस कहानी में ग्लैमर बिल्कुल नहीं है, रेड कार्पेट भी नहीं है, कोई पैपराजी और PR भी नहीं है, लेकिन इसमें एक पार्टिसिपेशन है, ओनरशिप है, और एक कलेक्टिव प्राइड है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सिनेमा सिर्फ स्टार्स का मीडियम नहीं, सिनेमा आवाज का मीडियम है। कभी कभी बड़े शहरों के बड़े लोग हिस्ट्री नहीं लिखते, सिर्फ छोटे छोटे गांव के लोग क्वाइटली
चुपचाप बिना हैशटैग के रेवोल्यूशन कर देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी फिल्म के एंड में प्रोड्यूस्ड बाय देखें, थोड़ा इमेजिन कीजिए 5 लाख नाम स्क्रॉल हो रहे हैं और हाँ, हर नाम के साथ एक मुस्कान जुड़ी हुई है, क्योंकि कहानी सिर्फ बताई नहीं जाती, कभी कभी मिलकर बनाई जाती है। यही थी आज की कहानी, दूध से बनी सिर्फ मिठाई नहीं, एक फिल्म भी, मंथन। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका 2 रुपये का कंट्रीब्यूशन छोटा है, तो याद रखिए, हिस्ट्री कभी कभी पॉकेट चिल्लर से भी बनती है।

आप भी डरते हो क्या? आप किससे डरते हो? बचपन रूह है, हवा के झोंके हैं, हमारे दिल के सुनहरे झोंके।

बोलो बच्चों अब क्या है? शाबाश शाबाश, लाडलो सबके लाडलो, भागे ये भूत भी तुम जैसे शेर से। लाडलो।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: ओवर थिंकिंग लेवल प्रो। कुछ लोग इतना ओवरथिंक करते हैं कि अगर कोई के रिप्लाई करे ओके की जगह, तो पूरा ब्रेकअप स्पीच तैयार कर देते हैं। अपने माइंड में सारा टाइम के का मतलब सोचते हैं। के का मतलब खुश हो, खफा हो या खत्म हो।

दुनिया का सबसे लॉयल एम्प्लॉई और एक सॉफ्ट ड्रिंक की कहानी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, दुनिया का सबसे लॉयल एम्प्लॉई कौन होता है? वो जो टाइम पर ऑफिस आए, वो जो बॉस को इंप्रेस करे, या वो जो लिंक्डइन पर लिखे प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी? नहीं, आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम शायद आपने कैजुअली कभी सुना हो या शायद नहीं। ये कहानी है मैक्स कीथ की, और इस कहानी में वॉर है, पॉलिटिक्स है, प्रेशर है, और बीच में एक फिजी ट्विस्ट भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का जमाना सोचिए, यूरोप में टेंशंस बढ़ रही थी, लेकिन एक अमेरिकन ब्रांड क्वाइटली जर्मनी में ग्रो कर रहा था, कोका कोला। जी हाँ, 1939 तक जर्मनी में 43 बॉटलिंग प्लांट्स और 600 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। ब्रांड अच्छे से चल रहा था, बिजनेस स्टेबल था। फिर एक दिन वॉर शुरू, बॉर्डर्स बंद, सप्लाई चेन्स खत्म, अमेरिका और जर्मनी दुश्मन, और कोका कोला का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो सीक्रेट सिरप, जर्मनी तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो गया। अब सोचिए, अगर आप मैक्स कीथ होते तो आप क्या करते? आपके पास प्लांट्स हैं, वर्कर्स हैं, मशीन्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट बनाने का मेन फॉर्मूला ही नहीं है। आप क्या करते, सोचिए सोचिए। मैक्स ने हेड ऑफिस को एक मैसेज भेजा, मैं ब्रांड को जिंदा रखूंगा, व्हाट एवर इट टेक्स। लेकिन सिर्फ नहीं था, वो रियलिटी थी। तो उसने सोचा, ठीक है, कोका कोला नहीं बन सकती, कुछ और बनाते हैं। अब यहां से कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। मैक्स ने जर्मनी के फूड इंडस्ट्रीज के लेफ्ट ओवर्स यूज करना शुरू किए, जैसे कि वे एप्पल फाइबर और जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे, और उन सबको मिलाकर एक नया सॉफ्ट ड्रिंक बनाया। फैंसी नाम नहीं था शुरू में, बस सर्वाइवल का आइडिया था, लेकिन ड्रिंक बिकने लगा, प्लांट्स चलते रहे, वर्कर्स को नौकरी मिलती रही। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कोका कोला का हेड ऑफिस अमेरिका में क्लूलेस था, उन्हें पता ही नहीं था कि जर्मनी में चल क्या रहा है। वॉर के दौरान मैक्स पर पॉलिटिकल प्रेशर्स भी थे, नाजी रिजीम का टाइम था, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने कभी कोई नाजी पार्टी ज्वाइन नहीं की। वो सिर्फ एक चीज बना रहा था, ब्रांड को जिंदा। वॉर खत्म हुआ 1945 में, कोका कोला वापस जर्मनी आया, और मैक्स ने क्या किया, उन्होंने ऑपरेशंस वापस दे दिए, प्रॉफिट्स भी दे दिए, और जो नया ड्रिंक बनाया था वो भी दे दिया। सोचिए, वो चाहते तो उस ड्रिंक की ओनरशिप रख सकते थे, अपना एम्पायर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जब कोका कोला ने पूछा इस नए ड्रिंक का नाम क्या रखें, तो मैक्स कीथ ने कहा, रन योर फैंटेसीज वाइल्ड। फैंटेसी, अब इसी फैंटेसी वर्ड से एक नया सेल्समैन बोला, फैंटा। जी हाँ, फैंटा, जो आज हर सुपरमार्केट के शेल्फ पर हमें दिखती है। उसकी कहानी वॉर, सर्वाइवल और लॉयल्टी से शुरू होती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये लॉयल्टी थी या स्ट्रैटेजी? कुछ लोग कहेंगे बिजनेस मूव था, कुछ कहेंगे एथिकल टाइटरोप वॉक था, और कुछ कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनलिज्म था। लेकिन एक बात इस सभी में क्लियर है, जब दुनिया टूट रही थी तब एक आदमी ने फैक्ट्रीज चलती रखी, वर्कर्स को जॉब दी, और ब्रांड को सर्वाइव कराया। आज के जमाने में लॉयल्टी का मतलब क्या रह गया है? हम जॉब चेंज करते हैं जैसे कि प्लेलिस्ट चेंज करते हैं। कंपनीज एम्प्लॉयज को सिर्फ नंबर्स की तरह या उनके एम्प्लॉय कोड्स की तरह ट्रीट करती हैं, और एम्प्लॉयज कंपनीज को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह। लेकिन इस कहानी में एक अजीब सी सिंप्लिसिटी है, मैक्स ने जो काम था वो किया। ना स्पॉटलाइट थी, ना सोशल मीडिया था, ना कोई पीआर कैंपेन था, बस काम, और फिर एक ड्रिंक जो एक्सीडेंटल थी बट ग्लोबल ब्रांड बन गई। कभी कभी हिस्ट्री सिर्फ किंग्स और वॉर्स से नहीं बनती, कभी कभी वो सिर्फ एक फैक्ट्री फ्लोर पर बनती है, एक डिसीजन से, एक इंसान जो कहता है मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा,
और हाँ, अगली बार जब आप फैंटा की बॉटल खोलेंगे, उस फिज के पीछे सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर नहीं होगा। आई एम श्योर उसके पीछे थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ा वॉर का प्रेशर और एक एम्प्लॉय की अनडाइंग लॉयल्टी की कहानी सामने आएगी। तो दोस्तों, सवाल फिर वही है, दुनिया का सबसे लॉयल एम्प्लॉय कौन? शायद वो जिसका नाम हेडलाइन में नहीं आता, लेकिन जिसका काम वक्त की कसौटी पर टिक जाता है और कभी कभी एक फैंटेसी बनकर दुनिया भर में बिकता है। सोच कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: आजकल लोग इतने ऑक्यूपाई हो गए हैं मेंटली कि अगर घर में कभी आग लग जाए ना तो पहले रील बनाएंगे। गाइस, फायर इन माय हाउस, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।

मैं चाय को चाय के लिए पीती हूँ। दोस्तों जरा गौर फरमाइए, मैं चाय को चाय के लिए पीती हूँ। लोग शक्कर और दूध के लिए पीते हैं। मेरा रुख किस तरफ है जरा सुनिए, और जमाना किधर जा रहा है ये भी देखिए। अब देखिए, चाय असल में चीन की पैदावार है। कहते हैं लगभग 1500 साल से वहां इस्तेमाल हो रही है, और इतने लंबे अरसे तक किसी चीनी के जहन में ये ख्याल तक नहीं आया कि इस नाजुक, इस लतीफ, इस रूहानी सी चीज को दूध में डुबो दिया जाए। वहां चाय एक एहसास थी, एक खामोश सा रिचुअल, एक साफ शीशे जैसी शफफ प्याली। ना दूध की कसाफत, ना शक्कर का हंगामा। फिर चाय चीन से निकलकर रशिया गई, तुर्किश गई, ईरान गई। वहां भी किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि बोले थोड़ा दूध डालकर देखते हैं, रंग अच्छा आएगा। लेकिन फिर आए अंग्रेज 17th सेंचुरी में। जब उन्होंने चाय से मुलाकात की तो ना मालूम उनको क्या सूझी, उन्होंने कहा इसमें दूध डालते हैं। शायद उनको हर चीज को थोड़ा अपने रंग में रंगने की आदत जो थी। हिंदुस्तान में चाय का रिवाज भी उन्हीं के जरिए आया, तो ये मुसीबत यहां भी फैल गई। पहले चाय में दूध डाला जाता था, फिर धीरे धीरे ये हुआ कि दूध में चाय डालने लगे, और आज हाल ये है कि कई जगह चाय कम दूध ज्यादा होता है। रंग ऐसा लगता है किसी ने हल्के ब्राउन पेंट को पानी में घोला हो। मैं कभी कभी सोचती हूँ, हम चाय पीते हैं या एक तरह का सियाल हलवा। लोग एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध उबालते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं, फिर चाय पत्ती इतनी डालते हैं कि बेचारी डूब कर सोचती होगी मेरा क्या कसूर था। फिर इलायची, फिर अदरक, फिर कभी कभी लौंग, दालचीनी और पता नहीं क्या क्या। और जब वो सब मिलकर एक मीठा, गाढ़ा, जोशीला सा शरबत बन जाता है, तो लोग खुशी से कहते हैं वाह क्या चाय बनी है। इन नादानों से कौन कहे अरे भाई तुम चाय पी ही नहीं रहे, तुमने तो एक डेजर्ट पिया है। अब मैं किसी की पसंद का मजाक नहीं उड़ा रही। हर इंसान को अपनी चाय का हक है। किसी को कड़क पसंद है, किसी को मीठी, किसी को कटिंग, तो किसी को मलाई मार के। लेकिन कभी आपने सोचा है चाय असल में होती क्या है? चाय एक ठहराव है, एक रुक कर बैठना है, एक लम्हा है जो सिर्फ आपका होता है। जब चाय बिना दूध की होती है तो उसका रंग हल्का सा सुनहरा होता है, उसकी खुशबू सीधा नाक तक जाती है। आप सिप लेते हो और टेस्ट धीरे धीरे घुलता है, बिल्कुल जिंदगी की तरह। हमने जिंदगी के साथ भी वही किया जो चाय के साथ किया। ओरिजिनल फ्लेवर को एक्सेप्ट करने के बजाय उसमें इतना कुछ मिला दिया कि असल चीज का पता ही नहीं चलता। चाय का मजा उसकी साफगोई में है, लेकिन हम लोग हर चीज को थोड़ा एक्स्ट्रा करने में यकीन करते हैं। कॉफी में व्हिप्ड क्रीम, पिज्जा में एक्स्ट्रा चीज और चाय में एक्स्ट्रा दूध। कभी कभी लगता है हम सिंप्लिसिटी से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर चीज सीधी और साफ हो तो शायद कम लगेगी, इसीलिए हम उसे भर देते हैं, मीठा कर देते हैं, हैवी बना देते हैं। फिर एक दिन डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। डॉक्टर भी यही सोचता होगा मन में, चाय कंट्रोल करो सबसे पहले भाई। मैं जब कहती हूँ मैं चाय को चाय की तरह पीती हूँ तो लोग मुझे अजीब सी नजरों से देखते हैं। काली चाय, बिना दूध, बिना शक्कर, जैसे मैंने कोई तपस्या शुरू कर दी हो। अरे भाई तपस्या नहीं है, बस असली टेस्ट को महसूस करने की कोशिश है। और मजेदार बात यह है, अंग्रेज खुद कहकर चले गए कि ज्यादा दूध डालना नहीं चाहिए, लेकिन जो बीज वो बोकर गए थे उनका बरगोबार इतना फैला कि अब हर गली,
हर नुक्कड़ हर ठेले पर दूध वाली चाय का ही राज है। और सच कहूं, उस चाय के साथ जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वो भी कम खूबसूरत नहीं होती। कटिंग चाय पर दोस्ती होती है, ऑफिस की टेंशन डिसॉल्व होती है, ट्रेन के सफर में अजनबी दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए मैं दूध वाली चाय की दुश्मन नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि कभी कभी एक प्याली चाय को उसकी असल सूरत में आजमा कर देखिए। शायद आपको लगे कि टेस्ट हल्का है, लेकिन धीरे धीरे वो सटल फ्लेवर दिल तक पहुंच ही जाए और फिर समझ आए कि हर चीज को मीठा बनाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें अपनी असली कड़वाहट में भी खूबसूरत होती हैं। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप चाय बनाए

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: हर ग्रुप में एक दोस्त जरूर ऐसा होता है जो बोलता है, तू पे कर दे यार, मैं जीपे कर दूंगा। और वो जीपे आज तक ट्रैफिक में कहीं अटका हुआ है भाई।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दोस्तों, कई बार मैंने कई लोगों को वॉकिंग करने के दौरान यानी कि चलने के दौरान पीछे की तरफ चलते हुए देखा, तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों करते हैं ये। थोड़ा बहुत तो अंदाजा था कि ये भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन आइए जानते हैं इसके कुछ और सच। सो बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की ओर चलने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इससे विभिन्न मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शारीरिक और मानसिक लाभ भी मिलते हैं। इससे शरीर के संतुलन और समन्वय में सुधार होता है। बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की तरफ चलना बुजुर्गों, वयस्कों या चोट से उबरने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है, क्योंकि ये गिरने के जोखिम को कम करने में मदद करता है। पीछे की ओर चलने से घुटनों और पीठ के नीचे हिस्से पर तनाव कम हो जाता है। क्योंकि चलने के लिए छोटे कदमों की लंबाई की आवश्यकता होती है, इसलिए आगे चलने या दौड़ने की तुलना में जोड़ों पर कम प्रभाव पड़ता है। बैकवर्ड वॉकिंग मानसिक स्वास्थ्य जैसे दिमाग तेज होना, एकाग्रता और यहां तक कि मूड सुधार में भी योगदान करता है। पीछे की ओर चलने के अभ्यास को फिटनेस दिनचर्या में शामिल करना बड़ा आसान है और उसे घर के अंदर या बाहर भी किया जा सकता है। ये गति में बदलाव और वर्कआउट की विविधता में शामिल है, जिससे रोजाना व्यायाम करना दिलचस्प और प्रेरक भी बन सकता है। इस संबंध में फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह आप ले सकते हैं। क्या कहते हैं विशेषज्ञ इस बारे में? विशेषज्ञ कहते हैं कि मांसपेशियों की मजबूती से लेकर जोड़ों के तनाव को कम करने तक बैकवर्ड वॉकिंग बड़ी फायदेमंद है। क्योंकि पीछे चलने के लिए छोटे कदमों की जरूरत होती है, इसलिए जोड़ों पर दबाव भी कम पड़ता है। मजेदार बात हुई।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आइए एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति किसी कंसल्टेंट के पास गया, यानी कि सलाहकार, और उससे पूछने लगा कि भैया ये बताइए, कंसल्टेंसी यानी कि सलाहकारिता क्या होती है। अब देखिए, जो कंसल्टेंट महोदय थे उन्होंने कहा, मैं बताता हूं, एक एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लो कि दो लोग मेरे पास आते हैं, एक तो बहुत ही साफ सुथरा और क्लीन है और दूसरा बहुत ही गंदा है, धूल से भरा हुआ है, बाल एकदम डर्टी हैं, धूल में सना हुआ है। अब मैंने दोनों को कहा कि जाइए और नहा लीजिए। अब बताओ बेटा कि कौन नहाएगा? तो पहले स्टूडेंट ने पहले ही कहा कि जो डर्टी है, जो बहुत ही गंदा है, जिस पे धूल लगी हुई है, जो कीचड़ से सना हुआ है, वही तो नहाएगा। तब सलाहकार ने यानी कि कंसल्टेंट ने कहा, नहीं सुनो, क्लीन पर्सन जो नहा धो के आया है, साफ सुथरा है, वो नहाएगा, क्योंकि उसको आदत है नहाने की, साफ सुथरा रहने की। जबकि जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गंदा है, उसको तो नहाने धोने की इंपॉर्टेंस यानी कि उसकी महत्ता के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो अब बताओ कौन नहाएगा? तब वापस से उस स्टूडेंट ने, उस व्यक्ति ने कहा, जो साफ सुथरा व्यक्ति है ना सर, वही नहाएगा। तब कंसल्टेंट ने वापस कहा, नहीं, जो गंदा बहुत ही मैला कुचैला सा व्यक्ति है, वो नहाएगा, क्योंकि उसको तो जरूरत है ना साफ सफाई करने की। तो चलो अब बताओ कौन नहाएगा? उस व्यक्ति ने कहा, उस स्टूडेंट ने कहा कि सर, जो मैले कुचैले कपड़ों में है, बहुत ज्यादा गंदा है, वही नहाएगा। कंसल्टेंट ने कहा, अरे नहीं बेटे, दोनों नहाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को तो नहाने की और साफ सुथरा रहने की आदत है और दूसरे व्यक्ति को इस वक्त नहा धोकर साफ सुथरा हो जाने की जरूरत है। तो चलो मुझे बताओ कौन नहाएगा? अब की बार व्यक्ति बहुत परेशान होकर बोला, सर दोनों ही नहाएंगे। तब सलाहकार ने, कंसल्टेंट ने दोबारा कहा, गलत है बेटे, कोई नहीं नहाएगा, क्योंकि जो गंदा है उसे तो नहाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको तो जरूरत ही नहीं है साफ सुथरा होने की, और जो साफ सुथरा व्यक्ति है वो तो पहले से ही नहा

धो के आया है, साफ सुथरा होके आया है, तो अब बताइए कौन नहाएगा। अब की बार तो वो स्टूडेंट, वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया और उसने बोला, सर आप हर बार अपना जवाब बदल देते हैं, हर बार आपका जवाब सही लगता है, अब हमें पता ही नहीं कि सही जवाब है कि आप ही बताएं। तब उस सलाहकार ने, उस कंसल्टेंट ने कहा, बेटा इसी को कंसल्टेंसी कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि रियलिटी यानी कि सच्चाई क्या है, जरूरी ये है कि मैं एक ही सच्चाई को कितनी अलग अलग तरह से सामने रख कर तुम्हें कंफ्यूज कर सकता हूं। इसी को कहते हैं कंसल्टेंसी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए। है ना मजेदार रेडियो के साथ।

लीजिए दोस्तों, मिलिए डॉक्टर प्रदीप सेठी जी से। आजादी के 7.5 दशक में हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है, इसे देखना है तो गांव में जाइए और किसी स्मृति समृद्ध बुजुर्ग के पास बैठिए, किसी ऐसे बुजुर्ग के पास बैठिए जिनकी याददाश्त अच्छी हो, मजबूत हो। तब आपको सन 1947 से लेकर 2024 तक का देश साफ साफ दिखाई पड़ेगा। हिंदुस्तान महानगरों और शहरों में नहीं है, अपने 6.5 लाख से ज्यादा गांवों में है, मगर इन गांवों की एक टीस बहुत पुरानी है। महानगर और बड़े शहरों ने उनकी अनगिनत संतानों को अपने मोहपाश में ऐसा फंसाया है कि वे अपनी माटी का कर्ज उतारना भी भूल गए हैं। लेकिन डॉक्टर प्रदीप सेठी ने जिस तरह से अपनी माटी का कर्ज अदा किया, उनका गांव पुष्ट दर पुष्ट इसके लिए उन पर नाज करेगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गांव है, बेरुनपदी। करीब 44 साल पहले इसी गांव के एक बेहद गरीब परिवार में प्रदीप पैदा हुए। तब ओडिशा देश के अति पिछड़े राज्यों में शामिल था। जाहिर है बेरुनपदी भी सड़क, बिजली, अस्पताल, साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से तो बहुत दूर था। प्रदीप के परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो उन्हें फाका कशी से ही गुजरना पड़ता था। एक जोड़े कपड़े में कई कई हफ्ते निकल जाते थे। मगर ये नियति अकेले उन्हीं के परिवार की तो नहीं थी ना। ऐसे में सभी अभावग्रस्त परिवार एक दूसरे को सब्र और उम्मीद की डोर थमाते रहते थे। राहत की बात बस इतनी सी थी कि 1955 से गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल की सुविधा थी और प्रदीप के पिता घनघोर गरीबी के बावजूद बेटे को कभी पढ़ने लिखने से नहीं रोकते थे। हालांकि उन्हें कई बार स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती क्योंकि मजदूर पिता कभी गाय चराने तो कभी खेतों में घास छीलने की जिम्मेदारी उन्हें दे देते थे। इन सब मुसीबतों के बावजूद प्रदीप की पढ़ाई में रुचि गहरी होती ही गई। करीब 12 साल की उम्र में वो जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने गए वहां अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। इससे पहले तो वो सिर्फ उड़िया सुनते थे और बोलते थे। पहली बार यहां उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी सीखी। शुरू शुरू में वो कुछ हिचके, थोड़े झेपे, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की चाह ने उनका रास्ता आसान कर दिया। बहुत जल्द ही शिक्षकों की निगाह में प्रदीप की मेधा आ गई, उन्हें भरपूर प्रोत्साहन दिया। फिर क्या था, छात्र की लगन और शिक्षकों के सहयोग ने एक गरीब बच्चे के दिन बदल दिए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदीप बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। 10वीं के बाद से ही उनके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा आ गई थी, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके परिवार के लिए आसान नहीं था। प्रदीप ने अपनी पढ़ाई लिखाई से पिता को गौरव के कई पल दिए, इसलिए जो भी थोड़ी बहुत जमीन उनके पास थी बेटे की मेडिकल फीस जुटाने के लिए दांव पर लगा दी। परिवार के इस त्याग से प्रदीप बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित थे। वो परिवार की तकलीफ और संघर्ष में बराबर के शरीक रहे। उनके पास जो भी खाली वक्त होता वो उसमें किसी ना किसी तरह की दैनिक मजदूरी कर लेते। एक ऐसा मोड़ भी आया जब सारी कोशिशों के बावजूद चीजें मुश्किल होने लगी और बात उनकी झोपड़ी से निकलकर गांव के चबूतरे पर आ गई। तब गांव के कुछ समर्थ लोगों ने बड़प्पन दिखाया और वजीफे के तौर पर उन्होंने प्रदीप की लगातार मदद की। प्रदीप को हर महीने एक तय राशि मिलने लगी जिनसे वो अपनी किताबें खरीदते और हॉस्टल मेस की फीस चुकाते। अब लक्ष्य सिर्फ MBBS की डिग्री थी। वो जी जान से जुट गए। साल 2004 में MBBS की डिग्री लेने के बाद उन्होंने मास्टर्स कोर्स के लिए देश के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के गुर सीखे। जाहिर है ये ऐसा चिकित्सा क्षेत्र है
जो पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती को लेकर सजग दौलतमंदों से ज्यादा जुड़ा हुआ है। लिहाजा प्रदीप के पास प्रस्तावों और मरीजों की कोई कमी नहीं रही। पैसे तो खैर आने ही थे, उनके पास दुबई में क्लिनिक खोलने के लिए रोचक प्रस्ताव आया। लेकिन उसी समय उन्हें आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद की वो लाइन याद आ गई, हर मनुष्य के जीवन का एक बड़ा मकसद होता है। नौजवान प्रदीप के जीवन का मकसद सिर्फ दौलत कमाना तो नहीं था, वो अपनी जड़ों की ओर मुड़े। कैंसर से पीड़ित पिता की दिली तमन्ना थी कि गांव में उनका एक घर होना था। प्रदीप ने घर की तामीर करवाई, मगर उनके बनने के चंद महीनों बाद ही वो इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद प्रदीप ने साल 2016 में उस घर को एक कोचिंग सेंटर में बदल दिया, ताकि गांव और आसपास के बच्चे वहां आकर गणित और अंग्रेजी सीख सके। इसके बाद बकायदा प्रशिक्षित शिक्षक रख दिए गए वहां। सैकड़ों बच्चों की जिंदगी में इस एक कोचिंग सेंटर से आई तब्दीली देखकर डॉक्टर प्रदीप को गहरा सुकून मिला। अब उन्होंने गांव में एक ऐसा स्कूल खोलने का फैसला किया जो गरीब बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दिलवा सके। उन्होंने गांव की उसी जमीन पर स्कूल बनाने की शुरुआत की जहां कभी दैनिक मजदूरी किया करते थे वो। गांव वालों ने अपने सपूत का बढ़ चढ़कर साथ दिया। कई लोगों ने स्कूल के लिए अपनी अपनी जमीनें दान में दे दी। करीब 10 एकड़ में पिछले साल ही उत्कल गौरव इंटरनेशनल स्कूल वजूद में आ गया। फिलहाल इसमें 450 बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर इसकी क्षमता 2500 बच्चों को 12वीं तक शिक्षा देने की है। डॉक्टर प्रदीप सेठी आगे अन्य इलाकों में भी स्कूल खोलेंगे, मगर बेरुनपदी का कर्ज तो उन्होंने अदा कर दिया।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: लुई पास्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पास्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: De Marseille, dans le sud de la France.
5: Ladies and gentlemen, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मोनसिनर द अबेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,
7: अरे भेड़िया,
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
6: चलो चलो चलो चलो
7: अरे
6: पकड़ो
7: चलो चलो मुझे
8: ठहरो लोहा गर्म हो रहा है
6: ये लीजिए बिल्कुल लाल हो गया ये
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा
9: लुई पाश्चर
10: सर
9: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं
10: कहिए सर
9: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है
10: यस सर

0: मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
1: ठीक है। कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पास्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
2: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
1: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
2: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
2: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
2: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
2: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
2: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
3: अरे आजा आजा आजा, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ?
4: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगे, और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
5: सर सर, ये टेलीग्राम।
4: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
5: क्या हुआ सर?
4: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
5: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
4: थैंक यू।
0: और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं।
5: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
0: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
2: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
6: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
0: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
6: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
0: देखिए आप।
6: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
6: मेरा
0: अच्छा,
6: बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
2: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
2: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
2: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल. ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज,
1: विज्ञान गीत।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।

कहावत है, अंधेरे की शिकायत करते रहने की अपेक्षा एक दिया जलाना ज्यादा अच्छा है। हमारे समाज में बहुत से लोग असहाय हैं और उनमें से अनेक भिखारी का जीवन बिता रहे हैं। इन दुखी लोगों के बारे में सोचते तो सब हैं, पर कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे दूसरों का दुख कम हो। ऐसे ही एक कर्मवीर हैं बाबा आमटे, जिनकी करुणा का साकार रूप है आनंदवन। आनंदवन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। यहां कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। पर इनकी मां इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमान। मां ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से इनका परिचय कराया। मां सिखाती, जो सुख लेने में है उससे ज्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। मां के द्वारा दी गई सीख ही बाबा के जीवन में पग पग पर काम आई।

बालक मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन और असहाय लोगों के कष्टों की ओर जाता। जब कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठ अपनी जमीन जायदाद को देखने निकलता, उसका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खींचता। उनकी आर्थिक कठिनाइयों तथा शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उसका दिल भर आता। छुआछूत के प्रति उसके मन में बहुत घृणा थी। किसी तरह भी उसका बाल हृदय ये मानने को तैयार नहीं था कि जन्म के कारण ही समाज में कुछ लोग छोटे और कुछ बड़े हो सकते हैं।

उसके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी प्रकृति से प्यार। पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों तथा पशु पक्षियों के प्रति उसके हृदय में अगाध प्यार था। वो दिन भर जंगलों में भील गोंडों से परिचय करता और उनसे बातचीत कर प्रसन्न होता। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, निशानेबाजी तथा स्वतंत्र जीवन मुरलीधर को विशेष रूप से आकृष्ट करता। युवावस्था में मुरलीधर पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। मुरलीधर हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। स्वतंत्रता संग्राम में वे दो बार जेल भी गए। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू ने उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा था। उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय वकालत भी की, परंतु उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। ये कार्य था गरीब दुखियों की सेवा। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सेवा भाव से मुरलीधर के स्वप्नों को साकार करने में बहुत सहायता दी। सन 1948 में मुरलीधर वरोंस्की नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। वे सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी थे। इसी पद पर रहकर उन्हें इन लोगों की वास्तविक दशा का पता चला। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्वयं इन लोगों का कार्य नहीं करता, मुझे इनकी कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी। सिर पर मैले की टोकरी रखे जैसे ही मुरलीधर ने पांव उठाया कि उनकी नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। जहां मन भयभीत रहे वहां प्यार कैसा, और जहां प्यार नहीं वहां ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं? बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले मां उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं, अपितु मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास नहीं फटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में ही बिताना पड़ता है। लोगों को ये भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता और ये छूत का रोग है, किंतु ऐसा नहीं है। अब इसका इलाज भी संभव है। बाबा अधीर थे कि कैसे इन
पुनः स्वस्थ हुए लोगों को बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्न से 250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई और स्वस्थ हुए व्यक्तियों को उस पर खेतीबाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। बाबा की झोपड़ी तो कई वर्षों बाद अब भी कुछ कुछ वैसी ही है, परंतु आसपास के भवनों को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। ये सब हैं बाबा की लगन और परिश्रम के साकार रूप। कुष्ठ रोगियों में किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव की उंगलियां नहीं और कोई देख नहीं सकता, पर सभी लगे हैं अपना भविष्य बनाने में। कोई केवल पैरों से मशीन चलाता है तो कोई अंधा होते हुए भी फुर्ती से कुर्सी बुनता है। जो व्यक्ति जिस काम के उपयुक्त है वो उसी में लगा है। बाबा आमटे नहीं चाहते कि इन लोगों की सहायता दान से की जाए। बाबा का विश्वास है काम से आदमी का निर्माण होता है। वे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं।

बाबा आमटी के दो पुत्र हैं, विकास और प्रकाश। दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। यहां रोगियों की चिकित्सा तो की ही जाती है, उन्हें स्नेह और सहानुभूति भी मिलती है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें फिर से स्वावलंबी बनाया जाता है।

आज आनंदवन के आसपास लहलहाते खेत हैं, फलों के बगीचे हैं, मुर्गी घर और पशु घर हैं। आसपास की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। आस पड़ोस की मंडियों में यहाँ की उगाई साग सब्जी बिकने जाती है। दूध, घी और मक्खन का व्यापार होता है। यहाँ के खेतों में उत्पन्न बीजों की नई किस्में भारत के कोने कोने में पहुंचाई जाती हैं। आनंद वन में कहीं बच्चों के लिए विद्यालय हैं, कहीं खेल के मैदान। छोटे छोटे कारखाने हैं, कहीं मनोरंजन के कार्यक्रमों के लिए सभागृह। यहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। आनंद वन सचमुच आनंद का वन है।

बाबा आमटे बच्चों से अगाध स्नेह करते हैं। एक बार एक दृष्टिहीन बालक ने गुलाब का फूल छूकर देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा उसे फूलों के बगीचे में ले गए। बालक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली में कांटा चुभा। उसने हाथ पीछे खींच लिया। बाबा आमटे उसी दिन से कांटों रहित गुलाब के पौधों की खोज में लग गए और अंत में आनंद वन में वो पौधा लग गया जिस पर गुलाब तो है पर कांटे नहीं। वास्तव में बाबा का संपूर्ण

उन्हें जगह जगह से सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1978 का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी बाबा आमटे को प्रदान किए गए। ऐसे अनेक अन्य पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। बाबा इन पुरस्कारों से प्राप्त समस्त धनराशि आश्रमों में लगा देते हैं। अपने देश में शांति तथा राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाए रखने के लिए बाबा हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। भारत जोड़ो अभियान भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाया गया है। बाबा आमटे उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: रेलगाड़ी
2: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे। तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
3: रेल चली भाई, रेल चली, छुक छुक।

0: करती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली।
1: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
2: अरे हाँ, गाड़ी रुको।
1: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
2: हाँ, अब बन गई रेल।
0: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
1: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
2: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
3: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
1: हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
3: चलो
0: रेल चली भाई रेल चली,
3: एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ, इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे भाई मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
1: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
3: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
1: अच्छा
3: अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
2: दादाजी मैंने देखी है।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
3: अच्छा तो चलो मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
1: अरे वाह,
3: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
1: हाँ आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
3: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
4: अरे दादाजी स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
3: अरे भैया तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
4: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ो।
3: बैठो बैठो जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
2: रानी जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
3: हाँ हाँ उतरो बेटी।
5: बच्चों रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
1: दादाजी यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
3: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं।
1: अच्छा तो ये बात है।
3: अच्छा बच्चों वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
1: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई।
2: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
3: हाँ बच्चों बच्चों देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
7: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
3: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
7: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
3: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
7: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
6: चुक चुक चुक चुक चुक।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: जानकारियों के बारे में जाना है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आज फिर आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करने के लिए आ पहुंचा है। किसान साथियों, हमें आशा है आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सबका ख्याल रख रहे होंगे। किसान साथियों, सबकी बुआई हो चुकी है और अभी समय है हमारे खेतों में खरपतवार नियंत्रण का। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अलग अलग फसलों में कैसे हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं, साथ ही जानेंगे नई कृषि तकनीकों के बारे में और मिलवाएंगे आपसे एक्सपर्ट से और जानेंगे एक्सपर्ट लोगों की भी राय। उससे पहले आइए सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कैसे हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, खरपतवार हमारे खेतों में अगर पड़ जाता है तो हम कितना भी हमारे खेतों में पोषक तत्व हम डालते रहें, परंतु अगर हमने खरपतवार ठीक से नियंत्रण नहीं किया तो हमारा कहीं ना कहीं हम हमारी फसलों में इसका नुकसान देख सकते हैं। किसान साथियों, तो आइए जानते हैं, आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: जैसे कि आपने बताया कि खरपतवार अपने आप में एक ऐसे पौधे हैं जिनको किसान भाई अपने खेत में नहीं देखना चाहता, तो ऐसी स्थिति में जबकि पर्टिकुलरली खरीफ के मौसम की जो फसलें हैं, जैसे धान है मुख्य फसल, उसके बाद मक्का है और दूसरी दलहनी फसलें हैं, तो इनमें खरपतवार रबी के मौसम की तुलना में अधिक आते हैं। तो जब खरपतवार आते हैं तो उनको हम कई विधियों से नियंत्रित कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो किसान भाई अगर शुरू से ही कुछ योजनाबद्ध तरीके से अगर खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए विचार करेंगे, तो उनको ये चाहिए कि जब खेत की तैयारी करें तो वो एक दो बारी जो है खेत में हल्का सा पानी दे दें, और पानी देने के बाद जो खरपतवारों के बीज होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है खरपतवारों के बीज जो है फसलों की तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं और एक खरपतवार तो अब मैं आपको बताऊं कि 15,000 बीज जो है एक पौधा उत्पन्न करता है।
3: अच्छा।
2: तो वो सारे जो बीज अगर खेत में गिर जाते हैं तो वो जमीन की ऊपरी सतह में खरपतवारों के बीज होते हैं, तो जिससे क्या है उनका प्रकोप जल्दी होता है। तो किसान भाई जब खेत में पानी लगाएंगे बोने से पहले, फसल के लगाने से पहले, तो 5-7 दिन पर जो खरपतवार उग जाते हैं और उससे वो ट्रैक्टर से वो जुताई करके मार देंगे, तो उससे क्या होगा कि जितने खरपतवारों के बीज ऊपरी सतह में जमीन में पड़े हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा आगे एक महीने में जो खरपतवार जमने वाले थे उनकी संख्या काफी कम हो जाएगी।
3: जी जी।
2: तो इससे किसान भाई बिना कुछ खर्च किए खरपतवारों का नियंत्रण कम कर सकते हैं। तो ये एक विधि है जिसमें किसानों को ना तो किसी रसायन का प्रयोग करना और ना ही कोई विशेष खर्चा करना।
3: जी, और देख आपको बता दें कि राजवीर जी बहुत सारे यहाँ पर खरपतवार भी लेकर आए हैं, पौधे लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए जब ऐसे बात करते रहते हैं तो कई बार चीजें उतनी क्लियर नहीं होती, इतनी साफ।
1: किसान साथियों, खरपतवार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
4: खरीफ फसलों में खरपतवारों का प्रकोप होने की काफी ज्यादा आशंका रहती है। खरपतवार फसलों की पैदावार पर असर डालती है। खरीफ फसलों में पाई जाने वाली खरपतवारों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। ये 2 बीज पत्रीय पौधे होते हैं जिनकी पत्तियाँ चौड़ी होती है, जैसे सफेद मुर्ग, कनकौवा, जंगली जूट और जंगली तम्बाकू। दूसरी, संकरी पत्ती वाली खरपतवार। इसको घास कुल की खरपतवार भी कहते हैं। इस कुल की खरपतवारों की पत्तियां पतली और लंबी होती हैं, जैसे सांवा, दूब घास। तीसरी तरह की खरपतवार होती है मोथा वर्गीय खरपतवार। इस कुल की खरपतवारों की पत्तियां लंबी और तना 3 किनारों वाला ठोस होता है। इनकी जड़ों में गांठें होती हैं, जैसे मोथा। धान की प्रमुख खरपतवार सांवा, कोदो, कनकौवा, जंगली जूट, मोथा और जंगली धान है। वहीं खरीफ की दलहनी और तिलहनी फसलों में महकुआ, हजारदाना, कनकौवा, सफेद मुर्ग, सवा और मोथा उगाती है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो निवारण विधि अपना सकते हैं। इस विधि में वो सभी शस्य क्रियाएं शामिल हैं जिनके जरिए खेतों में खरपतवारों के उगने को रोका जा सके, जैसे उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल, अच्छी तरह से सड़ी गोबर खाद और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल, ग्रीष्मकालीन जुताई, खेती की तैयारी और सिंचाई, नालियों की साफ सफाई। दूसरी ओर यांत्रिक विधि खरपतवारों पर नियंत्रण की आसान और प्रभावकारी विधि है। फसल की शुरुआती अवस्था में फसलों को खरपतवार के प्रकोप से मुक्त रखना जरूरी है। आमतौर से 2 निराई गुड़ाई, पहली बुआई के 20-25 और दूसरी 45 दिन बाद करने से खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है।
5: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय कीटनाशी जीव प्रबंधन, जैसा कि अंग्रेजी के वर्ड शब्द जो IPM से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, समेकित नासी जी प्रबंधन में वो समस्त विधियों का हम उपयोग करते हैं जो कीट को प्रबंधन के लिए हम प्रयोग में लाते हैं।
3: IPM जैसा कि आपने बताया यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट।
5: जी, इसके अंतर्गत हम किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं वो तमाम विधियों का समावेश है जो सही समय पर हमको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि कीट का प्रबंधन हो सके। लेकिन हमारा किसान भाई आजकल करता क्या है, कीटनाशक डायरेक्ट डालता है, जैसे ही इंसेक्ट दिखाई देता है और तुरंत वो कीटनाशक डालता है। इस विधि के अंतर्गत हमको पहले मॉनिटरिंग करना है, देखना है आपके खेत में कीड़े की कितना है ETL लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, उस हद तक कीड़ा है या नहीं है।
1: किसान साथियों, जैसा कि डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कितना उसमें कितना प्रतिशत कीटनाशक है, कितना प्रतिशत हमारे खेत में जीवाणु है, ये जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम उसमें दवाइयों का प्रयोग करें। आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
4: समेकित नाशी जीव प्रबंधन से मतलब प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खेत और इसके आसपास के वातावरण में मौजूद नाशी जीवों को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ कीटनाशकों या दूसरे विषैले रसायनों पर ही निर्भर ना होकर ऐसी सुरक्षा विधि को अपनाना है जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो। समेकित नाशी जीव प्रबंधन में प्रकृति में पाए जाने वाले फायदेमंद परजीवी, परभक्षी और फफूंदी व विषाणुओं को बढ़ावा मिलता है। समेकित नाशी जीव प्रबंधन आर्थिक दृष्टि से भी फायदेमंद है। इसके तहत क्षेत्र की जलवायु और फसल के प्रकार के आधार पर कीट या जीवनाशी के प्रबंधन के लिए प्राकृतिक तकनीकों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसमें फसल के मित्र कीटों की संख्या में इजाफा कर शत्रु कीटों का सफाया किया जाता है। इसके अलावा कुछ तकनीक जैसे लाल कद्दू बीटल के लिए नीम तेल का छिड़काव, पीले चिपचिपे जाल का इस्तेमाल, मिट्टी की रैंकिंग से फल मक्खी के प्यूपा को नष्ट करना आदि का इस्तेमाल भी किया जाता है। समेकित नाशी जीव प्रबंधन की कई विधियां मौजूद हैं, जैसे शस्य क्रियाएं, यांत्रिक विधियां, जैविक विधियां और रासायनिक नियंत्रण। शस्य क्रियाओं में गर्मी में खेतों की जुताई करके उसमें मौजूद कीटों की अवस्थाओं को नष्ट किया जाता है। समय से बुवाई और उचित फसल चक्र अपनाया जाता है। कीट और रोगों से ग्रसित पौधों को नष्ट किया जाता है। खेतों में लाइट ट्रैप लगाकर कीटों को नष्ट किया जाता है। जैविक विधि में मित्र कीटों को संरक्षण दिया जाता है, जबकि रासायनिक नियंत्रण में सुरक्षित रसायनों का सही समय पर निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, हमें कैसे खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए, किन किन कीटों को अपने खेतों से दूर रखना चाहिए, कौन से हमारे मित्र कीट हैं और कौन से हमारे शत्रु कीट हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हमें हमारी कृषि में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा हम कितने भी पोषक तत्व हमारे खेतों में डाल लें उससे हमें नुकसान ही होगा। अगर जब तक हम अच्छे से खरपतवार नियंत्रण नहीं कर लेते तब तक हमें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: किसान भाई भी जानते हैं कि हमारे खेतों में मुख्यतः तीन प्रकार के खरपतवार देखे जाते हैं। पहले घास जाति के खरपतवार हैं। घास जाति में खरीफ मौसम में सबसे ज्यादा जो खरपतवार आता है वो आता है सावक, सावा जिसको बोलते हैं लोग, कभी कभी व्रत में इसको इसकी खीर भी बनाते हैं।
3: सावक की
2: खीर भी बनाते हैं और हम तो जानते हैं गांव में इसकी झाड़ू भी बनाई जाती थी। जब पहले बांस की झाड़ू नहीं मिलती थी तो सावक ज्यादा होता था, तो किसान जो है लोग निकाल करके इसके झाड़ू के रूप में भी इसको यूज करते थे। तो ये सावा बहुत ज्यादा आता है धान की फसल में भी और दूसरी फसलों में भी।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: तो जैसा कि मैं घास जाती है खरपतवारों की चर्चा कर रहा था, उसमें सवा है, मकरा है जिसके जिसको क्रैप ग्रास बोलते हैं, जिसके जैसे ये देखिए ये सवा है, देखिए ये पूरा गुच्छे में आता है और इसको किसान भाई देख लेते हैं धान की फसल में और जो खरीफ की फसल है, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मक्का हो, चाहे अरहर हो, जो कोई भी फसल है, लोबिया हो, उसमें काफी आता है। इसके बाद जो है ये है मकरा।
3: मकरा,
2: हाँ देखिए, इसके अगर आप इसको दिखाएंगे किसानों को, तो जब कौवे के पैर जो होते हैं क्रैब फुट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके पंजे के हिसाब से इसको फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस ऐसा होता है, तो इसको मकरा बोलते हैं। तो ये भी घास जाति का एक मुख्य खरपतवार है। इसके अलावा ये है, इसको बोलते हैं फूलनी घास, एक्रेनिक रेसिमोसा जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटी होती है और जहां मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां ये ज्यादा पनपती। इसके अलावा ये एक दूसरी ग्रास है जिसको रेट्रोफ्लेक्सा डाइनेब्रा रेट्रोफ्लेक्सा बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। इसको भी घास जाति का ये भी मुख्य खरपतवार। और आजकल जो है धान की फसल में जो है सांवा कम हो रहा है, जबकि ये खरपतवार उसकी जगह ले रहा है। अच्छा। खरपतवारों की एक प्रकृति होती है कि हम अगर एक शाकनाशी एक हर्बिसाइड बार बार प्रयोग करते हैं धान की फसल में, तो उस शाकनाशी के कारण कुछ खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे धीरे कुछ खरपतवार उन पुराने खरपतवारों की जगह ले लेते हैं, जिसके काल क्या होते हैं हम कहते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। जैसे हमारे कुछ क्षेत्रों में गेहूं की फसल में आइसोप्रोटन बहुत प्रमुख हर्बिसाइड था, जिसको गुल्ली डंडा कंट्रोल होना बंद हो गया। तो ऐसी समस्या जो है बार बार किसान भाइयों को मैं ये हिदायत दूंगा कि एक तरह की हर्बिसाइड बार बार।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी हमने सुना कि वही दवाइयां डाल डाल के क्या होता है, धीरे धीरे वही खरपतवार अपने आप को मजबूत बना लेता है और जो पुराने वाले खरपतवार की जगह कर लेता है। खरपतवार से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, उससे पहले आइए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से बिली गीत को।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याभील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक माना गया है और आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि हमें खरपतवार का नियंत्रण करना कितना जरूरी है। अन्यथा हम कितना भी पोषक तत्व डाल लें हमारे खेतों में और हम कितना भी हमारे खेतों में मेहनत कर लें, लेकिन सही खरपतवार का सही समय पर इसका ध्यान रखे, इसकी इसमें सावधानियां बरतना बहुत ही जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, खरपतवार से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, लेंगे कुछ एक्सपर्ट की राय।
1: खरीफ के मौसम में, इस मौसम में धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे आपका सोयाबीन हो, चाहे कोई भी दलहनी फसल हो, इस मौसम में मोथा जो है बहुत मात्रा में आता है। कभी कभी पूरे खेत में मोथा दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि देखिए, अभी मेरे हाथ में मोथा है, इसकी जड़ें देखेंगे, इसकी जड़ों में गांठें हैं। इसका भोजन जो है ना, इसकी एक मोथा अगर मोथा ऊपर से कट गया है तो कम से कम ये 15 साल तक जीवित रहता है, क्योंकि इसकी जड़ों में भोजन काफी पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए इसका प्रकोप बहुत होता
2: है। तो मतलब इसको काटना छाटना इसका समाधान नहीं है, इसको जड़ से निकालना पड़ेगा।
1: दूसरी बात ये है, आपने कहा ग्लाइफोसेट नामक दवाई से इसका नियंत्रण नहीं होता है। ऐसा कीजिए, जब आप मई के महीने में बहुत गर्मी होती है तो खेत की गहरी जुताई कीजिए, खेत को बिल्कुल नीचे से खोल दीजिए। खोलने से सूर्य की जो गर्मी है उससे इसकी जड़ें जो है, इसका भोजन जो है सूर्य की गर्मी के कारण उसको निष्क्रिय हो जाएगा, और 15 दिन बाद आप हल्का सा पानी दे करके उसके अंदर ग्लाइफोसेट नामक दवाई डाल दीजिए पूरे खेत के अंदर। ग्लाइफोसेट की मात्रा जो है, आप 1 किलो लेंगे प्रति हेक्टर 2.5 एकड़ के लिए और 500 लीटर पानी में ये दवाई का जो घोल बनाकर छिड़काव कीजिए। उससे क्या होगा, जो जड़ें हैं आपने गहरी जुताई से खोली है खेत को, पूरा खेत को आपने फाड़ दिया है, तो ये जड़ें ऊपर आ जाएंगी, सूर्य की गर्मी से ये नरम हो जाएंगी, काफी कमजोर हो जाएंगी, और ऊपर से इसका दवाई का प्रकोप होने से इसके अंदर जो है ग्लाइफोसेट चला जाएगा।
2: मतलब ये ट्रांसपोर्टेटेड हर्बिसाइड है, पूरा समाधान यही है।
1: हाँ, लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों को ये कहूंगा कि ये सोचें कि 100% नियंत्रित हो जाएगा, नहीं होता, क्योंकि इसकी गांठें जो है ना जमीन में काफी गहरी तक होती हैं, तो ऊपर की जो गांठें वो खत्म हो जाएंगी, तो आपको कम से कम लगभग 60-70% तक का निजात आपको मिल सकता है।
0: किसान साथियों, जैसा अभी हम सुन रहे थे मोथा खरपतवार के बारे में, तो किसान साथियों, मोथा खरपतवार जो है, अगर हम अपने झाबुआ की भाषा में बोलें तो इसको डुंगड़ू कहते हैं। ये डुंगड़ा हमें तालाब के किनारे अधिकतर देखने को मिलता है, साथ ही जहां काली मिट्टी में अधिकतर ये देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारी अप्रैल मई जून की जो कड़ाके की गर्मी होती है, उस समय हम हमारे खेत की जुताई कर दें। खेत की जुताई करने से क्या होगा, थोड़ी गहरी जुताई करें ताकि उसमें से इसकी जड़ें हैं, इसकी जड़ें जो बाहर आ जाएगी और अच्छी गर्मी की वजह से वो थोड़ी सी नरम पड़ जाती है और उस पर हम दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। तो इसका नियंत्रण पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन 70% तक इसका नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही अगर आप भाई अपने हमारे किसान भाई जानते हैं, ये जो अपना डुंगड़ा है, इसके अंदर की जो गांठें होती है वो बच्चे बड़े चाव से इसे खाते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है इसकी गांठें। अगर आप अभी पानी के दिनों में भी इसको आप उसको उखाड़ेंगे तो उसके अंदर की जो गांठ निकलेगी उसको साफ करके अंदर की गांठ खाई भी जा सकती है। आप में से बहुत किसान भाइयों ने इसको इसका टेस्ट लिया होगा, साथ ही कुछ बच्चे भी इसको बड़े चाव से खाते हैं। ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अगर इसको स्वाद से खाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: मैं अपने श्रोताओं को और किसान भाई

0: को सबसे पहले ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो कीट प्रबंधन के लिए हम बहुत सारी कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं उसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि कीट प्रबंधन के लिए दवाइयां बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि उसे हमारे इन्वायरमेंट का जो पक्षी है
1: देखिए उसमें भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जैसे जैसे हमने अभी बात की खरपतवार की,
0: उसके बाद में पक्षियों की संख्या कम से कम होती जा रही है, हमारे जमीन के अंदर केंचुए खत्म होते जा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय को देखते हुए कि आप सबसे पहले कीट प्रबंधन, कीट आता कहाँ से, कीट जमीन के अंदर से आता है, तो हम ग्रीष्मकालीन जुताई करके नीचे की मिट्टी को ऊपर, क्योंकि कीड़ा जो सोने के लिए जमीन में जाता है जब उसको उत्पन्न करते हैं तो ऊपर आता है प्यूपा अवस्था में, उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। दूसरा, जब फसल उगाती है 1 फीट की होती है तो इंसेक्ट रस चूसने वाला आता है, उसको रोकने के लिए हमारे पास ये आप देख रहे हैं ये येलो स्टिकी ट्रैप है, अगर आप अपने खेत में जगह जगह लगा देंगे ये मात्र 10 से 15 रुपए में आसानी से मिल जाता है।
1: खोल के दिखाएंगे इसे?
0: जी, इसमें बहुत सारे कीट हैं जो चिपक गए हैं।
1: अच्छा, कीट चिपके हुए हैं?
0: ये इसमें कीट चिपके हुए हैं और अनगिनत संख्या में ये बहुत सारे कीट हैं जिसे आप देख रहे हैं।
1: अच्छा,
0: 10 रुपए के खर्चा है और हम 1 बीघे लगभग 1/4 हिस्से में हम लोग उसको लगा करके रोक सकते हैं। दूसरा, जैसे ही फसल आगे बढ़ती है इंसेक्ट आता है फ्लावरिंग स्टेज पर, वह बहुत सारे अंडे दे देता है, उस अंडे को देखने के लिए यार इंसेक्ट को देखने के लिए एक फेरोमोन ट्रैप है, तरह तरह के फेरोमोन ट्रैप आपके।
1: फेरोमोन ट्रैप का क्या मतलब हुआ डॉक्टर साहब?
0: फेरोमोन ट्रैप का मतलब होता है कि जो जमीन से, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए हमारे समाज में शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, इसी तरह से इंसेक्ट में ऐसा नहीं होता, इंसेक्ट जमीन के अंदर से निकलता है, मादा द्वारा एक गंध छोड़ी जाती है जो नर को आकर्षित करती है। इस फेरोमोन ट्रैप के अंदर आप देख रहे हैं, इस फेरोमोन ट्रैप के अंदर बहुत सारे हैं, यहाँ पर हमने मादा की गंध लगा दी क्योंकि नर को आकर्षित करने के लिए गंध होती है, इसके अंदर अगर हमने गंध लगा दिया, गंध से नर इस मादा से मिलने के लिए आते हैं, हमने सारे नर को इस ट्रैप के माध्यम से एकत्रित कर लिया,
1: तो अंदर कीट है ये जो दिखाई दे रही मिट्टी जैसा?
0: जी जी जी, मिट्टी जैसे नहीं है, ये कीट है,
1: कीट है,
0: हाँ आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे इंसेक्ट को आप कलेक्ट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आम की, अमरूद की, ये फल मक्खियां हैं।
1: अच्छा,
0: आम और अमरूद की फल मक्खियां हैं, और आम और अमरूद पर क्या होता है, जैसे अभी बरसात का सीजन आने वाला है तो अमरूद में बहुत ज्यादा इंसेक्ट लगता है, इंसेक्ट पे हम लोग दवाइयां छिड़कते हैं लेकिन वो मक्खी है ना, मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, स्प्रे से इसको रोकना बहुत मुश्किल है, हम इस विधि से आसानी से रोक सकते हैं। दूसरा बहुत प्रभावी,
1: जैसे आपने बताया कि इसमें मादा की गंध लगा दी जाती है तो नर्स में, तो इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं?
0: यस, उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि उसमें इतना छोटा छेद होता है कि एंट्री तो कर जाता है लेकिन उसमें एग्जिट यानी निकल नहीं पाता है, तो सारे नरों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, मादा के साथ मिलन नहीं होता है, अंडे नहीं होते हैं और हमारी फसल बिना दवाइयों के सुरक्षित हो जाती है। इसके साथ साथ मैं और बताना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं कि जैसे अभी अमरूद है, आम चल रहा है, आम में ये बहुत प्रभावी है।

0: माइन्यूट संख्या में घूम रहे हैं हमारे किसान भाई देख सकते हैं, और अब ये काफी जगह आसानी से मिल जाता है। हमारे किसान भाई इसको समय समय पर इसको इस्तेमाल करें, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं, देखिए अभी और ये जीवित है, बहुत छोटे छोटे से, अभी आपको शायद नहीं दिखाई देंगे क्योंकि देखिए ये ग्लास का है और बिल्कुल, तो इन इनका इस्तेमाल किया जा सकता है
0: और इनकी जो लगाने के लिए। थैंक यू मैडम, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे जो दर्शक हैं, ये ट्राइको कार्ड के रूप में।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: धान की फसल में सबसे पहले लगाने के 15-20 दिन बाद तना छेदक आता है, पत्ती मोड़क कीट आता है, अरे गंदी बग आता है, बहुत सारे फिर हॉपर भी आते हैं जैसे GLH है, इस तरह के आते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो किसान भाई हैं, एक तो तना छेदक जो बीच में गोब खींचते हैं तो आसानी से खिंच आती है, वहां के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा ट्राइको कार्ड है,
1: ट्राइको कार्ड
0: एक एकड़ में दो लगते हैं, जिसमें एक एकड़ में लगभग 20,000 अंड परजीवी होते हैं जिन्हें हम एक एकड़ में इस्तेमाल करते हैं।
1: इतना सा ये पूरे एक एकड़ में काम करेगा?
0: इसमें लगभग एक में 20,000 होते हैं और दो में 40,000 हमारे परजीवी होते हैं। इन परजीवी एक एकड़ के लिए पर्याप्त हैं। इसे लगाने का तरीका यह है कि खेत से 2 मीटर अंदर जाके लगाएं, क्योंकि अगर हमने किनारे पे लगा दिया तो दूसरे के खेत में चले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि सलाह सभी को दिया जाए, जैसे कि हम सभी को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये मात्र 45 रुपए का हमारे कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल में मिलता है, जिसे दो लगाने 90 रुपए का खर्चा है, और 2 से 3 बार धान की फसल में लगाएंगे तो तना छेदक और पत्ती मोड़क कीट नहीं लगेगा। अच्छा। हम IPM की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पत्ती मोड़क जो कीट है, पत्ती मोड़ के और एक जाला बना करके उसके अंदर बैठ जाती है सुंडी, लेकिन हम ऊपर से स्प्रे करते हैं, जब ऊपर से स्प्रे करते हैं तो वो तो नीचे है लेकिन सुंडी मर नहीं पाती है। मैं यहाँ बिना दवाइयों के बहुत अच्छा एक तरीका बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे पत्ती मोड़ करके जो सुंडी बैठी हुई है, 10 मीटर की रस्सी हमारे किसान भाई यूं ही घुमा दें, पानी भरा हुआ है, वो सुंडी को जैसे डिस्टर्ब करेंगे, रस्सी से हिलाएंगे तो सुंडी नीचे गिर जाएगी, और जैसे ही पानी के संपर्क में सुंडी आएगी वो मर जाएगी, बिना दवाई के इलाज है। इसी तरह से अगर एक बहुत खतरनाक कीड़ा जब हमारी धान की फसल पकने को आती है तो वहाँ एक गंदी कीट आता है, और गंदी कीट जब आता है कि पहले वो खेत के चारों तरफ जो मेड होती है उसमें खरपतवार होता है, वहां पर पहले वो अंडे देता है, उसके बाद वो खेत में जो धान की फसल दूधिया उस अपने पीरियड में आती है जब धान की फसल पकने को होती है, तो रस चूसता है, रस चूसने के बाद में उसको सारा बाली को सफेद कर देता है, जो दाना पकने को होता है उसको काला कर देता है। यहाँ पर जब वो कीट आता है तो एक अजीब सी गंध आती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि डस्ट करते हैं, बहुत सारे स्प्रे करते हैं, वह स्प्रे और डस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जैसे नाम से आप जानते हैं गंधी कीट, उस गंदी कीट को नियंत्रण करने के लिए हम अपने किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि एक गंध जैसा ही पदार्थ उस खेत में छिड़काव किया जाए, जैसे 2 से 3 किलो लहसुन को कुचल के और उसको आप अपने खेत में पानी में के साथ छिड़काव कर दें, एक एकड़ में उस समय लगभग 150 लीटर पानी लगता है, वो उस गंध से दूर भाग जाएगा। दूसरा बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि उस समय थोड़ा सा फसल पकने को होती है तो थोड़ा हमारे किसान भाई विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर एक थोड़ा सा आग जला दें, और आग जलाने पर वो गंदी कीट रोशनी की तरफ बहुत ज्यादा आता है, ऐसा करें थोड़ा सा आग को एकदम जब घर आए तो बिल्कुल खत्म करके आए। तीसरा, वहां पर लाइट ट्रैप और फिरोमोन ट्रैप की जैसे हम बात कर रहे हैं, सॉरी लाइट ट्रैप और स्टिकी ट्रैप की बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ लाइट ट्रैप लगाएंगे वो गंदी कीट लाइट पर बहुत आता है और यहाँ आकर के वो चिपक जाता है। इसके साथ साथ वहां पर ये अंड परजीवी भी बड़ा प्रभावी ढंग से इस पे काम करता है। इस तरह से हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि ये सारी विधियों को मॉनिटरिंग के आधार पर अपने खेत में इस्तेमाल

0: से न केवल हमारी मिट्टी परंतु हमारा वातावरण भी खराब होता है। किसान साथियों, आप आसानी से इसे घर पे भी बना सकते हैं, साथ ही लहसुन को कूच कर भी इसकी दवाइयां बना सकते हैं। आदि जो जैविक दवाइयां हैं उनका प्रयोग हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और रासायनिक जितनी भी दवाइयां हैं उनसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनसे हम जितना हो सके दूर रहें और अनावश्यक खर्चों से बचे रहें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण के बारे में हम सुन रहे थे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हमें कुछ किसानों ने सोयाबीन में खरपतवारों को नियंत्रण करने हेतु आग्रह किया था कि हम कैसे सोयाबीन के खरपतवारों को हम नियंत्रण कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं और लेते हैं इसमें एक्सपर्ट की राय।
2: हाँ, सोयाबीन की फसल का अभी टाइम आ रहा है या लगा दी होगी, जुलाई के 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में सोयाबीन की फसल लगाई जाती है। जब फसल लगाने के एक या दो दिन बाद जो है आप इसमें एक पेंडीमिथ्रिन दवाई आती है, पेंडीमिथ्रिन कई नामों से बाजारों में बिकती है, उसकी 1 किलो मात्रा लें और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर सोयाबीन के लगाने के एक या दो दिन बाद जो है छिड़काव कर दें खेत में। अगर पेंडीमिथ्रिन ना मिले तो एक दवाई आती है मेट्रीविजिन, मेट्रीविजिन कई नामों से बिकती है बाजार में, उसकी मात्रा सिर्फ 200 से 250 ग्राम। देखिए, मेट्रीविजिन बहुत तेज दवाई है, इसकी मात्रा मैं दोबारा बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को, 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टर। प्रति हेक्टर का मतलब है 2.5 एकड़। और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर सोयाबीन की बुआई के एक या दो दिन के अंदर किसान भाइयों का इसका समान रूप से खेत में छिड़काव करना है। और उसके बाद जिन किसान भाइयों की फसल, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि अगर सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की हो गई है तो उसमें भी वो खरपतवार नाशी का प्रयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए दवाई दूसरी है जिसका नाम है एमेजदाफायर। एमेजदाफायर नाम की दवाई आती है जिसकी मात्रा 50 से 70 ग्राम। देखिए, आजकल जो है दवाइयों की मात्रा ग्राम में आती है, किलो में प्रयोग होने वाली दवाइयों का समय आज चला गया, तो 50 से 70 ग्राम एमेजदाफायर दवाई को आप लीजिए एक हेक्टर के लिए और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर जब आपकी सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की हो या 25 दिन की हो, अगर 30 दिन की भी हो गई है तो उसमें भी एमेजदाफायर नामक दवाई का प्रयोग करके किसान भाई सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण आसानी से कर सकते।
0: जी हाँ किसान साथियों, जैसे कि अभी हमने डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अगर आपकी सोयाबीन की फसल अभी छोटी है, 10 दिन की है, 15 दिन की है, या 15 से 20 दिन की या 20 से 30 दिन की है, तो हमें अभी हम उस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हमें यह बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है किसान साथियों कि हम क्या करते हैं कि ज़्यादा कीट दिख गई या फिर हम थोड़ी सी ज़्यादा मिला के डाल देते हैं, जिससे हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि ज़्यादा डालने से हमारी हमें फिर से कीटों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारे कीट मर जाएंगे। लेकिन आपको इसमें मानक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी तरफ से थोड़ी ज़्यादा मिलाने के चक्कर में क्या होता है कि जो हमारी फसल है वो भी जल जाती है। तो आप कृपया कर जो मानक है उसका प्रयोग ज़रूर करें, ऐसा ना हो कि हम हमारी मर्जी से कितनी भी दवाई डालें। तो उसी के साथ ही साथ किसान भाइयों, हम कोशिश कीजिएगा कि आप जैविक खेती की ओर रुख ज़्यादा करें। जैविक दवाइयाँ भी अवेलेबल है, बहुत सारी विधियाँ भी है, बहुत सारी विधियों के मान से भी आपको हमने पहले पुराने एपिसोड में आपको हम बता चुका है कि कैसे हम जैविक दवाइयों के माध्यम से भी कीट खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण में जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, जैसा कि हमारा किसान हमेशा से मिश्रित खेती करता आया है, हम हमारे खेतों में एक फसल के अलावा दूसरी फसल मिक्स करके डालते हैं ताकि इसके साथ साथ हमें

0: कुछ और फसल भी साथ में मिल जाए, इस उद्देश्य से हमारे सारे किसान मिश्रित कृषि करते हैं और ये काफी अच्छा भी है। लेकिन हमें जिन समस्याओं का सामना वहाँ करना पड़ता है जहाँ बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, अगर हमें सोयाबीन के साथ सोयाबीन के खरपतवार को नियंत्रण करना है तो अगर हम सोयाबीन की दवाई डालेंगे तो उसके साथ क्या होता है कि मक्का भी उसके साथ मर जाती है और दूसरे भी हमारी जो फसल है उसमें नुकसान होता है। तो अगर हम सोयाबीन की खेती कर रहे हैं उसके साथ अगर कोई और फसल डाल दी है और उसमें अगर हम सोयाबीन के खरपतवार की मारने की दवाई डाल रहे हैं तो उससे उसमें हमारा काफी नुकसान होता है और काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी समस्या में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए, जानेंगे एक्सपर्ट की राय।
1: आप मूंगफली?
2: हाँ, मूंगफली
1: रूप से क्या जाता है?
2: हाँ बिल्कुल, देखिए मूंग और मूंगफली की जो इंटरक्रॉपिंग है, मिश्रित खेती बोलते हैं जिसको कहते हैं, जैसे पहले हमारे यहाँ हरियाणा या उत्तर प्रदेश में गेहूं के साथ सरसों लगाते थे बीच में एक लाइन, तो इसी तरीके से उड़ीसा में मूंग के साथ मूंगफली लगती है। दोनों ही फसलें चौड़ी पत्ती वाली हैं, तो इसके लिए मैं जब आप दोनों एक साथ लगाएंगे और लगाने के एक या दो दिन बाद एक दवाई मैंने अभी पहले भी बताई थी किसान भाइयों को, पेंडीमिथिलिन दवाई जो है 1 किलो मात्रा लें 2.5 एकड़ के लिए, 1 हेक्टर के लिए, और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर जब मूंग और मूंगफली दोनों लगा दी हैं खेत में, सोइंग कर दी है उनकी, सोइंग के एक या दो दिन बाद छिड़काव कर दें, क्योंकि ये दवाई दोनों फसलों के लिए कंपेटेबल है, दोनों फसलों के लिए सिलेक्टिव है, ये खरपतवारों को मारेगी और फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: ये बहुत बढ़िया है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। तिल की खेती के बारे में मैं बताऊंगा, पेंडीमिथिलिन दवाई तिल की खेती के लिए उपयुक्त है। जब आप तिल की बुआई कर दें, सोइंग कर दें, सोइंग करने के एक या दो दिन बाद जो है पेंडीमिथिलिन दवाई आप एक किलो दवाई जो मैं आपको पहले ही बताया, 1 किलो दवाई 500 लीटर पानी में 2.5 एकड़ के लिए आप इसका छिड़काव कर दें तिल के और खरपतवारों के जमने से पहले। पेंडीमिथिलिन का प्रयोग जो भी किसान भाई करें, जिस भी फसल में करें, फसल के उगने और खरपतवारों के उगने से पहले दवाई खेत में छिड़की होनी चाहिए।
4: अच्छा,
2: ये विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, आपने कहा कि हमको ये दो पेंडीमिथिलिन है कहाँ से सस्ती मिले, देखिए
4: नकली बता रहे कहीं मिल जाती है ये,
2: बिल्कुल सही बात है। आप जो है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कई जगह कोऑपरेटिव सोसाइटीज की दुकानें हैं, जो ऑथराइज डीलर्स हैं कई कंपनियों के, पेंडीमिथिलिन आज कम से कम 10-12 कंपनियां बनाती हैं। आप ऑथराइज डीलर के पास जाइए और पेंडीमिथिलिन जब खरीदेंगे तो उसका ओरिजिनल बिल लीजिए। देखिए बाजार के अंदर स्पूरियस मटेरियल नकली दवाइयां बहुत फैल रही हैं, जिसके कारण खरपतवार समय से जब छिड़काव करने से नहीं मरते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों का नुकसान भी होता है और फसल पे भी उसका नुकसान हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो आप बिल जरूर लीजिए और ऑथराइज डीलर से ही।
0: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने एक्सपर्ट की राय में सुना, बहुत सारी फेक कंपनियां चल रही है जो कि आपको फेक दवाइयां दे सकते हैं, फेक दवाइयां मिल सकती है, इसीलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। हमें हमारे पर्यावरण को, हमारी जमीन को और हमारी पूंजी जो हम खेतों में लगा रहे हैं वो अनावश्यक ना जाए, उसे अनावश्यक ना बहाएं, उसे आप केवीके के माध्यम से भी, आप केवीके में जाकर वहां भी आप अपने जिले से, अपने पास के ब्लॉक से आप वहां पर मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, जो ऑथराइज दवाई है उसी को ही आपको लेना चाहिए और फालतू में हमें मार्केट से दवाई लेके जो अनावश्यक लागत लगती है उससे हमें बचना चाहिए। साथ ही वो ऑथराइज भी नहीं होती है कहीं कहीं पर, तो हमें इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो दवाइयां हम हमारे खेतों में डाल रहे हैं उसका प्रयोग, हमें ये जो दवाइयां हैं ये ना केवल हमारे पर्यावरण को बल्कि हमारी कृषि भूमि को भी दूषित करती है, साथ ही हमारी फसलों में जाती है, जिस फसलों को हम खाते हैं तो उसमें भी काफी प्रभाव देखा जा रहा है। तो किसान भाइयों, यहाँ हमें बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है इस दवाइयों का प्रयोग करने से पहले। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना जो कि खरपतवार से संबंधित थी। आपने जाना कैसे खरपतवार का प्रबंध किया जाता है अलग अलग फसलों के साथ, अलग अलग फसलें जिनमें हम मिश्रित खेती को लेकर भी हमने चर्चा की थी, साथ ही हमें कीटों से कैसे हम बच सकते हैं, साथ ही हमें अलग अलग प्रकार की जो खरपतवार घास है उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आज आपने जाना। किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः मुलाकात होगी कल इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: रोशनी।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड, जहाँ हम मुलाकात करते हैं उन लोगों से जिनकी जिंदगी खुद एक कहानी, एक सफर और एक प्रेरणा होती है। आज हमारी मेहमान है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रसोई को सिर्फ कुकिंग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे कल्चर, स्टोरी टेलिंग और ह्यूमन कनेक्शन का एक खूबसूरत माध्यम बना दिया। शेफ, एंटरप्रेन्योर, एजुकेटर और जयपुर होम कुकिंग की फाउंडर शेफ पायल बियानी पिछले एक दशक से दुनिया भर के लोगों को भारतीय शाकाहारी भोजन की समृद्ध परंपरा से रूबरू करा रही हैं। जयपुर की पहली और अनोखी मार्केट टू टेबल टूर की शुरुआत करने वाली पायल जी ने न सिर्फ कुकिंग सिखाई, बल्कि राजस्थान की भोजन की परंपराओं को एक जीवंत अनुभव में बदल दिया। फिलोसफी में मास्टर्स डिग्री, न्यूजीलैंड से प्रोफेशनल कुकरी डिप्लोमा, इटली में कलरी ट्रेनिंग और अपने सफर में अनेक प्रयोगों के साथ पायल जी ने कुकिंग को एक कला और जीवन दर्शन दोनों बनाया है। शेफ पायल बियानी जी का जिंदगी अनप्लग्ड में दिल से स्वागत है। तो पायल बियानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम?
2: नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपने आपने मुझे इनवाइट किया आपके इस प्रोग्राम में, आपके जो लिसनर्स हैं उनके साथ मुलाकात के लिए, एक वर्चुअल मुलाकात के लिए आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच
1: जी। हमारी पूरी SN रेडियो की फैमिली बहुत एक्साइटेड है आज आपसे बातचीत करने के लिए, आपको सुनने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ जैसे मैंने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने गैदर किए हैं जीवन में। तो हम चलते हैं और शुरू करते हैं आपके करियर से ही, जहां पे आपने फिलोसफी में मास्टर्स किया, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग लगा, और उसके बाद फिर आपने प्रोफेशनल कुकरी को अपना करियर बनाया। तो इन दोनों में पैरेलल क्या है मैम, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि फिलोसफी और कुकिंग को अगर हम देखते हैं तो देखने में अलग लगते हैं, बट इनका एक एक कॉमन ग्राउंड है कहीं ना कहीं, जहां पे लोगों को जीवन का स्वाद समझाना इन दोनों करियर पाथ्स या इन दोनों फील्ड्स का पर्पस है। तो आप इन दोनों में कैसे पैरेलल ड्रॉ करते हैं और कैसे फिलोसफी से आप कुकिंग की तरफ आए?
2: देखिए तनुषा जी, पढ़ी तो वो वैसे टेक्स्ट बुक होता है, जब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते पढ़ते मतलब मैंने ग्रेजुएशन भी फिलोसफी के साथ में की है एज अ माइनर, बट फिर मैंने मेजर सब्जेक्ट लेके मास्टर्स किया था। सो पढ़ने के दौरान ही हमारे डिस्कशंस होते थे, बिकॉज फिलोसफी यूजुअली जब क्लासेस होती है तो डिस्कशन क्लासेस होती है, देर इज नो राइटिंग क्लास, उसमें कुछ लिखवाया नहीं जाता, कुछ नोट्स नहीं मिलते, सिर्फ डिस्कशंस होते हैं टॉपिक पे। फिलोसफर्स जो होते हैं वो फिलोसफी की बात करते करते, आप जब पढ़ाई करते करते जब खत्म करते हैं, तब तक आपको ये रियलाइज होने लग जाता है कि जिंदगी में हर चीज में फिलोसफी है। हर चीज में आप कुछ भी चीज, कोई काम करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, कोई या आप लाइफ में कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर चीज के पीछे एक फिलोसफी होती है। तो जिसको हम बहुत कॉमन भाषा में एक आइडिया बोलते हैं, आइडिया। सो हर चीज का एक आइडिया होता है जो कि वर्चुअल होता है, जो कि जिसे आप कहते हैं इमेजिनेटिव होता है, और वो आउट ऑफ द जो भी कुछ आप ठोस में बनाने वाले, जो भी आप प्रैक्टिकली बनाने वाले, वो उसका एक फॉर्म होता है जो आपके दिमाग में बनता है।
1: जी
2: बाकी फिलॉसफी हर चीज के पीछे होती है, पेड़ उगाने के पीछे फिलॉसफी होती है, घर बनाने के पीछे फिलॉसफी होती है, परिवार बनाने के पीछे फिलॉसफी होती है, रिलेशन बनाने के पीछे, कुछ भी चीज, एनी थिंग, यू जस्ट पिकअप एनी सब्जेक्ट, एनी रिलेशनशिप, एनी कुछ भी चीज आप उठा के दुनिया में से देखेंगे उसके पीछे कोई फिलॉसफी जरूर होती है, साइंस के पीछे भी फिलॉसफी होती है।
1: बिल्कुल।
2: तो कुकिंग इसी तरीके से, यू नो, कुकिंग भी एक ऐसा चीज है जो कि हमने, मतलब ह्यूमन बीइंग्स की एक ऐसी स्किल है जो हम लोगों ने इतने, अपने जितना भी डेवलपमेंट हुआ है हजारों सालों करोड़ों सालों का, उसका एक स्किल डेवलप है। कुकिंग के पीछे भी एक फिलॉसफी होती है,
1: राइट।
2: वही चीज, उसी चीज ने मेरे को इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाने का, एक मतलब मैं एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पे कैसे आई उसमें हेल्प कर।
1: हाँ,
2: तो मैं वो, हाँ मतलब मैं उस तरीके से अपने प्रोफेशन को देखती हूँ,
1: right.
2: फाइनली इसको मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया।
1: वाओ, हाउ ब्यूटीफुल
2: अबाउट दैट। या
1: अमेजिंग, अमेजिंग जर्नी, और बहुत ही खूबसूरती से आपने दोनों में पैरेलल ड्रॉ किया। जीवन में हर चीज में फिलॉसफी है, हर चीज में एक फलसफा है, बहुत ही सही बात है। और कैसे एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की जर्नी है ये बेसिकली हर चीज में। तो हम बहुत हैप्पी हैं कि आप कुकिंग की तरफ आए, क्योंकि हमें आपके बहुत अमेजिंग खाने का जायका चखने को मिल रहा है। अब आगे चलते हैं मैम, आपने बहुत सारे लोगों को इंडियन वेजिटेरियन कुजीन सिखाई है, तो आप और आपने बहुत सारे फॉरेनर्स के साथ भी डील किया है। बेसिकली आपका क्लाइंटेल जनरली फॉरेन क्लाइंट्स ही रहे हैं, जिस तरह का आपका कोरियोग्राफ रहा है। तो आपके अनुभव में जब आप किसी फॉरेन गेस्ट से पहली बार इंटरेक्ट करते हैं एक ट्रेडिशनल इंडियन किचन सेटअप में, तो उन्हें सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट करता है आपके एक्सपीरियंस में? वो रेसिपीज से अट्रैक्ट होते हैं, मसालों से हमारे अट्रैक्ट होते हैं, हमारी मेहमान

0: नवाजी से अट्रैक्ट होते हैं या इन सबका एक ब्लेंड होता है?
1: एक्चुअली देखिए, वैसे हमें इसमें थोड़ा सा मैं अपना मतलब जब आप फर्स्ट टाइम हम क्योंकि हम मैं फर्स्ट टाइम मिल रही होती हूँ बिल्कुल ही, मतलब मेरे से कोई इंट्रोडक्शन नहीं है किसी का भी, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो जिंदगी में मेरे से पहली बार मिल रहे हैं। अधिकतर रिपीट क्लाइंट होते हैं, वो अलग बात हो गई, बट जब मैं पहली बार किसी से मिलती हूँ और वो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आया है कि कुछ वो भारतीय खाना इंजॉय करेगा, यू नो कुछ हम खाएंगे, कुछ नई जगह का नया कल्चरल फूड हमें मिलेगा, तो उसके उसका जो फर्स्ट जो उसके दिमाग में जो भी पिक्चर्स होती हैं वो होती हैं बढ़िया सी सुंदर सी थाली, कुछ बढ़िया सा सुंदर सा कुछ चीजें, कुछ इंटरेस्टिंग समथिंग न्यू विच ही हैज नॉट एक्सप्लोर्ड। बट जो उनको यू नो सबसे ज्यादा जब हम प्रोसेस चालू करते हैं अपना, पहले हम यू नो चीजें दिखाते हैं, उनको मार्केट लेके जाते हैं, वो सब चीजें करते हैं, तो सबसे ज्यादा मजा आता है हमारे मसालों को देख के, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उनको किसी चीज से होता है। अगर मैं आपके प्रश्न का सही जवाब दे रही हूँ तो वो मसालों से होता है, क्योंकि हर दुनिया में हर खाने में मसाले होते हैं, बट जिस तरीके से भारत के अंदर भारतीय पारंपरिक भोजन में जो मसालों का समागम हुआ है, जो उसका इंटीग्रेशन हुआ है, वो यूनिक है।
0: बिल्कुल।
1: सो आई थिंक सो फ्रॉम फर्स्ट मोमेंट टू द लास्ट मोमेंट ऑफ आर होल एक्सपीरियंस, जो चीज उनको बार बार एक्साइट करती है वो मसालों का इंटीग्रेशन है। सो एंड देन यू नो दैट गिव्स देम वेरी वेरी इट्स अ सरप्राइजिंग, मतलब उनको हर चीज में ऐसा कैसे, ये ऐसे होता है, इतनी सारी चीजें होती है, ये सब चीजें होती है। सो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम, मैं उनको स्टार्ट करती हूँ चार मसालों से, चार से मैं उनको छह पे लाती हूँ, छह से मैं उनको आठ पे लेके जाती हूँ, आठ से दस पे लेके जाती हूँ, दस से बीस हो जाते हैं।
0: तो
1: वो देखते हैं कि इतना लंबा इसका बैंडविड्थ है और इसके अंदर से हम इतनी सारी चीजों से एक फ्लेवर बना रहे हैं, वो चीज उनको सबसे ज्यादा एक्साइट करती है और वो चीज भारत के खाने को, भोजन को, हमारी परंपराओं को सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है। भारत का एक्चुअली जो ज्योग्राफी है, जो सेंट्रलाइज है, वो सारी दुनिया से उसके अंदर तो उसमें यू नो सब चीजें मिक्स हो करके एक नया कुजीन बनाए। सो हम जो अभी ले रहे हैं, हम जो खा रहे हैं कुजीन, जो हम व्हाट यू नो जो आप कहेंगे जो प्रिवेल करता है कुजीन इस समय, तो एक बहुत लंबे शताब्दियों का मेल है,
0: बिल्कुल
1: यू नो उसका है। सो मसाले मैं अपने गेस्ट को भी यही कहती हूँ कि इंडियन कुजीन इज जस्ट नॉलेज अबाउट स्पाइसेज, इट्स अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेज, इट्स ओनली दैट। सो स्पाइसेज इज टॉप मोस्ट। सो सबसे ज्यादा आई विल कीप इट, मैं उनको यही कहूंगी कि मसाले ही सबसे ज्यादा यूनिक है, सरप्राइजिंग है।
0: बिल्कुल, जैसे हमारा स्पाइस रूट रहा है और हमेशा हमें भी इंट्रीक करता है, तो बाहर वालों के लिए तो ये है ही बहुत स्पेशल कि किस तरह से इतने अलग अलग कलर्स के मसाले, इतने अलग अलग तरह के मसाले किस तरह से मिलते हैं और इतना यम्मी, इतना जायकेदार खाना हम बनाते हैं और इतने तरह के पकवान हम बनाते हैं हमारे देश में, तो विच इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंट्रीगिंग। तो इसी एहसास के साथ मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कोई गीत की फरमाइश करें तो वो कौन सा होगा? तो हम आपके लिए आज वही गीत प्ले करेंगे।
1: देखिए मुझे एक बड़ा खूबसूरत गीत पसंद है, मुकेश जी का गाया हुआ, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे।
0: वाओ,
1: तो जीवन का ये बहुत ही मतलब बहुत ही अगेन बहुत बड़ा बहुत फिलोसफिकल गाना है
0: जी,
1: और लेकिन बड़ी सिंपल भाषा में समझाया गया है और बड़ा सब, अगर उसको आप समझना चालू करें तो आपकी लाइफ जीना आसान हो जाएगा।
0: बिल्कुल, चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, फ्रॉम द फिल्म रेशमी रुमाल।

0: क्या खूबसूरत गीत हैं, क्या खूबसूरत गीत हैं ये, सच में जीवन के छोटे छोटे फलसफे हैं, और क्या गायकी है मुकेश साहब की, बहुत ही उम्दा। वेलकम बैक पायल मैम।
1: धन्यवाद।
0: आगे चलते हैं, आपने पहला जयपुर का एक बहुत ही अनोखा अनूठा सफर शुरू किया जिसको हम मार्केट टू टेबल टूर बोलते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मार्केट टू टेबल टूर होता क्या है हमारे श्रोताओं के लिए, और मेरा दूसरा सवाल इसी के अंदर छुपा हुआ है तो वो ये है कि जयपुर की किसी सब्जी मंडी, किसी मसाले की दुकान या किसी पुरानी गली को अगर एक आवाज मिल जाए तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उन गलियों में इतना घूमते हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है वहां की ग्राउंड रियलिटीज और सब यू नो माहौल का, तो आपको क्या लगता है कि हमें राजस्थानी खाने के बारे में क्या कहानी सुनाएंगी वो गलियां?
1: तो तनुषा जी, अगर आपके सवाल का जवाब मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ कि हम इसको मार्केट टू टेबल टूर क्यों कहते हैं, जैसा कि लिटरल मीनिंग है मार्केट से टेबल तक का सफर, इसको ऐसे माना जाए, तो एक छोटी सी जर्नी हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको एक एक्सपीरियंस जर्नी की तरह देखिए। तो आप मार्केट से, वैसे मैंने जो यू नो मेरा जो अगेन आइडिया था इसके पीछे वो ये था कि मैं एक आम गृहिणी, भारत की एक आम मॉडर्न गृहिणी का जो दिन भर का सफर होता है वो क्या होता है, वो सामान खरीदती है, मंडी जाती है, सामान खरीदती है, आज की सब्जियां खरीदती है, कुछ मसाले वगैरह, कुछ तेल, घी, जो आपके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आटा वगैरह, सब चीज खरीद के थैले में भर के घर लाती है, और फिर उससे सोचना चालू करती है कि अब चलिए क्या बनाया जाए। तो ये छोटा सा सफर वही दिखाता है, हम वही करते हैं, और ये बिल्कुल मार्केट टू टेबल है, जैसे उस खाने का सफर जो मार्केट से चालू हुआ और आपकी टेबल पे आके खत्म हुआ। तो ये तो हमारे ने अपने मतलब हमारे नाम के पीछे की कहानी बताई है आपको
0: जी।
1: और जैसा कि आपने पूछा कि राजस्थान की गलियां या मार्केट्स या हमारी मंडियां हमें क्या क्या क्या कहानी कहती होंगी, तो वो आपको कहेंगी कि इतनी बंजर जमीन जो है राजस्थान की जमीन, बहुत ही मुश्किल ज्योग्राफी है, बहुत ही टफ ज्योग्राफी कहलाती है, बहुत ही मुश्किल जगह है, बहुत आसानी से यहाँ कुछ भी नहीं होता,
0: बिल्कुल।
1: सो हमने जो भी कुछ अनाज, जो भी कुछ वनस्पतियां, जो भी कुछ सब्जियां या उगती हैं, साल में अब तो बहुत फर्क आ गया टेक्नोलॉजी की वजह से, बट ओरिजिनली जो देखा जाए हमारा खाना जो है वो बहुत ही मुश्किल से पाई हुई छोटी छोटी कम चीजों का बनाया हुआ बड़ा ही स्वादिष्ट मेल है,
0: बिल्कुल।
1: तो लेस इंग्रेडिएंट्स एंड मोर फ्लेवर्स,
0: बिल्कुल।
1: तो सारी कहानी उसी की है कि कम चीजों में यहाँ की महिलाओं ने, जो कि एक्चुअल में जिनको जो सबसे बड़ी शेफ है दुनिया की, वो एक्चुअली इसीलिए यू नो लेडीज हैं, उन्होंने हमेशा से खाने की परंपरा को बहुत रिच बनाया है, उनके पास कुछ भी नहीं होता, आज छाछ है तो वो छाछ से आपको कड़ी बना देंगी, आज यू नो खाली प्याज बची है तो वो रोटी इतनी स्वादिष्ट बनाएंगी कि रोटी के साथ तो वो प्याज ही अच्छी लगेगी। सो हम राजस्थान का व्यक्ति जो है ना, वो बहुत खाना जो उसका है बहुत सादा खाना है,
0: बिल्कुल,
1: कम चीजों में वो संतुष्टि पाता है। सो हमारे जो भोजन है, हमारा जो राजस्थान का जो पारंपरिक भोजन है, वो उसकी कहानी असली यही है, कम चीजों में बेहद जिंदगी का स्वाद,
0: बिल्कुल, सादा जीवन, सरल जीवन, सुंदर जीवन,
1: एब्सोल्युटली।
0: आगे चलते हैं मैम, आपने बहुत तरह के पिकल्स और सॉसेस में एक्सपेरिमेंट किया है, आई थिंक 12 पिकल्स की एक रेंज है आपके पास, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप फिलोसफी भी पढ़ चुके हैं, तो एक बहुत फिलोसफिकल सा सवाल है कि अगर जिंदगी को एक आचार की बरनी माना जाए तो उसमें कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो जरूरी हैं ताकि वक्त के साथ उसका स्वाद और बेहतर होता जाए?
1: क्या बात?
0: इसी के साथ एक और सवाल मैंने इसमें जोड़ दिया है, एक कोई आपके फेवरेट अचार की अगर रेसिपी आप बता सके तो हमारे लिसनर्स नोट डाउन कर लें।
1: ओके जी, सो चलिए सर, पहले आपको देखा जाए अचार का मतलब, सो अचार और लाइफ को अगर एक सेम मायने में रखा जाए तो अचार की बरनी और लाइफ की बरनी, अचार में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन चीजें हैं जिसकी वजह से कोई भी चीज अचार बनती है, उसमें फर्स्ट है नमक, सेकंड है ऑयल तेल, और तीसरी चीज है मसाले. अगर आप इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें तो नमक क्या काम करता है. नमक बेसिकली उसको मतलब जो भी आपने इंग्रेडिएंट का अचार डाला है उसका उसको गलाता है, उसको इंग्लिश में उसको कहते हैं क्योर करना, उसको आगे वो उसका प्रोसेसिंग करता है उसके अंदर, राइट
0: जी.
1: और तेल जो होता है वो उसको बाहरी आबो हवा मॉइस्चर ऑक्सीजन हर चीज से दूर रखता है, तो वो बेसिकली प्रिजर्वेशन का काम करता है.
0: बिल्कुल.
1: और जो मसाले होते हैं वो उसका स्वाद बढ़ाते हैं.
0: क्या बात है.
1: तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं अचार के, राइट. अगर इसको हम लाइफ के रूप में देखें तो लाइफ का जो नमक है वो है परिपक्वता, मैच्योरिटी.
0: ब्यूटीफुल,
1: राइट. तेल जो प्रिजर्वेशन का काम करता है, मेरे हिसाब से जिंदगी में आपको प्रिजर्व आपकी लाइफ के सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस के जो इफेक्ट्स हैं उनसे प्रिजर्व आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी कर सकती है. तो आध्यात्मिकता आपको आपका तेल बन जाता है,
0: ल्यूब्रिकेंट है.
1: तो इट्स यू नो इन टर्म्स ऑफ अचार इट्स गोइंग टू प्रिजर्व यू, इट्स गोइंग टू सेव यू फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इफेक्ट्स.
0: एब्सोल्युटली.
1: आउटसाइड इफेक्ट्स. सो इट विल कीप यू जस्ट द वे यू आर, प्योर,
0: राइट.
1: देन आपकी लाइफ का जो यू नो जो स्वाद है वो बढ़ेगा आपके एक्सपीरियंसेस से. आपके हंसी खुशी के पल, सुख दुख के साथ, आपकी मेमोरीज, ये सब चीजें लाइफ का स्वाद बढ़ाती है. सो इन तीनों का सही मिश्रण, कुछ भी चीज ज्यादा नहीं, कुछ भी चीज कम नहीं. सो अचार की फिलॉसफी आपको लाइफ में ऐसे काम आएगी.
0: बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें समझाया. और बिल्कुल सच है कि सच में एक आचार की बरनी और जीवन जिंदगी में बहुत पैरेलल्स हैं. और ये तीन चीजें जो हैं वो सच में जीवन को जीवन बनाती हैं. खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया मैम. इसी के साथ अगर आप एक रेसिपी बता दें हमारे श्रोताओं के लिए तो.
1: अच्छा चलिए, बड़ा क्विक तो होता है, सबसे आसान होता है हरी मिर्च का अचार.
0: जी,
1: हरी मिर्च का बहुत ही आसान होता है, कोई भी बना सकता है. बट अगेन कॉम्पोनेंट वेरी सेम सिमिलर. आपको नमक चाहिए, हरी मिर्चियां बढ़िया सीजनल चाहिए. सो अगेन जो भी अचार आप डालेंगे उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सीजनल होना चाहिए. जो वेजिटेबल या फ्रूट आप जिसका भी अचार डाल रहे हैं या जैम बना रहे हैं उसको बहुत सीजनल होना चाहिए. वो उसी सीजन में उगा हुआ हो और बेस्ट क्वालिटी हो. तो बढ़िया हरी थोड़ी सी पकी हुई मिर्चियां, मतलब हम थोड़ा सा उसकी पतली होनी होती है. मैं ज्यादा डीप नहीं जा पाऊंगी आपके साथ इस समय, समय की उसके वजह से. तो हरी मिर्चियों को आप स्लिट कर सकते हैं बीच में से एक चीरा लगा करके. पुछी हुई हरी मिर्ची, हाथ से कपड़े से पुछी हुई हरी मिर्ची को आप फटाफट चीरा लगा के एक प्लेट में रख दीजिए. तो पाव भर हरी मिर्चियां आपने ली है, उसके अंदर आप 50-50 ग्राम तीन मेन चीजें मिला सकते हैं. थोड़े से भुने हुए मसाले हैं ये, सो राई जो खटाई पैदा करेगी, सौंफ जो स्वाद लाएगा, और थोड़ी सी एक चम्मच दाना मेथी.
0: जी,
1: ये आपके मसाले हैं. इसके अलावा नमक, लाल मिर्च और हल्दी, ये आपका कलर और उसकी शार्पनेस बनाएगी.
0: जी,
1: और इन सबको यू नो पिसे हुए मसालों को आप मिला करके थोड़ा सा तेल के साथ में एक गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे हम. एक चम्मच सिरका आप इसमें डाल सकते हैं ताकि वो थोड़ा प्रिजर्व हो जाए. एक चीज जो हमने पहले बात करी थी, नमक, वो इसमें डलेगा. सो नमक थोड़ा सा बाकी मसालों से ज्यादा पड़ता है, आपने आम खाने से ज्यादा पड़ेगा. हम ये ना सोचे कि नमक तेज हो जाएगा, क्योंकि नमक इसको पकाएगा इस अचार को.
0: जी,
1: सो आम आम यू नो आम एवरीडे रेसिपीज से आप नमक थोड़ा सा डबल लिखिए.
0: जी,
1: इन सब चीजों को आप मिला के पेस्ट सा बना के हरी मिर्ची के बीच में जो स्लिट बनाया है उसके अंदर आप भर दीजिए. और इनको एक जार के अंदर आप यू नो सूखा बिल्कुल कांच का जार, ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर आप लगा दीजिए. एक एक करके यू नो स्टैंडिंग खड़ी कर सकते हैं या दबा सकते हैं एक के ऊपर एक स्टैक करके. फिर तेल को हम सरसों के तेल को गर्म करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, और फिर इस जार के अंदर ऊपर तक लबालब भर देते हैं ताकि ऊपर कोई उसका कोई एयर पॉकेट ना रह जाए. और जार को आप कस के टाइटली बंद करके 12 घंटे के लिए तपती हुई धूप में, मतलब खुली हुई धूप होनी चाहिए, प्योर दिन होना चाहिए, अच्छा बढ़िया साफ, उसमें आप रखिए और अगले दिन आप उसको एंजॉय कीजिए.
0: अरे वाह, मेरे तो मुंह में स्वाद आ गया, मेरे दिमाग में पिक्चर आ गई, मेरी प्लेट एक पराठा और उसके ऊपर ये अचार,
1: उसके ऊपर एक बढ़िया सी लंबी सी मिर्ची।
0: बिल्कुल बिल्कुल स्वाद आ गया सच में। और श्रोताओं, जैसे आपने सुना, बहुत ही क्लैरिटी से हमें ये रेसिपी मिली है। आई होप आपने नोट डाउन की हो, तो आप इसे जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा। मैम, इसी मोड पे, इसी यू नो चटपटे अचार के स्वाद में हम एक और गीत का ब्रेक लेंगे। अगर एक और गीत की फरमाइश मैं आपसे करना चाहूँ तो वो कौन सा होगा?
1: एक मूवी है, बहुत ही खूबसूरत मूवी, जिसपे जो एक्चुअली बुक से बनी है, आर के नारायण जी की बुक है गाइड
0: जी,
1: और उसी के ऊपर देवानंद जी ने एक मूवी बनाई थी गाइड के नाम से
0: जी।
1: एस जी बर्मन का इसमें संगीत है और ये गाना उन्हीं का गाया हुआ है
0: जी।
1: वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ,
0: ब्यूटिफुल अनदर फिलोसफिकल सॉन्ग। यस
1: जी, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ।
0: खूबसूरत खूबसूरत। चलिए सुनते हैं एक और बहुत ही सुंदर गीत, जो पूरी जीवन का एक सार है, एक फलसफा है, और ये खैर फिल्म भी, जैसे कि मैम ने बताया, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, फ्रॉम द फिल्म गाइड।

ना आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक पायल मैम।
1: नमस्ते जी।
0: एक और बहुत ही खूबसूरत गीत सुना हमने, आगे चलते हैं। मैम, आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स यू नो लाइफ में पढ़ाव आपने पार किए हैं, अचीवमेंट्स आपने रहे हैं आपके, जैसे न्यूजीलैंड में आपने प्रोफेशनल कुकरी की पढ़ाई की, इटली में आपने हैंड्स ऑन कल्नरी ट्रेनिंग की, कैलिफोर्निया वॉलनट्स के प्रमोशनल इवेंट्स में काम किया, सेलिब्रिटी शेफ वरुण इमामदार के साथ आपने कोलैबोरेट किया और विवाना कल्चर होटल के लिए एक स्पेशल शेखावटी मेन्यू क्यूरेट किया। तो इतनी सारी जब उपलब्धियां रही हैं आपकी इंटरनेशनल एंड नेशनल, तो उन सबके बीच में आपके दिल के लिए, आपके दिल के सबसे करीब, जिसको आप सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यू नो एक प्राइज्ड आपका पोजेशन है, वो मेमोरी या वो अचीवमेंट कौन सा है आपके जीवन का?
1: तनुषा जी, मैं आपका क्वेश्चन बड़ा ही खूबसूरत है, बट मैं आपको मतलब मैं कहना चाहूंगी कि मेरे लिए कभी भी अचीवमेंट्स, उपलब्धियां बहुत ही मायने नहीं रखे। सब चीजें मतलब इन्होंने ऑब्वियसली ये आपके बहुत ये मतलब ये पड़ाव होते हैं जिंदगी के, और मैं इसको ऐसा मानती हूँ कि ये बहुत ही यू नो बहुत मैं एक वर्ड जैसे जो कहते हैं अपन मंडन है, बहुत ही यू नो कॉन्सेप्ट है ये अचीवमेंट्स। मेरे लिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है दुनिया में किसी को भी अपने अचीवमेंट्स पे खुशी होनी चाहिए, बट वो बहुत दिन तक उस चीज का कोई फायदा नहीं होता, उस चीज का कोई आपकी लाइफ में

0: का एक अनुभव होता है वो कुछ क्षणों का होता है और उसके बाद में वो गुल हो जाता है,
1: बिल्कुल बबल बबल फेम जैसा
0: बबल होता है। तो वो अचीवमेंट कोई मिलना किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस, कोई भी यू नो ऐसी कोई चीज उपलब्धि हासिल करना, वो एक क्षण होता है और वो क्षण गुजर जाता है।
1: करेक्ट।
0: लेकिन मैं उसको मानती हूँ कि जिंदगी के जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और ये कहीं आप पहुंचते हैं तो कभी आपको बहुत सुंदर वैली मिलती है, कभी कोई बहुत बड़ा कोई चीज कोई मोड़ पे आपको सुंदर झरना मिल गया। तो ये मेरे लिए लाइफ में वैसी चीज है जिनको मैंने देखा, उनसे उस समय अनुभव लिया, अपने आप को गेन किया और मैं आगे बढ़ गई।
1: सो
0: इस तरीके से मैं मतलब इसी तरीके से देखती हूँ। बट इसके यू नो उसके साथ साथ मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपके साथ में रह जाते हैं ना, वो आपको इनसे मिले हुए दोस्ती, इनसे मिला हुआ प्यार, इनसे मिली हुई इज्जत, तो आपकी उपलब्धियों से जो भी ये चीजें आपको अगर मिलती हैं तो वो आपके साथ जरूर एज अचीवमेंट चल सकती है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि इटली से मतलब मैंने जब मैंने वहां पे अपना एक्सपीरियंस लिया रह के वहां के लोगों के साथ में, तो उनसे मैंने खाने से रोमांस करना सीखा है। तो वो मेरी उससे मैंने खाने से प्यार करना सीखा। मेरा प्रोफेशनल डिप्लोमा, मेरी जो पढ़ाई हुई उसने मुझे किचन में डिसिप्लिन सिखाया। जो इवेंट्स और बड़े लोगों के साथ, बड़े शेफ्स के साथ में या बड़ी कंपनीज या रेस्टोरेंट्स के साथ काम किया, तो वो मेरे लिए उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस दिया है किचन के लिए। सो एज अ प्रोफेशन उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस दिया है कि किस तरीके से क्या चीजें हैंडल की जाती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर मैं सच में कहूँ तो मेरा अचीवमेंट, अगर मैं कभी अपनी जिंदगी में आखिरी मोमेंट्स में अपने आप को मानूंगी कि मैंने कुछ हासिल किया है, तो वो होगा दो मेरे मेरे बेटे, जो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उनको अच्छा इंसान और संवेदनशील व्यक्ति बना पाई और जो हमेशा खुश और एक संतुष्ट ह्यूमन बींग बने, तो वो अभी वो टीनेजर्स ही है, अभी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। सो अगर मैं कभी अपने आप को ये मान पाऊंगी कि मेरे अचीवमेंट्स अच्छे रहे, तो मैं सिर्फ वो दो इंसानों को बड़ा करके एक अच्छा इंसान बना पाई, उसमें एक अपना अचीवमेंट मानूंगी और वो मेरे सबसे प्राइज्ड पोजेशन होंगे।
1: ब्यूटिफुली आंसर्ड, बहुत ही स्पिरिचुअली आंसर्ड। सच है कि ये सब चीजें ट्रांजिएंट होती हैं, इनके पीछे जो रह जाते हैं वो सच में लोग हैं जो हमें मिलते हैं सफर में, जो हमें निखारते हैं अपने सफर के लिए। और ऑफ कोर्स योर ब्यूटिफुल सन्स, अगर उनके नाम मैं जान पाऊं तो हमारी SN फैमिली उनको हेलो कहना चाहेगी।
0: मेरे बड़े बेटे का नाम है नभास।
1: वाओ।
0: नभास का मतलब होता है नभ और ओस,
1: आकाश और ओस,
0: आकाश में ओस। तो आकाश की मिस्ट, अगर इंग्लिश में सिंपली बोलना चाहें तो मिस्ट उसका मतलब होता है।
1: ब्यूटिफुल।
0: एंड द सेकेंड वन ही इज नेम्ड एज कुशाग्र।
1: वाओ।
0: सो इट इज बिकॉज ऑफ इंटेलेक्ट, सो कुशाग्र इज बेसिकली इंटेलेक्ट। जी,
1: बहुत ही खूबसूरत नाम है। तो नाभास और कुशाग्र, आपको पूरी SN रेडियो फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपकी मदर आज यहाँ पे हैं, हम सब उन्हें सुन पा रहे हैं और वो इतनी ब्यूटीफुल एक पर्सनालिटी हैं। तो आपको बहुत कंग्रेचुलेशंस टू हैव अ मदर लाइक हर एंड इन योर लाइफ, एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए। गॉड ब्लेस यू।
0: थैंक यू।
1: आगे चलते हैं मैम। आजकल सोशल मीडिया पर फूड की बहुत ही खूबसूरत फोटोग्राफ्स वायरल होती हैं, बहुत सारी रेसिपीज का भरमार है, फ्लड है एक्चुअली बेसिकली। तो अब आपके हिसाब से अच्छे कंटेंट और अच्छे खाने में क्या फर्क है? आई एम श्योर बहुत फर्क है, तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं हमें। और क्या कभी हम प्रेजेंटेशन के चक्कर में, सिर्फ दिखावे के चक्कर में जो एक्चुअल इमोशंस हैं, जो एक्चुअल टेस्ट है, वो खो देते हैं खाने का?
0: बिल्कुल, मैं आपका सवाल पीछे से चालू करूंगी।
1: जी,
0: कि आपने जो बात बोली कि हम प्रेजेंटेशन के चक्कर में खाने का स्वाद खो चुके हैं, तो अगर आप आज किसी सोशल इवेंट में जाते हैं तो एक ही चीज मायने रखती है, उसका प्रेजेंटेशन, उसका वो मुंह में कैसा स्वाद कर रहा है, ये बहुत बाद में आता है। द फर्स्ट थिंग इज हाउ इट इज प्रेजेंटेड। ये तो बड़ी बात हो गई, मतलब प्रोफेशनल जगह है, आप उसकी बात पार्टी है, कोई बात कर रहे हैं उससे भी। बट अगर आप किसी के घर भी जाते हैं, द फर्स्ट थिंग उनको जिस चीज के डर रहता है

0: के चीजें दिखने में कैसे प्रेजेंटेड है टेबल के ऊपर, जो पुराने जमाने में नहीं हुआ करता। तो पुराना जमाना नहीं, बहुत पुरानी बात नहीं कर रही है, 10-12-15 साल की। तो अपने अपने दोस्तों के घर या अपने रिश्तेदारों के घर अगर आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपकी यू नो आपसे एक्सपीरियंस करती थी वो थी खुशबू। आप घर में घुसे तो एंटर करती सबसे पहले खुशबू आती थी, क्योंकि वो खाना वही बना है और कुछ घंटों से वहां पे प्रिपरेशन चल रही है, पिसाई हो रही है, ढुलाई हो रही है, तलाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वो घर की आबो हवा में फैल जाता है और बाहर तक पड़ोसियों को पता लग जाता है कि साहब आज तो कोई
1: ये बना है, आज ये बना है,
0: खास बात है, कोई खास बात है,
1: आ रहा है,
0: या कोई मेहमान आ रहा है, नहीं तो कोई ना कोई खुशखबरी है साहब। इसलिए जो मैं बड़ी कहानियां हमेशा ये सुनाया करती हूँ अपने गेस्ट को कि भाई अगर घर में पूरी बन रही है और हलवे बन रहे हैं तो इसका मतलब घर में खुशखबरी है,
1: खुशखबरी है।
0: तो ये हमारे यहाँ खाना एसोसिएट होता था फ्लेवर से, उसकी खुशबू से, उसकी महक से, उसकी इमोशन से, राइट।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब प्रेजेंटेशन जहाँ तक आती है वो प्रोफेशनली जरूरी होता है, होटल में जरूरी है, क्योंकि मैं उस शेफ को नहीं जानती हूँ जिसने वो खाना बनाया है, लेकिन मैं उस चाची को जानती हूँ जिसने मेरे लिए आज लंच प्रिपेयर किया है, यू नो आप समझ रहे हैं उस रिलेशनशिप को।
1: बिल्कुल।
0: तो जो शेफ है वो उन्होंने बहुत खाना तो बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही ध्यान से बनाया, लेकिन अब वो उस तक पहुंचाए कैसे, तो उसको प्रेजेंट ऐसे करना पड़ता है कि वो आने वाला जो गेस्ट है उनका वो फटाफट उस चीज के लिए अट्रैक्ट हो सके।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि उसने वो प्रोसेस नहीं देखा जब वो बन रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसको कनेक्ट कैसे करेगा, वो दिखा के कनेक्ट करते हैं। सो प्रेजेंटेशन वहां मायने रखती है। लेकिन हम आजकल क्या कर दिए हैं, बिकॉज ऑफ कंटेंट एंड रील्स एंड एवरीथिंग, और क्योंकि ये मोनेटाइज हो चुका है तो लोग भेड़ चाल में अगेन रैट रेस में फंस गए हैं कि हम कौन ब्यूटीफुल प्लेट ऑफ फूड बनाएगा। ना तो किसी को ये पता है कि वो प्लेट ऑफ फूड उसकी वेस्टेज क्या है, उसका स्वाद क्या है, क्या चीज है। सो कलर्स आर बिकमिंग इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द आईज।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मेरे लिए कभी भी ये मायने नहीं रखते, मेरे लिए ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। तो मैं ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी अगर हम बहुत ज्यादा डीप जाएंगे तो, बट मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मेरे लिए तो यही आज भी किसी के घर से किचन से आती हुई खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। मैं उसके किचन के बाहर से मुझे हींग की भी खुशबू आ रही है ना, तो मेरे लिए वो उनके उनके घर के माहौल को समझने का एक जरिया होती है कि अरे वाह आज बढ़िया सा तड़का लगाया हुआ है हींग का दाल में, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है।
1: सो
0: आई लीव दिस क्वेश्चन टू दिस पॉइंट ओनली। इट्स एक्सपीरियंस, बेसिकली इट्स एक्सपीरियंस।
1: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल की कैसे ये एक सेंसरी एक्सपीरियंस ज्यादा है, एक सेंसरी ट्रीट है विजुअल ट्रीट से ज्यादा।
0: जी।
1: तो ये बात अगर हम समझ जाएं तो शायद हमारा खाना उतना स्वादिष्ट हो जैसा हुआ करता था, सिर्फ एक विजुअल ट्रीट ना रह के एक सच में सेंसरी ट्रीट हो जो आपके एक स्वाद को, आपके यू नो महक को एक एक टिंगल करे और आपको एक्साइट करे कि आज क्या बना है इस गली में, इस घर में। तो जैसे कहते हैं कि हर घर कुछ कहता है, तो उसी तरह उस घर का खाना भी कुछ कहता है और उसकी खुशबू भी कुछ कहती है। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया। मैम इसी मोड पे हम एक और गीत का ब्रेक लेंगे, आपकी ही फरमाइश पे एक और गाना।
0: अच्छा, अब मैं आपको सुनाना चाहूंगी एक बड़ा ही अच्छा मुकेश जी का गाया हुआ गाना है, राज कपूर जी पे फिल्माया गया है। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। बड़ा ही खूबसूरत एंड अगेन वेरी फिलोसॉफिकल, बट बहुत बहुत प्यारा गाना है,
1: बहुत प्यारा गाना है सच में। और आप मुकेश के फैन हैं, तीनों ही गाने हमने मुकेश के सुने और बहुत खूबसूरत गाने आपने चुने हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए सुनते हैं एक दिन मिट जाएगा माटी के बोल फ्रॉम द फिल्म धर्म करम।
0: जरूर।
2: एक दिन

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक पायल मैम।
1: थैंक यू
0: मैम। आगे चलें तो आपने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में कुकिंग सिखाई है, एक मेंटोर के रूप में, एक ट्रेनर के रूप में
1: जी।
0: तो आपको एक ऐसा लाइफ लेसन अगर चुनना हो जो रसोई ने आपको सिखाया है और जो आप सोचते हैं कि हर इंसान में पास ऑन होना चाहिए, वो एक ट्रेट, वो एक क्वालिटी, तो वो क्या होगा?
1: क्वेश्चन बड़ा जोरदार है।
0: सब

0: अपनी फिलोसफी ऐड करने की कोशिश की है हमने.
1: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मैं मेरा पर्सपेक्टिव फिलोसफी बन गया है.
0: जी जी
1: मैं कहूंगी कि देखिए खाना जैसे पहले वाले जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो खाने का जो भोजन की इम्पोर्टेंस है वो उसके इमोशंस उसके सेलिब्रेशन उसके उन चीजों से आती है. तरीके से उसी उसी उसी लय में मैं आगे बात करना चाहूंगी कि इट्स यू नो इट्स नॉट अबाउट द राइट इंग्रेडिएंट्स. इट्स नॉट अबाउट सो किचन में मैं अपने क्लाइंट्स को भी अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाना चाहती हूँ कि हर वक्त या मैं जो सीखी हूँ किचन से, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि मैंने क्या सीखा अपनी कुकिंग से, कि हर समय परफेक्ट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, परफेक्ट लिस्ट ऑफ टाइम, परफेक्ट रेसिपी, सिर्फ यही मायने नहीं रखती. किचन कुकिंग आपको जो सिखाती है वो खराब चीज को अच्छा बनाना सिखाती है. सो कई क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे अपन परफेक्ट पिक्चर की बात कर रहे थे तो हमेशा जो पिक्चर में होता है वो परफेक्ट नहीं हो सकता.
0: करेक्ट.
1: खाने में खाना आप रोज सेम रेसिपी से बना लीजिए तो भी वो ऐसा हो सकता है कि बेस्ट ऑफ द यू नो इंग्रेडिएंट लेने के बावजूद भी, फैसिलिटी होने के बावजूद भी, एकदम मॉडर्न किचन होने के बावजूद भी आप घटिया खाना बनाए एकदम खाने लायक नहीं.
0: बिल्कुल.
1: सो इट इज पॉसिबल राइट.
0: बिल्कुल.
1: सो इट्स अबाउट द प्रोसेस, इट्स अबाउट द प्रोसेस हाउ एवरीथिंग कम्स टूगेदर. सब चीजें कैसे आप उनको एक सार करके एक चीज में एक भोजन के रूप में उसको पेश कर
0: सकते हैं,
1: सर्व कर सकते हैं. तो आप मतलब खाना बनाना इज नॉट रेसिपीज. इसलिए महिलाओं का काम जो है वो क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि वो बिना वो सबके लिए सोचते हुए अपने फ्रिज को देखते हुए अपनी ग्रोसरीज की लिस्ट को देखते हुए आज की जो भी है मेरे पास में उसको देखते हुए रोज सबकी पसंद का और उनके न्यूट्रिशन का खाना बना पाती है.
0: बिल्कुल.
1: तो ये उनकी उपलब्धि है सबसे बड़ी, ये उनका एप्टीट्यूड है बहुत ही बड़ा. नॉट उपलब्धि, देयर एप्टीट्यूड, देयर क्वालिटी.
0: सच है.
1: तो मुझे किचन ने यही सिखाया है कि कैसे जब चीजें बिगड़ रही होती हैं, ऐसा लाइफ को भी आप मान सकते हैं, तो लाइफ में कई रोज आपके इंग्रेडिएंट्स अच्छे चल रहे होते हैं फिर बुरे हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ कुछ ना कुछ होती रहती है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्योंकि दिन जिंदगी एक दिन सुबह चालू होती है और रात को खत्म हो जाती है, एंड ऑफ द डे आपका जो खाना निकल के आया, जो आपका वापस जो आपका बाय प्रोडक्ट आया है दिन भर का, कितना स्वाद है. तो स्वाद बनाना इज नॉट अबाउट इंग्रेडिएंट्स, इट्स अबाउट हाउ यू मेक देम, हाउ यू प्रोसेस देम. सो आई विल सम अप टू दैट, आई थिंक सो आई विल, मैं उसी पे रहना चाहूंगी कि इट्स अबाउट हाउ दिस इज व्हाट किचन हैज टॉट मी.
0: Beautiful.
1: Taking every worst thing into a good thing.
0: बिल्कुल बिल्कुल. अपने imperfection से perfection तक reach करने की journey. और even if everything is not perfect, आपके पास imperfect ingredients हैं तो उससे भी जो क्या आप best बना सकते हैं वही आपकी कला है, वही आपकी cooking है और वही cooking की कला है actually. और आपने बहुत ही important एक point you know यहाँ पे हमें बताया कि कैसे गृहिणियां जो हैं हमारे घरों की, जो वुमेन फोक हैं, जो किचन में रोज जाती हैं और रोज तीन टाइम का खाना बनाती हैं, और सच में ये एप्टीट्यूड ही है कि वो हर तीन बार उतना ही न्यूट्रिशियस और उतना ही अच्छा खाना बना के सर्व करती हैं जो घर में सब खा पाते हैं. आई नो एक्सेप्शंस होते हैं कई बार बच्चों को नहीं पसंद आता, बट अल्टीमेटली तीन बार का खाना इंटू 365 डेज और उसी एप्टीट्यूड से चीजों को बनाना इज कमेंडेबल. आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर आवर वुमेन फोक एंड वी शुड गिव देम दैट क्रेडिट कि उनके पास वो एप्टीट्यूड है और वो क्वालिटी है जो बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली हैव एंड इट जस्ट कम्स नेचुरली टू एवरी वुमेन इन इंडियन इंडियन हाउस होल्ड. तो विच इज अमेजिंग एंड कमेंडेबल. आपने ये पॉइंट आउट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. और आपके सारे ही जवाब आपके सारे अनुभवों का एक समावेश है जो बहुत खूबसूरती से हमें बताते हैं कि किस तरह का आपका एक सफर रहा है, ग्राउंडेड सफर रहा है. सिर्फ ऐसे नहीं कि आप यू नो इन इलीट जगहों पे जाके काम कर रहे हैं और इन लोगों से मिल रहे हैं तो आपकी जर्नी एक डेवलप हो रही है, बट बहुत ग्राउंडेड लेवल से आपने अपना जीवन को जिया है और कनेक्टेड रहे हैं कहीं ना कहीं, वो बहुत खूबसूरती से आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होता है मैम. हम अब आगे चलते हैं और आज का हमारा जो आखिरी सवाल है उस तक पहुंचते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आई थिंक ये भी, कि अगर आपको अपनी जिंदगी को एक सिग्नेचर डिश के रूप में सर्व करना हो तो उस डिश का नाम क्या होगा और उसकी इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन सी यादें, कौन कौन से लोग और कौन कौन से सपने शामिल होंगे?
1: ओहो, बड़ा ही घुमा के आपने क्वेश्चन बनाया है, बड़ा ही सवाल आपका और बड़ा मजेदार भी है और सोचने पे मजबूर कर रहा है मुझे बहुत ज्यादा।
0: जी जी,
1: तो क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बड़ी सिंपल फिलोसफी और सिंपल फूड को पसंद करने वाली व्यक्ति हूँ। मैं दाल रोटी खाने
0: वाली, चावल, चलिए मान लीजिए दाल चावल। जी जी जी जी,
1: लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा
0: जायकेदार बनाते हैं।
1: जायकेदार बनाते हैं फिलोसफी का तड़का लगा के। तो बात ऐसा है कि मेरे हिसाब से जिंदगी का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो होता है वो प्यार, प्रेम, इश्क, जुनून, जज्बा, ठीक है। ये मेरा जहन से ये निकली हुई बात है। और अगर आप कहें कि वो कौन से कौन से लोग या कौन से रिश्ते या कैसी चीजें आपको कौन सी चीजें आपको वो बनाती हैं इनग्रीडियंट, मतलब ये बेस्ट डिश बनाएंगी, तो आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त और आपका पार्टनर, सो वो तीन जने जो होते हैं वो लाइफ का सबसे बेस्ट और वर्स्ट इंग्रेडिएंट, सो दे कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ यू और द वर्स्ट आउट ऑफ यू। सो दे मतलब उनकी वजह से लाइफ में जो सिग्नेचर डिश आपके लाइफ की बनेगी वो किन तीन हिस्सों की वजह से बनती है।
0: बिल्कुल,
1: सो दैट्स हाउ फील। सो आई थिंक सो, चलिए दाल रोटी तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या नाम दिया जाए, बढ़िया सा कुछ नाम दिया जाए। ऐसा करते हैं, बड़ा रोमांटिक सा नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं धूप छाओ।
0: वाओ, ब्यूटीफुल।
1: सो इसको अगर हम विजुअलाइज करें एज एक्चुअल डिश आल्सो, सो इट इज पॉसिबल टू मेक आई थिंक। सो इफ वी स्टार्ट विजुअलाइजिंग एज अ डिश, हम बना पाएंगे सुंदर सा एक अच्छा सा खाना, एक अच्छी सी डिश। तो मैं नाम दूंगी अपनी जिंदगी की सिग्नेचर डिश का, धूप छाओ।
0: ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत मैम, और बहुत मजा आया आज आपसे बात करके। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि ये इंटरव्यू काश खत्म नहीं हो, हम बातें करते जाएं और बहुत सारी और फिलोसफी और खाने की बातें करते जाएं, लेकिन समय बलवान है, हमें रैप अप करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आज ऐसे रेडियो के साथ जुड़ने के लिए पायल बियानी मैम।
1: सो नाइस ऑफ यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे रेडियो का बहुत ही धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे ये मौका दिया आपके साथ बातचीत का और आपके व्यूअर्स और लिसनर्स के साथ में जुड़ने का। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम। तो दोस्तों, पायल जी से आज बातचीत में हमने सिर्फ रेसिपीज और कुकिंग की बात नहीं करी, बल्कि उन कहानियों, उन रिश्तों और उन जज्बातों को भी महसूस किया जो हर किचन और हर प्लेट के पीछे छुपे होते हैं। आपने हमें याद दिलाया कि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि यादें बनाता है, लोगों को जोड़ता है और संस्कृतियों के बीच एक सुंदर सा पुल का काम करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपने अनुभव और अपनी जिंदगी के इतने खूबसूरत रंगों को हमारे साथ साझा किया। दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड। मिलेंगे फिर एक नए मेहमान और एक नई कहानी के साथ, क्योंकि हर जिंदगी में एक गीत तो जरूर छुपा होता है, बस उसे महसूस करने की देर है। नमस्कार।

हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दोस्तों, कई बार मैंने कई लोगों को वॉकिंग करने के दौरान यानी कि चलने के दौरान पीछे की तरफ चलते हुए देखा तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों करते हैं ये। थोड़ा बहुत तो अंदाजा था कि ये भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन आइए जानते हैं इसके कुछ और सच। सो बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की ओर चलने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इससे विभिन्न मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शारीरिक और मानसिक लाभ भी मिलते हैं। इससे शरीर के संतुलन और समन्वय में सुधार होता है। बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की तरफ चलना बुजुर्गों, वयस्कों या चोट से उबरने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है, क्योंकि ये गिरने के जोखिम को कम करने में मदद करता है। पीछे की ओर चलने से घुटनों और पीठ के नीचे हिस्से पर तनाव कम हो जाता है। क्योंकि चलने के लिए छोटे कदमों की लंबाई की आवश्यकता होती है, इसलिए आगे चलने या दौड़ने की तुलना में जोड़ों पर कम प्रभाव पड़ता है। बैकवर्ड वॉकिंग मानसिक स्वास्थ्य जैसे दिमाग तेज होना, एकाग्रता और यहां तक कि मूड सुधार में भी योगदान करता है। पीछे की ओर चलने के अभ्यास को फिटनेस दिनचर्या में शामिल करना बड़ा आसान है और उसे घर के अंदर या बाहर भी किया जा सकता है। ये गति में बदलाव और वर्कआउट की विविधता में शामिल है, जिससे रोजाना व्यायाम करना दिलचस्प और प्रेरक भी बन सकता है। इस संबंध में फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह आप ले सकते हैं। क्या कहते हैं विशेषज्ञ इस बारे में? विशेषज्ञ कहते हैं कि मांसपेशियों की मजबूती से लेकर जोड़ों के तनाव को कम करने तक बैकवर्ड वॉकिंग बड़ी फायदेमंद है। क्योंकि पीछे चलने के लिए छोटे कदमों की जरूरत होती है, इसलिए जोड़ों पर दबाव भी कम पड़ता है। मजेदार बात हुई।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

कैसे हैं दोस्तों, आइए एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति किसी कंसल्टेंट के पास गया, यानी कि सलाहकार, और उससे पूछने लगा कि भैया ये बताइए, कंसल्टेंसी यानी कि सलाहकारिता क्या होती है। अब देखिए, जो कंसल्टेंट महोदय थे उन्होंने कहा, मैं बताता हूं, एक एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लो कि दो लोग मेरे पास आते हैं, एक तो बहुत ही साफ सुथरा और क्लीन है और दूसरा बहुत ही गंदा है, धूल से भरा हुआ है, बाल एकदम डर्टी हैं, धूल में सना हुआ है। अब मैंने दोनों को कहा कि जाइए और नहा लीजिए। अब बताओ बेटा कि कौन नहाएगा? तो पहले स्टूडेंट ने पहले ही कहा कि जो डर्टी है, जो बहुत ही गंदा है, जिस पे धूल लगी हुई है, जो कीचड़ से सना हुआ है, वही तो नहाएगा। तब सलाहकार ने यानी कि कंसल्टेंट ने कहा, नहीं सुनो, क्लीन पर्सन जो नहा धो के आया है, साफ सुथरा है, वो नहाएगा, क्योंकि उसको आदत है नहाने की, साफ सुथरा रहने की। जबकि जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गंदा है, उसको तो नहाने धोने की इंपॉर्टेंस यानी कि उसकी महत्ता के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो अब बताओ कौन नहाएगा? तब वापस से उस स्टूडेंट ने, उस व्यक्ति ने कहा, जो साफ सुथरा व्यक्ति है ना सर, वही नहाएगा। तब कंसल्टेंट ने वापस कहा, नहीं, जो गंदा बहुत ही मैला कुचैला सा व्यक्ति है, वो नहाएगा, क्योंकि उसको तो जरूरत है ना साफ सफाई करने की। तो चलो अब बताओ कौन नहाएगा? उस व्यक्ति ने कहा, उस स्टूडेंट ने कहा कि सर, जो मैले कुचैले कपड़ों में है, बहुत ज्यादा गंदा है, वही नहाएगा। कंसल्टेंट ने कहा, अरे नहीं बेटे, दोनों नहाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को तो नहाने की और साफ सुथरा रहने की आदत है और दूसरे व्यक्ति को इस वक्त नहा धोकर साफ सुथरा हो जाने की जरूरत है। तो चलो मुझे बताओ कौन नहाएगा? अब की बार व्यक्ति बहुत परेशान होकर बोला, सर दोनों ही नहाएंगे। तब सलाहकार ने, कंसल्टेंट ने दोबारा कहा, गलत है बेटे, कोई नहीं नहाएगा, क्योंकि जो गंदा है उसे तो नहाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको तो जरूरत ही नहीं है साफ सुथरा होने की, और जो साफ सुथरा व्यक्ति है वो तो पहले से ही नहा धो के आया है, साफ सुथरा होके आया है। तो अब बताइए कौन नहाएगा? अब की बार तो वो स्टूडेंट, वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया और उसने बोला, सर आप हर बार अपना जवाब बदल देते हैं, हर बार आपका जवाब सही लगता है, अब हमें पता ही नहीं कि सही जवाब है कि आप ही बताएं। तब उस सलाहकार ने, उस कंसल्टेंट ने कहा, बेटा इसी को कंसल्टेंसी कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि रियलिटी यानी कि सच्चाई क्या है, जरूरी ये है कि मैं एक ही सच्चाई को कितनी अलग अलग तरह से सामने रखकर तुम्हें कंफ्यूज कर सकता हूं। इसी को कहते हैं कंसल्टेंसी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

लीजिए दोस्तों, मिलिए डॉक्टर प्रदीप सेठी जी से। आजादी के 7.5 दशक में हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है, इसे देखना है तो गांव में जाइए और किसी स्मृति समृद्ध बुजुर्ग के पास बैठिए, किसी ऐसे बुजुर्ग के पास बैठिए जिनकी यादाश्त अच्छी हो, मजबूत हो। तब आपको सन 1947 से लेकर 2024 तक का देश साफ साफ दिखाई पड़ेगा। हिंदुस्तान महानगरों और शहरों में नहीं है, अपने 6.5 लाख से ज्यादा गांवों में है, मगर इन गांवों की एक टीस बहुत पुरानी है। महानगर और बड़े शहरों ने उनकी अनगिनत संतानों को अपने मोहपाश में ऐसा फंसाया है कि वे अपनी माटी का कर्ज उतारना भी भूल गए हैं। लेकिन डॉक्टर प्रदीप सेठी ने जिस तरह से अपनी माटी का कर्ज अदा किया, उनका गांव पुष्ट दर पुष्ट इसके लिए उन पर नाज करेगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गांव है बेरुनपदी। करीब 44 साल पहले इसी गांव के एक बेहद गरीब परिवार में प्रदीप पैदा हुए। तब ओडिशा देश के अति पिछड़े राज्यों में शामिल था। जाहिर है बेरुनपदी भी सड़क, बिजली, अस्पताल, साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से तो बहुत दूर था। प्रदीप के परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो उन्हें फाका कशी से ही गुजरना पड़ता था। एक जोड़े कपड़े में कई कई हफ्ते निकल जाते थे। मगर ये नियति अकेले उन्हीं के परिवार की तो नहीं थी ना। ऐसे में सभी अभावग्रस्त परिवार एक दूसरे को सब्र और उम्मीद की डोर थमाते रहते थे। राहत की बात बस इतनी सी थी कि 1955 से गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल की सुविधा थी और प्रदीप के पिता घनघोर गरीबी के बावजूद बेटे को कभी पढ़ने लिखने से नहीं रोकते थे। हालांकि उन्हें कई बार स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती क्योंकि मजदूर पिता कभी गाय चराने तो कभी खेतों में घास छीलने की जिम्मेदारी उन्हें दे देते थे। इन सब मुसीबतों के बावजूद प्रदीप की पढ़ाई में रुचि गहरी होती ही गई। करीब 12 साल की उम्र में वो जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने गए वहां अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। इससे पहले तो वो सिर्फ उड़िया सुनते थे और बोलते थे। पहली बार यहां उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी सीखी। शुरू शुरू में वो कुछ हिचके, थोड़े झेपे, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की चाह ने उनका रास्ता आसान कर दिया। बहुत जल्द ही शिक्षकों की निगाह में प्रदीप की मेधा आ गई, उन्हें भरपूर प्रोत्साहन दिया। फिर क्या था, छात्र की लगन और शिक्षकों के सहयोग ने एक गरीब बच्चे के दिन बदल दिए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदीप बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। 10वीं के बाद से ही उनके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा आ गई थी, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके परिवार

के लिए आसान नहीं था। प्रदीप ने अपनी पढ़ाई लिखाई से पिता को गौरव के कई पल दिए, इसलिए जो भी थोड़ी बहुत जमीन उनके पास थी बेटे की मेडिकल फीस जुटाने के लिए दांव पर लगा दी। परिवार के इस त्याग से प्रदीप बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित थे। वो परिवार की तकलीफ और संघर्ष में बराबर के शरीक रहे। उनके पास जो भी खाली वक्त होता वो उसमें किसी ना किसी तरह की दैनिक मजदूरी कर लेते। एक ऐसा मोड़ भी आया जब सारी कोशिशों के बावजूद चीजें मुश्किल होने लगी और बात उनकी झोपड़ी से निकलकर गांव के चबूतरे पर आ गई। तब गांव के कुछ समर्थ लोगों ने बड़प्पन दिखाया और वजीफे के तौर पर उन्होंने प्रदीप की लगातार मदद की। प्रदीप को हर महीने एक तय राशि मिलने लगी जिनसे वो अपनी किताबें खरीदते और हॉस्टल मेस की फीस चुकाते। अब लक्ष्य सिर्फ MBBS की डिग्री थी। वो जी जान से जुट गए। साल 2004 में MBBS की डिग्री लेने के बाद उन्होंने मास्टर्स कोर्स के लिए देश के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के गुर सीखे। जाहिर है ये

सा चिकित्सा क्षेत्र है जो पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती को लेकर सजग दौलतमंदों से ज्यादा जुड़ा हुआ है। लिहाजा प्रदीप के पास प्रस्तावों और मरीजों की कोई कमी नहीं रही। पैसे तो खैर आने ही थे, उनके पास दुबई में क्लिनिक खोलने के लिए रोचक प्रस्ताव आया। लेकिन उसी समय उन्हें आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद की वो लाइन याद आ गई, हर मनुष्य के जीवन का एक बड़ा मकसद होता है। नौजवान प्रदीप के जीवन का मकसद सिर्फ दौलत कमाना तो नहीं था, वो अपनी जड़ों की ओर मुड़े। कैंसर से पीड़ित पिता की दिली तमन्ना थी कि गांव में उनका एक घर होना था। प्रदीप ने घर की तामीर करवाई, मगर उनके बनने के चंद महीनों बाद ही वो इस दुनिया से चले गए।

उनके जाने के बाद प्रदीप ने साल 2016 में उस घर को एक कोचिंग सेंटर में बदल दिया, ताकि गांव और आसपास के बच्चे वहां आकर गणित और अंग्रेजी सीख सके। इसके बाद बकायदा प्रशिक्षित शिक्षक रख दिए गए वहां। सैकड़ों बच्चों की जिंदगी में इस एक कोचिंग सेंटर से आई तब्दीली देखकर डॉक्टर प्रदीप को गहरा सुकून मिला। अब उन्होंने गांव में एक ऐसा स्कूल खोलने का फैसला किया जो गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दिलवा सके। उन्होंने गांव की उसी जमीन पर स्कूल बनाने की शुरुआत की जहां कभी दैनिक मजदूरी किया करते थे वो। गांव वालों ने अपने सपूत का बढ़ चढ़कर साथ दिया। कई लोगों ने स्कूल के लिए अपनी अपनी जमीनें दान में दे दी। करीब 10 एकड़ में पिछले साल ही उत्कल गौरव इंटरनेशनल स्कूल वजूद में आ गया। फिलहाल इसमें 450 बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर इसकी क्षमता 2500 बच्चों को 12वीं तक शिक्षा देने की है। डॉक्टर प्रदीप सेठी आगे अन्य इलाकों में भी स्कूल खोलेंगे, मगर बेरुनपदी का कर्ज तो उन्होंने अदा कर दिया।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा सा संग समाए, समय सबक समझाए, खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा है। फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए, फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: माना कि उन तक पहुंचती नहीं तपिश हमारी, माना कि उन तक पहुंचती नहीं तपिश हमारी, इसका मतलब ये तो नहीं कि सुलगते नहीं हैं हम। मजा चख लेने दो उनको भी गैरों की महफिल का, मजा चख लेने दो उनको भी गैरों की महफिल का, इतनी चाहत के बाद जो मेरा ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। फिर ये भी के शौक ही नहीं रहा अब खुद को साबित करने का, शौक ही नहीं रहा अब खुद को साबित करने का, जिसने जैसा समझ लिया बस वैसा ही हूँ मैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियो और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हम सब का कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्तहान जरूर लेती है। जिंदगी हर शख्स की हैसियत, उसकी ख्वाहिशें, उसकी हसरतें, उसके शौक, उसके कारनामे बुरे या अच्छे देखकर ये तय करती है कि उस शख्स का किस तरीके का और कौन सा इम्तहान लिया जाए। शायद इसीलिए इस दुनिया में किसी के सब्र की आजमाइश मुश्किलों के दौर में होती है, तो किसी ज़र्फ यानी सेल्फ इस्टीम को बड़ी बड़ी कामयाबियों के बीच में परखा जाता है। मगर सच तो ये है कि इन इम्तहानों के साए में जब भी हमारा दिल उदास या तन्हा होता है, तब अदब की दुनिया और सुरों की महफिल ही हमारे टूटे हुए हौसले को एक नया मोड़ देती है। जब जहन थक जाता है तो खालिस नज़मों का एक मिसरा भी हमारी बिखरी हुई सोच को मखमली तसल्ली अता करता है। आज की ये नफीस शाम भी कुछ इसी कश्मकश को समेटे हुए आगे बढ़ेगी। आज के हमारे प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक की महफिल में सुरों के इस सफर को हम कुछ ऐसे अनोखे फनकारों की मेराज से सजाने जा रहे हैं जिनके गाए कलाम आपकी रूह को इस जिंदगी के अलग अलग फलसफों से रूबरू कराएंगे। तो अपने जहन की मसरूफियात को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दीजिए और इन ताज़ा तरीन एहसासों के साथ इस हसीन शाम को अपने नाम कर लीजिए। फिर चलते हैं सुरों के इस नए मरहले की तरफ और आगाज करते हैं आज की हमारी पहली नायाब पेशकश का। दोस्तों, आप में से कई जन आर्ट ऑफ लिविंग और गुरुदेव रविशंकर से जुड़े होंगे। जिंदगी की जिन मुश्किल इम्तहानों का जिक्र मैंने आपसे किया, उन इम्तहानों की धूप में अपने मुर्शद यानी गुरु का साया ही वो मंजिल है जहाँ पहुँच कर हर कश्मकश खत्म हो जाती दिखती है, दिखती क्या हो ही जाती है। जब हम रूहानी रहनुमाई की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बेहद मुकद्दस पाक नाम उभरता है, आर्ट ऑफ लिविंग के बानी परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को अमन मोहब्बत और जीने का सही सलीका सिखाने के सुपुर्द कर दी है। उनकी मौजूदगी ही इंसानी वजूद को एक नई राह दिखाती है। और जब एक सच्चे मुरीद की अकीदत यानी आस्था अपने मुर्शिद यानी गुरु के कदमों में झुकती है तो अल्फाज इबादत बन जाते हैं। श्री श्री रविशंकर जी के बेहद अजीज और बाकमाल शागिर्द स्वामी नित्यानंद प्रज्ञा जी ने गुरु भक्ति के इसी जज्बात को इस नगमे के जरिए पेश किया है। स्वामी जी की आवाज़ में जो एक रूहानी कशिश है वो इस बात की गवाही है कि ये नगमा उन्होंने गाकर सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया बल्कि अपने मुर्शिद की बारगाह में मुकम्मल तौर पर वक्फ कर दिया यानी समर्पित कर दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए इस फिल्मी नगमे को जब स्वामी नित्यानंद प्रज्ञा ने गुरु वंदना का रूप दिया तो इसके मायने ही बदल गए। जरा इस बंदगी के जज्बात को महसूस कीजिए। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। दोस्तों, यहाँ मोहब्बत का मतलब दुनियावी चाहत नहीं है बल्कि रूह का वो रूहानी मिलन है जहाँ एक मुरीद अपने मुर्शिद की पनाह में हमेशा के लिए खो जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं स्वामी नित्यानंद प्रज्ञा जी की इस बेहद भावुक और सुरीली पेशकश। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो। आपकी नज़र।

मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिजा से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। और फिर ऐ फातिया कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, मैं वो बेकसी का मजार हूँ। दोस्तों, जिंदगी के इम्तहानों की जिस कश्मकश का जिक्र आज हमारी इस महफिल की बुनियाद है, उसी सिलसिले को एक तारीखी मुकाम अता करता है हमारा ये नगमा। ये शाहकार फिल्म लाल किला का है, जो कि मुग़ल सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर की कलम से निकला था। ये कलाम इंसान की मुकम्मल बेबसी, तन्हाई और वक्त की बेरहमी का सबसे साफ आईना है। असल तौर से मोहम्मद रफ़ी साहब की पाक आवाज़ में रिकॉर्ड हुए इस दर्द को आज हम एक और नायाब अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। आज इस नफीस कलाम को अपनी आवाज़ का पैरहन दिया है हिंदुस्तान के एक बेहद सुरीले और संजीदा गुलुकार संजय सावंत ने। दोस्तों, संजय सावंत जी की अदबी ज़िंदगी भी बेहद दिलचस्प है। वो संगीत के उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने हमें टेलीविज़न इतिहास के शो इंडियन आइडल के पहले इंडियन आइडल अभिजीत सावंत जैसे सिंगर को हमें हमारा तारुफ कराया। अभिजीत को संगीत अभिजीत के संगीत की शुरुआती रहनुमाई और तालीम देने वाले उनके अपने सगे चाचा यानी संजय सावंत ही थे। संजय सावंत का अपना अंदाज रफ़ी साहब की गायकी से बेहद मुतासिर रहा है और यही वजह है कि उनकी इस ठहरी हुई पुरअसर आवाज़ में ये गज़ल का सोच सीधे सुनने वालों के जहन पर तारी हो जाता है। तो आइए वक्त की इस बेहद संजीदा आजमाइश में डूबने के लिए रुख करते हैं इस खास पेशकश की तरफ। मुलाहिज़ा फरमाएं, संजय सावंत की खूबसूरत आवाज़ में ये अमर शाहकार। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। शौक फरमाए।

0: दोस्तों, हमारी आज की महफिल की बुनियाद ही उन जज्बातों पर टिकी है जो ज़िंदगी की आजमाइशों में टूटकर बिखर जाते हैं, जब इंसानी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं तो वजूद की उस मायूसी को ज़बान देता है। हमारा ये अगला कलाम, ये नगमा है फिल्म शाहजहां का, जिसे संगीत से संवारा था नौशाद साहब ने। बुनियादी तौर पर कुंदन लाल सहगल साहब की आवाज़ में अमर हुए इस दर्द को, जब हम सरहदों के पार से आई एक ऐसी आवाज़ में सुनेंगे तो सुनकर बेशक हैरान हो जाएंगे। इस नज़्म को अपनी रूहानी तासीर दी है अफ़गानिस्तान के बेहद इल्मी और बाकमाल गुलूकार डॉक्टर मोहम्मद सादिक फितरत साहब ने, जिन्हें मौसीकी की दुनिया में नाशनस के नाम से जाना जाता है। नाशनस का मतलब होता है अजनबी या गुमनाम, जो कि अपनी पहचान छुपाकर सुरों की इबादत करता रहा हो। सहगल साहब की गायकी से इस कदर मुतासिर हुए कि ज़माने ने उन्हें अफ़गान सहगल का खिताब दे डाला। उनकी आवाज़ में वो धीमापन और बेदाग उर्दू लहजा इस बिखराव के दर्द को और भी गहरा कर देता है। वह महज एक गायक नहीं है, बल्कि मॉस्को यूनिवर्सिटी से पश्तो अदब में PhD की डिग्री हासिल करने वाले एक काबिल स्कॉलर भी हैं। उनका जन्म 1935 में अफ़गानिस्तान के कंधार के एक संभले हुए मजहबी घराने में हुआ, जहां संगीत सीखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो बचपन से ही रेडियो पर KL सहगल को सुनते थे और उनके दीवाने भी थे। इस गज़ल के मशहूर मिसरे कुछ इस तरह हैं, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, एक भेदी लूट गया हम जी के क्या करेंगे, फिर मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, अरमां के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, हर साथी रूठ गया हम जी के क्या करेंगे। तो आइए तन्हाई के इस बेहद संजीदा मरहले की और सुनते हैं इस खास पेशकश को। मुलायजा फरमाएं नाशनस के इस मखमली और तारीखी वर्जन में ये कलाम, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, नाशनस की आवाज़ में।
1: जब

दोस्तों, ज़िंदगी के इम्तिहानों की धूप जब बहुत कड़ी हो जाती है तो सच्ची मोहब्बत करने वाला इंसान अपने महबूब की तकलीफ को दूर से सिर्फ देखता नहीं रहता, वो आगे बढ़कर उसके तमाम दुखों को अपने नाम कर लेना चाहता है। राजा मेहदी अली खान साहब ने इस कलाम में रूहानी वफा के उसी ऊंचे मकाम को लिखा है जहां आशिक अपने महबूब से कहता है कि अपने हिस्से की सारी बेचैनी और ये खामोश तन्हाई मुझे सौंप दो। बुनियादी तौर पर ये गज़ल जगजीत कौर ने गाई है और ख़याम साहब की लाजवाब मौसिकी में, लेकिन आज हम आज के दौर की एक बेहद इल्मी और बाकमाल गुलकार डॉक्टर राधिका चोपड़ा जी के अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। जम्मू की सरजमी पर पैदा हुई डॉक्टर राधिका चोपड़ा जी ने बनारस घराने की शालीन बंदिशों और बेगम अख्तर की मखमली विरासत में ढलकर गज़ल गायकी को एक नई ताजगी अदा की है। इस गज़ल के साथ मेरी भी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, ये गज़ल न जाने क्यों मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी। तो घर में जब कोई बड़े भाई बहनों के दोस्त आते तो अच्छी खासी महफिल सज जाती थी। मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था ना कि मेरे बड़े भाई बहुत अच्छा गाते थे, तो महफिलें अक्सर ऐसे सजा करती थी घर पर कई बार। तब मैं भी वहाँ जाकर चुपके से बैठ जाती थी, बहुत छोटी थी तब मैं। तब एक दिन भाई के फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हें भी कोई गाना आता है? तो मैंने कहा हाँ आता है। तो उन्होंने बड़े प्यार से यही सोचकर कहा होगा अच्छा चलो सुनाओ तो सही, और मैंने ये गज़ल पूरी की पूरी गा दी। फिर क्या था, महफिल में अचानक चुप सी लग गई। बड़ी बेपरवाही से सुनते बैठे सब दोस्त दोस्तियाँ मुंह उठाकर बस मुझे ही देख रहे थे और सुन रहे थे। उनकी ऐसी तवज्जो देखकर मैं अंदर से घबरा गई कि शायद मैंने गलत गा दिया है। लेकिन गज़ल ख़त्म होने पर सबने जो तालियां बजाई और मुझे प्यार दिया, तारीफ की, वो मैं आज भी नहीं भूली हूँ। वो शायद मेरी पहली नन्ही सी पब्लिक परफॉर्मेंस थी दोस्तों। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर राधिका चोपड़ा की आवाज़ में ये खूबसूरत कलाम। मैं देखूँ तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है,

दोस्तों, ज़िंदगी के इम्तहान की जिस आजमाइश का ज़िक्र आज हमारे सफ़र की बुनियाद रहा, उसका सबसे बड़ा सच यही है कि इंसान अक्सर उन चीज़ों या उन रिश्तों के पीछे भागता रहता है जो शायद उसकी किस्मत के दायरे में कभी थे ही नहीं। जॉन एलिया ने इस कलाम में दिल के उसी गहरे मलाल और एक कड़वी हकीकत को लफ्ज़ों में बयां किया है। वो कहते हैं, जो वजूद जो मोहब्बत तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा कभी थी ही नहीं, उसके खो जाने का ज़माने से शिकवा करना महज एक नादानी है। जॉन एलिया की शायरी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो किसी बनावटी तसल्ली का सहारा नहीं लेते, बल्कि ज़माने के कड़े सच को सीधे आईने की तरह सामने रख देते हैं। उनकी इसी नफीस नज़्म को जब एक मखमली और ठहरे हुए सूफियाना अंदाज में सुना जाता है तो वो हर दिल में सुकून पैदा करता है जो किसी अधूरेपन की कशमकश से गुज़र रहा हो। गज़ल का मिसरा कुछ यूं है, एक उम्र हुई है खुद से जुदा हुए हमें, एक उम्र हुई है खुद से जुदा हुए हमें, अब तो अपना भी कोई सिलसिला ही नहीं। फिर कहते हैं, हर मोड़ पे मिले हैं वही अजनबी लोग, हर मोड़ पे मिले हैं वही अजनबी लोग, इस शहर में कोई हमें अपना मिला ही नहीं। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस आखिरी और सूफियाना मुकाम पर ध्यान से सुनते हैं जॉन एलिया साहब की इस लाजवाब पेशकश को, जो था ही नहीं कभी मिला ही नहीं।

दोस्तों, ज़िंदगी के इम्तहानों की धूप छाँव से गुज़रता हुआ अल्फाज से एहसास तक का ये कारवां आज के इस सफ़र के आखिरी मोड़ तक आ पहुँचा है। स्वामी नित्यानंद प्रज्ञा जी की रूहानी अकीदत से शुरू हुआ ये सिलसिला संजय सामंत की कसक भरी आवाज़ से और नाशना साहब के सरहद पार के अफगानी अंदाज, फिर डॉक्टर राधिका चोपड़ा के बेहद संजीदा झुकाव और आखिर में जॉन एलिया साहब के इस बेबाक कड़े सच तक आते आते हमारे जहन को एक नई सोच सौंप गया है। हकीकत ये है कि जब रेडियो की ये खामोश तरंगें खामोश हो जाएंगी, तब भी इन अजीम फनकारों की आवाज़ें और ये नफीस लफ्ज़ आपकी तन्हाई के साथ ही बनकर आपके साथ रहेंगे। किसी शायर ने महफिल के इसी खामोश असर को क्या खूब बयां किया है कि हवा में तैरती महक को कोई बांध नहीं सकता, हवा में तैरती महक को कोई बांध नहीं सकता, साज भले ही थम जाएं मगर सुरों का असर कभी नहीं मरता। इसी खूबसूरत असर को अपने दिलों में महफूज रखते हुए अब वक्त हो

चला है आज की इस महफिल को यहीं समेटने का और आपसे विदा लेने का। अब मुझे यानी आपकी रेडियो दोस्त आरती को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहें अपना प्यारा एसएन रेडियोस और रेडियो टांटे अभीर। अपनी सेहत का, अपनी चाहने वालों का और अपनी सोच का भी ख्याल रखिएगा। आप सभी कदरदानों को मेरी तरफ से पुरसकून शपा खैर। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

तो दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: આપણ હંગલા ભાઈઓનો ઘણું ઘણું સ્વાગત કરીએ છે આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટ્યાવેલ 90.8 એફએમ ઝાબુઆની આવાજ પર.
1: રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM ટંટ્યા ભીલ રોજ સાંજે 6-8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટંટ્યા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM.
2: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM. आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें.
1: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में. किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है. किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से काफी किसानों ने और विद्यार्थियों ने इस रेडियो टंट्या भील 90.8 FM के एप्लीकेशन को भी अपने फोन में डाउनलोड किया है. साथ ही खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को रेडियो टंट्या भील 90.8 FM के माध्यम से ले रहे हैं. कृषि संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना. किसान साथियों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम खेती बाड़ी प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है. किसान साथियों, जैसा कि आप सभी हमारे स्टूडियो में आते रहे हैं, हम भी आपके खेतों खलिहानों पर आते रहे हैं, आपसे रूबरू होते रहे हैं और आपसे जो खेती संबंधी जानकारियों को आप तक पहुँचाते रहे हैं. साथ ही आपकी खेती से जुड़ी हुई समस्याओं को भी हमने जाना है और उसके निदान हेतु हमने काफी किसान भाइयों की जो भी समस्या रही है, हमने कोशिश की है कि इसे केवीके के माध्यम से हम इसमें सुधार ला सके और केवीके के माध्यम से उनमें आने वाली नई नई योजनाओं के बारे में भी हम उसे उन तक पहुंचा सके. आदि प्रयासों में हम लगे हुए हैं और किसान भाई हमसे जुड़े रहिए. हम केवीके से जुड़ी हुई और अन्य योजनाओं के बारे में आप तक उसकी जानकारी पहुंचाते रहेंगे. साथ ही आपकी समस्याएं जो कि आप हमें फोन के माध्यम से या हमारे 1-to-1 के माध्यम से आप हम तक पहुंचा रहे हैं, इसे जारी रखिए. हम हमेशा आपकी समस्याओं को लेकर अमल करते हैं और आपको उन समस्याओं से उभारने के लिए निरंतर प्रयासों में लगे हुए हैं. रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील रोज सांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टंट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM.
2: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM. आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें.
1: किसान साथियों, आज के अपने खेतीबाड़ी कार्यक्रम के मुख्य बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिस खेती को लेकर हम आज चर्चा करने वाले वो है टमाटर की खेती. साथ ही हम जानेंगे गन्ने की खेती, इससे संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी. कुछ किसान साथी जो हमारे स्टूडियो में आके गए हैं, उन्होंने कुछ किसानों ने गन्ना किया हुआ है. साथ ही कुछ किसान जो टमाटर करने के लिए काफी उत्सुक थे, उन्होंने भी अपनी राय हमसे रखी थी. तो आज हम चर्चा करने वाले हैं गन्ने और टमाटर की खेती को लेकर. तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को, हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कब लगानी चाहिए, क्या देखरेख करनी चाहिए, कौन सी दवाई डालनी चाहिए, कहाँ से हमें उनका बीज लेना चाहिए और उनका देखरेख, उनका रख रखाव कैसे होना चाहिए, जानेंगे सारी जानकारियों को विस्तार से.
3: किसान भाइयों बहनों, आलू के बाद टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि हमारे देश में काफी लोकप्रिय है। हमारे देश के कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में टमाटर की खेती करके अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। हमारे देश में इसकी खेती साल भर की जा सकती है। देश के कई हिस्सों में टमाटर को उगाया जाता है और अगर आप इसकी उन्नत किस्मों का चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन तो मिलता ही है, बाजार में इसका मूल्य भी आपको अच्छा प्राप्त होता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं, कई तरह के विटामिन से भरपूर है टमाटर और कितनी ही ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं जिनको रोकने में भी टमाटर का सेवन करने से मददगार साबित होती हैं। तो आइए आज आपको टमाटर की खेती के संबंध में दे कुछ खास जानकारियां।
4: टमाटर नाजुक सब्जी है, ज्यादा सर्दी गर्मी या जल जमाव को ये सहन नहीं कर पाती। इसकी खेती सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, फिर भी बलुई और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच 6 से 7 होना चाहिए। सामान्य किस्म के लिए प्रति हेक्टेयर 400 से 450 ग्राम जबकि संकर किस्मों के लिए 175 से 200 ग्राम बीजों की जरूरत होगी। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, काशी अमृत और काशी अनुपम कुछ उन्नत सामान्य किस्में हैं। संकर किस्मों में स्वर्ण समृद्धि, स्वर्ण लालिमा, वैभव, स्वर्ण संपदा, काशी हाइब्रिड 1 और काशी हाइब्रिड 2 बेहतर हैं। नर्सरी में बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें और बुआई के बाद बीज के ऊपर कंपोस्ट की पतली परत बिछा दें। 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। अब इसकी खेत में रुपाई की जाएगी। रुपाई से पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई करें और उसमें 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर जैविक खाद मिला दें। अगर आप सामान्य किस्म बो रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 45 सेंटीमीटर रखें। सीमित बढ़वार वाली संकर किस्मों में कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है। वहीं असीमित बढ़वार वाली संकर किस्मों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। सामान्य किस्मों में प्रति हेक्टेयर 150 क्विंटल गोबर की खाद, 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटाश की जरूरत होगी। संकर किस्मों के लिए 300 क्विंटल गोबर की खाद, 200 किलो नाइट्रोजन, 100 किलो फास्फोरस और 75 किलो पोटाश चाहिए। रुपाई के समय 1/3 नाइट्रोजन ही देना है, बाकी 1/3 25 दिन बाद और बाकी 1/3 40 से 45 दिन बाद दे दें। रुपाई के 20 से 25 दिन बाद पौधों को बांस का सहारा दें, इससे पौधे गिरेंगे नहीं और फसल भी बेहतर होगी। गर्मियों में हर 7 दिन बाद जबकि सर्दियों में 10 दिन बाद पानी दें। टमाटर की पौधशाला में आद्र गलन बीमारी नुकसान पहुंचाती है। इसमें अंकुरित बीज या तो जमीन की सतह से बाहर निकलने से पहले गल जाते हैं या अंकुरण के 15 से 20 दिनों के भीतर। बचाव के लिए पौधशाला में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। वहीं जीवाणु मूर्छा रोग फूल और फल पर हमला करता है और उन्हें मुरझाकर सुखा देता है। रोग प्रतिरोधी किस्में लगाएंगे और जल निकासी का इंतजाम रखेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। अगेती झुलसा फफूंदी जनित बीमारी है। इसमें गोल छल्ले नुमा धब्बे बनते हैं। कई धब्बे आपस में मिलकर पूरे पत्ते पर फैल जाते हैं, इससे पत्ता सूख जाता है। पछेती झुलसा में पत्तियां और तने पर धब्बे बनते हैं। बूंदा बांदी और कोहरा होने पर ये तेजी से फैलता है और पूरा पौधा काला होकर झुलस जाता है। बीजोपचार करके बुआई करेंगे तो ये समस्या नहीं होगी। फल छेदक कीट के लिए रुपाई के दौरान ही फ्यूराडॉन का इस्तेमाल करें, जबकि प्रकोप होने पर परर नीम से बने कीटनाशी का छिड़काव करें। इसके अलावा रुपाई से 10 दिन पहले खेत के चारों तरफ गेंदे के पौधे लगाएं या टमाटर की 8 से 10 कतारों के बीच एक कतार गेंदे के फूल की लगा दें।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में खेती से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। उससे पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
3: खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
2: इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग ने हमारी देश की मिट्टी को काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई है, इसलिए अब मिट्टी की सेहत में सुधार करना भी हमारा कर्तव्य है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी सफल महिला किसान उत्तराबाई से, जो कि कई वर्षों से कर रही हैं जैविक खेती और किस तरह से लाभ हासिल कर रही हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी उन्हीं की मुंह जुबानी।
5: इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय महिलाएं अपनी कामयाबी का परचम हर क्षेत्र में फहरा चुकी हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनना हो या फिर एक सफल महिला किसान। एक बार जब महिलाएं अपना कदम उठा लेती हैं, तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है। महिलाएं समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन और जागृति लाने में सदैव ही महत्वपूर्ण योगदान देती आई हैं। संघर्ष से तप कर निकली शख्सियतें कामयाबी को नए मायने देती हैं। कामयाबी की ऐसी मिसालें कायम करने वाली महिलाओं की फहरिस्त में एक नाम है मध्य प्रदेश के कटनी जनपद के नैगवा गांव की उत्तराबाई का, जो एक आदिवासी महिला है और जैविक कृषि करने वाले किसानों के लिए वो एक नायक बन चुकी हैं। नैगवा गांव को आज जैविक तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाने लगा है। इस गांव को जैविक खेती के लिए प्रथम राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और इतने बड़े बदलाव के पीछे इस आदिवासी महिला उत्तराबाई का सराहनीय योगदान रहा है। 24 घंटों काम में मशरूफ रहने वाली ये महिला कभी खेतों पर काम करती है तो कभी गाय बछड़ों की देखभाल करती है, कभी साथी किसानों से संवाद तो कभी खेतों में चल रहे काम का निरीक्षण। उत्तराबाई के पति कटनी जिले में नौकरी करते थे। अपने पति की जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए उत्तराबाई सन 2002 में खेती बाड़ी से जुड़ गई, जिसका उन्हें शुरू से शौक भी था। वो अपने घर के बगीचे में फल और सब्जियां उगाते आई थी, जिसके लिए वो गोबर की खाद का उपयोग किया करती थी। उत्तराबाई को कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर जैविक कृषि पद्धति के बारे में सही जानकारी मिली। वैज्ञानिकों की सलाह और प्रशिक्षण की मदद से खेती करने वाली वो अपने गांव की पहली महिला किसान थी। वैज्ञानिकों से मिली जानकारी का इस्तेमाल वो अपने खेतों पर करती गई और धीरे धीरे उत्तराबाई ने 6-7 तरीकों की खाद और कीट नियंत्रण बनाना सीखकर उनका इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगी। वर्तमान में उत्तराबाई केंचुआ खाद, मछली खाद, नाडेप टाका खाद, गोमूत्र, नीम की पत्ती, जीवामृत, अमृत भभूत का प्रयोग कर करीब 14 वर्षों से बड़ी कामयाबी से जैविक कृषि कर रही हैं। उत्तराबाई के खेतों में लहलहाती फसलों और उच्च गुणवत्ता वाली फसलों को देखकर उनके गांव के बाकी किसानों ने भी उनसे प्रेरणा ली है और धीरे धीरे जैविक कृषि को अपनाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उत्तराबाई ने जो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और प्रशिक्षण से जैविक कृषिकरण शुरू किया वो अन्य लोगों के लिए एक मिसाल साबित हुआ और धीरे धीरे गांव के बाकी किसान भी उनसे प्रेरित होकर जैविक पाठशाला में जाने लगे हैं। उत्तराबाई की मेहनत और लगन साफ तौर पर उनके खेतों में हरी भरी लहलहाती फसलों में देखकर प्रतीत होती है और यही कारण है कि कृषि विभाग के कई अधिकारी उनकी सफलता और उन्नति को बाकी किसानों को मिसाल के तौर पर दिखाने उनके खेतों पर लेकर जाते हैं। उत्तराबाई के जैविक कृषि में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए सरकार उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी कर चुकी है। जैविक कृषि में उत्तराबाई का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर गांव के अन्य किसान भी जैविक पद्धति से खेती कर लाभान्वित होने लगे हैं।
0: तो आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
6: अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं।
3: छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं।
6: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए PM किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए PM किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, हमारे हित के लिए भारत सरकार हमेशा कुछ न कुछ नई योजनाएं लेकर आती रहती है। उन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान भाइयों, फसल बीमा योजना के तहत अगर किसी भी वजह से, अधिक बारिश की वजह से या सूखे की वजह से या कुछ भी प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर हमारी फसल में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हमारी भारत सरकार करती है। तो इसीलिए इस योजना को फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। किसान साथियों, फसल बीमा योजना के क्या कुछ लाभ हैं, आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से।
7: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं, साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है।
1: किसान साथियों, अभी आपने फार्मिंग इंडिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, जाना, समझा और आइए आगे चर्चा करेंगे हम प्राकृतिक खेती क्या है, क्यों जरूरी है, प्राकृतिक खेती के क्या लाभ है आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: दर्शन में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में वेद और पुराणों का काफी बेहतर असर पड़ता है, इसलिए अथर्व वेद में ये कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। लेकिन आज के समय में धरती की बिगड़ती सेहत का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में कई विकल्प उभर कर सामने आने लगे हैं और उनमें से एक है प्राकृतिक खेती।
8: आज से लगभग 50 साल पहले हम सब लोग प्राकृतिक खेती ही करते थे, जिसमें सबसे कम बाहर से संसाधनों का प्रयोग करते थे, बल्कि जो प्रकृति के साथ में तालमेल करते हुए हम जो फसल उगाते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें बाहर से कम होता है, तो इसमें हमें उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है जिनका प्रकृति के तालमेल हो। एक तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ में हमने फसलों का इस प्रकार से चुनाव करना पड़ता है कि जो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। और महत्वपूर्ण कब होती है कि वो अगर एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो उसमें लाभ मिले। और इसमें जब सबसे प्रमुख फसल आती है वो दलहनी फसलें आती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में क्या खासियत होती है कि इनकी जड़ों में खास किस्म के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं, और पौधे को उपलब्ध करवाने के साथ साथ में जब हम फसल को काट लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के अंदर रह जाती है, जो कि अगली फसल के काम आ सकती है। इसी तरह से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें उथली रहती हैं, ऊपर रहती हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इनमें फसलों का जो चुनाव है वो इसी प्रकार से किया जाता है कि एक फसल गहरी जड़ वाली और जो अगली फसल आएगी वो उथली अगर जड़ वाली लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर नीचे से लेते हैं, तो इससे पोषक तत्वों का आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ साथ में जो दूसरा तरीका किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसमें हम लोग आजकल जो जीवाणु खाद हैं उनका अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी किसान इसको करते थे अभी भी करते हैं, तो उससे नेचुरल फार्मिंग और मदद मिल जाती है, क्योंकि ये भी नेचर के अनुकूल ही हैं, प्रकृति के अनुकूल ही हैं, उनका प्रयोग करके भी हम इसकी खेती को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब नेचुरल फार्मिंग आती है तो उनमें फसलों का और किस्मों का चुनाव मौसम के और एरिया के अनुरूप किया जाता है, कि उन्हीं फसलों को चुना जाता है जिनके अंदर कम से कम बीमारी लगती हो, कम से कम कीट लगते हों, जो कम पानी में आ सकें, और उसी चुनाव के आधार पर जब हम करते हैं। और इस प्रकार की फसलों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वह है मोटे अनाज वाली फसलें, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो रागी हो, चाहे इसी किस्म की जो फसलें हैं ये कम पानी लेती हैं लेकिन पैदावार

0: भी मोटे अनाज हो गए तो उनके तालमेल से जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
2: किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से प्यारे से भीली गीत का। कहीं भी मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज़।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, आइए खेती बाड़ी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को, लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
2: हमारे देश में फसल उत्पादकता कई विकसित देशों के मुकाबले कम है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है नई तकनीकों से दूरी। लेकिन हमारे आज के कई ऐसे किसान हैं जो नई तकनीकों को अपनाने लगे हैं। ऐसे ही एक किसान है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रहने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर तिवारी। जी हाँ, चौंकिए मत, हमारे आज के ये सफल किसान पहले प्रोफेसर हुआ करते थे। तो आइए मिलते हैं इनसे।
3: कम उत्पादकता यानी कम कमाई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भी किसानों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। यहाँ लोग खेती की पुरानी हवेली तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। इस तकनीक से प्रति हेक्टेयर कम उपज हो रही थी और किसानों को उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं मिल पा रहा था। उस समय कोई नहीं जानता था कि इस क्षेत्र की खेती में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव नरसिंहपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय से एक प्रोफेसर के रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ। प्रोफेसर का नाम है चंद्रशेखर तिवारी। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने पुश्तैनी जमीन पर खेतीबाड़ी का काम शुरू किया, लेकिन ना पैदावार अच्छी हो पा रही थी और ना ही आमदनी। उनके मन में यही सवाल उठता था कि खेती को किस तरह लाभकारी बनाया जाए। यही सवाल उन्हें देश के नामचीन शोध संस्थानों तक ले गया। इन संस्थानों में इन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से मुलाकात की और गहन विचार किया। इन मुलाकातों के दौरान चंद्रशेखर तिवारी को पता चला कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका निश्चित दाम मिलना तय है। चंद्रशेखर ने खुद भी गन्ने की खेती शुरू की और दूसरे किसानों को भी इस ओर प्रेरित किया। गन्ने की खेती दूसरे क्षेत्रीय फसलों से तो अच्छी रही, लेकिन चंद्रशेखर उपज से अब भी संतुष्ट नहीं थे। उस समय एक हेक्टेयर में 35 से 40 टन गन्ना पैदा हो पा रहा था। चंद्रशेखर का लक्ष्य इसे 75 से 80 टन तक पहुंचाने का था। ज्यादा उपज के लिए गन्ने की नई और उन्नत तकनीक जरूरी थी। इसी की तलाश में वो जा पहुंचे लखनऊ के गन्ना अनुसंधान संस्थान। यहाँ पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर AD पाठक से लंबी चर्चा हुई और प्रोफेसर तिवारी ने नरसिंहपुर में गन्ने की कम उपज के बारे में बताया। इस मुलाकात का असर हुआ। डॉक्टर पाठक ने कम उपज के कारण जानने और सुधार के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम गठित कर दी। वैज्ञानिकों की टीम ने नरसिंहपुर जिले का दौरा किया, वहाँ की मिट्टी की जाँच की और जलवायु परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटाई। उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर और उनके साथी किसान लगातार वैज्ञानिकों के संपर्क में रहे। वैज्ञानिक जो भी सुझाव देते उन पर अमल करते रहे। सबसे पहले मिट्टी सुधार पर काम किया गया। हरी खाद के लिए ढैंचा उगाया गया। फसलों के अवशेषों को खेत में ही छोड़ दिया गया और चीनी मिल से निकला कचरा भी खेतों में डाला गया। इसके अलावा सूक्ष्म जैविकी के लिए टीकाकरण भी किया गया। 2014-15 तक नरसिंहपुर की मिट्टी में जैविक कार्बन सामग्री महज 0.36% थी, जो 2018-19 तक बढ़कर 0.76% हो गई। इससे 20% तक नाइट्रोजन की बचत होने लगी। इतना ही नहीं, पानी की बचत के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप को अपनाया गया। मोइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट का सहारा लिया और एकल कली सेट का उपयोग किया। इन उपायों से न सिर्फ खेती की लागत में कमी आई बल्कि उपज में भी बढ़ोतरी होती चली गई। बल्कि आज एकल कली सेट का उपयोग करते हुए किसान गन्ने की स्वस्थ नर्सरी तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के किसानों ने अंतर फसल प्रणाली को भी कामयाबी के साथ अपनाया और गन्ने के साथ आलू, चना, मटर, धनिया और प्याज बोने लगे। नए उपायों से न सिर्फ फसल लागत में कमी आई बल्कि उपज में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। बल्कि प्रोफेसर चंद्रशेखर तिवारी ने 75 से 80 टन प्रति हेक्टेयर का जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे भी हासिल कर लिया। कमाल की बात तो ये है कि उत्पादन में ये बढ़ोतरी जैविक तरीकों से की गई। आमदनी बढ़ी तो किसान और तेजी से गन्ने की ओर आकर्षित हुए। आज नरसिंहपुर जिले में 35% जोत पर गन्ना उगाया जा रहा है। प्रोफेसर तिवारी की मदद से वैज्ञानिक फसल अवशेष जलाने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने में कामयाब हुए। आज पूरा नरसिंहपुर जिला अवशेषों को जलाए जाने से मुक्त हो चुका है।
0: किसान साथियों, अभी हमने गन्ने की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही हमने जाना कि गन्ने के जो अवशेष है उसे हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसका हमें सही प्रयोग किस तरीके कैसे करना चाहिए, इन सब महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। आइए जानते हैं अगस्त महीने में, आने वाले मंथ अगस्त में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमारे बागवानी में। तो आइए डालते हैं एक नजर।
3: लीची में गुटी लगाने का ये उपयुक्त समय है। अंगूर की नई फूटी हुई शाखाओं को 1 मीटर लंबाई के बाद काट दें। फसल में पत्ते खाने वाली सुंडियों का नियंत्रण भी आवश्यक है। नए बागों में निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवार निकालकर थालों को साफ रखें। पौधों के मूल वृंत में यदि फुटाव आ रहा है तो उसे निकाल दें। पपीते के पौधों की रुपाई इस समय समाप्त कर लेनी चाहिए। अमरूद की फसल को फल मक्खी से बचाने के लिए 0.1% मेलाथियन का छिड़काव करें। दवाई प्रयोग के 15 दिन बाद ही फलों की तुड़ाई करें।
2: हमारे देश में दलहनी फसलों का अहम स्थान है। दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही होता है और सबसे ज्यादा खपत भी यही होती है। दलहनी फसलों में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रोटीन का तो ये प्रमुख स्रोत माना जाता है। बात जहां तक दलहनी फसलों की खेती की आती है तो किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं मूंग और उड़द की। आइए देखते हैं मूंग और उड़द की खेती से जुड़ी कुछ खास बातें।
3: दलहनी फसलों में मूंग एवं उड़द की महत्वपूर्ण भूमिका है। मूंग की फसल को खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में उगाया जा सकता है। उड़द को मुख्य रूप से खरीफ में उगाया जाता है। अधिक उपज के लिए मूंग एवं उड़द की बुआई कतार में करनी चाहिए। मूंग और उड़द फसल की खेती और उचित देखभाल कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। मूंग और उड़द फसल की देखभाल करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। खासकर मूंग और उड़द में सिंचाई पुष्प अवस्था में थोड़ा पहले कर दें। साथ ही फसल में फली बनने की अवस्था में भी सिंचाई कर सकते हैं। समय समय पर पोषक तत्वों की देखभाल करें। दलहनी फसल मूंग और उड़द में कम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये फसलें अपने वातावरण से नाइट्रोजन को एकत्रित करने की क्षमता रखते हैं। किसान भाई फसल में पोषक तत्वों की कमी लगने पर यूरिया का इस्तेमाल करें। मूंग और उड़द की फसलों में खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए। हाथों से ही फसलों में निराई गुड़ाई करें। अगर बात करें कीटों की तो बरसात के समय दलहनी फसलों में पीला मोज़ेक वायरस का खतरा रहता है। फली बनने की अवस्था में इसका प्रकोप अधिक दिखाई देता है। ये सफेद मक्खी नामक कीट द्वारा फैलता है। ऐसे में इमीडा क्लोप्रिट के इस्तेमाल से इसको फैलाने वाले कीट को मार सकते हैं। इसके अलावा अभी के समय देश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश का पानी खेतों में लगे मूंग और उड़द की फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में अधिक वर्षा वाले इलाकों में जल निकासी का उचित व्यवस्था करें ताकि फसलों को नुकसान ना पहुंचे।
0: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटियाभील 90.8 FM झाबवा की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आइए नजर डालते हैं एक सफल किसान की कहानी के ऊपर। आइए देखते हैं उन्होंने कैसे जीरो बजट पर प्राकृतिक खेती का एक जीता जागता उदाहरण हमें दिया है।
4: सुभाष पालेकर एक भारतीय कृषक एवं कृषि विशेषज्ञ हैं। इन्होंने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का आविष्कार किया है और ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें कृषि करने के लिए न ही किसी भी रासायनिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है और न ही बाजार से अन्य औषधियां खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। इन्होंने भारत में इस विषय पर कई कार्यशालाओं का आयोजन किया है। सुभाष पालेकर का जन्म वर्ष 1949 में भारत में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बेलोरा नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर से कृषि विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज की शिक्षा के दौरान वो सतपुड़ा आदिवासी क्षेत्र में जाकर उनकी समस्याओं के बारे में आदिवासियों के साथ काम करते थे। पढ़ाई के बाद वर्ष 1972 में वो अपने पिता के साथ कृषि करने लगे। उनके पिता एक किसान थे, लेकिन कॉलेज में रासायनिक कृषि सीखने के बाद इन्होंने भी रासायनिक कृषि करना शुरू किया। वर्ष 1986 से 88 के दौरान सुभाष पालेकर ने जंगली वनस्पतियों का अध्ययन करना शुरू किया। तब इन्होंने पाया कि जंगलों में एक स्वविकसित, स्वपोषित और पूरी तरह से आत्मनिर्भर प्राकृतिक व्यवस्था विद्यमान है। जंगलों में एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिन पर वनस्पतियों का विकास होता है। उन्होंने प्राकृतिक व्यवस्था का अध्ययन किया और वर्ष 1979 से 1995 के दौरान जंगल की उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अपने खेत पर परीक्षण करके देखा। इन 6 वर्षों के शोध कार्य के दौरान उन्होंने 154 अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण की। इसके बाद सुभाष पालेकर ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि की तकनीक आरंभ की, जिसका प्रचार उन्होंने कार्यशालाओं, सेमिनार के माध्यम से किया और इस विषय पर मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल भाषाओं में अपनी पुस्तकें लिखी और भारत भर में किसानों के द्वारा स्थापित कृषि के हजारों मॉडल भी विकसित किए। सुभाष पालेकर का अधिकतर समय किसानों के प्रशिक्षण शिविर में बीतता है। ये किसानों को निशुल्क कृषि प्रशिक्षण भी देते हैं। पिछले 20 सालों से लगातार शून्य लागत प्राकृतिक कृषि की खेती का प्रशिक्षण देने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाते रहे हैं। आज इस पद्धति को अपनाकर लाखों लोग बिना लागत के खेती से अपनी आय बढ़ाते हुए मुनाफा कमा रहे हैं। सुभाष पालेकर ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को विकसित कर कृषि के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान दिया है। इनके इस प्रयास से खेती को नई दिशा तो मिली ही है, साथ ही इन्होंने किसानों को भी प्रोत्साहित किया है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देकर इन्होंने कृषि को और भी मजबूती दी है, साथ ही किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाले रास्ते से भी अवगत कराया है, जिससे फलस्वरूप किसान अपनी आय दोगुनी करने में भी सफलता हासिल कर सकेंगे।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતેં ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં। એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
1: આપ સુન રહે ઝાબુઆ કા પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM। આપણો રેડિયો આપણી વાતે।

0: कार्यक्रम में किसान साथियों, आज खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने टमाटर की खेती, गन्ने की खेती, मूंग की खेती और उड़द की खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छाबा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, खेती बाड़ी प्रोग्राम के माध्यम से न केवल किसानों ने बल्कि विद्यार्थियों ने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जाना है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आज फिर आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करने के लिए आ पहुंचा है। किसान साथियों, हमें आशा है आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सबका ख्याल रख रहे होंगे। किसान साथियों, सबकी बुआई हो चुकी है और अभी समय है हमारे खेतों में खरपतवार नियंत्रण का। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अलग अलग फसलों में कैसे हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं, साथ ही जानेंगे नई कृषि तकनीकों के बारे में और मिलवाएंगे आपसे एक्सपर्ट से और जानेंगे एक्सपर्ट लोगों की भी राय। उससे पहले आइए सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कैसे हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, खरपतवार हमारे खेतों में अगर पड़ जाता है तो हम कितना भी हमारे खेतों में पोषक तत्व हम डालते रहें, परंतु अगर हमने खरपतवार ठीक से नियंत्रण नहीं किया तो हमारा कहीं ना कहीं हम हमारी फसलों में इसका नुकसान देख सकते हैं। किसान साथियों, तो आइए जानते हैं, आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: जैसे कि आपने बताया कि खरपतवार अपने आप में एक ऐसे पौधे हैं जिनको किसान भाई अपने खेत में नहीं देखना चाहता, तो ऐसी स्थिति में जबकि पर्टिकुलरली खरीफ के मौसम की जो फसलें हैं, जैसे धान है मुख्य फसल, उसके बाद मक्का है और दूसरी दलहनी फसलें हैं, तो इनमें खरपतवार रबी के मौसम की तुलना में अधिक आते हैं। तो जब खरपतवार आते हैं तो उनको हम कई विधियों से नियंत्रित कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो किसान भाई अगर शुरू से ही कुछ योजनाबद्ध तरीके से अगर खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए विचार करेंगे तो उनको ये चाहिए कि जब खेत की तैयारी करें तो वो एक दो बारी जो है खेत में हल्का सा पानी दे दे, और पानी देने के बाद जो खरपतवारों के बीज होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है खरपतवारों के बीज जो है फसलों की तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं और एक खरपतवार तो अब मैं आपको बताऊं कि 15,000 बीज जो है एक पौधा उत्पन्न करता है।
3: अच्छा।
2: तो वो सारे जो बीज अगर खेत में गिर जाते हैं तो वो जमीन की ऊपरी सतह में खरपतवारों के बीज होते हैं, तो जिससे क्या है उनका प्रकोप जल्दी होता है। तो किसान भाई जब खेत में पानी लगाएंगे बोने से पहले, फसल के लगाने से पहले, तो 5-7 दिन पर जो खरपतवार उग जाते हैं और उससे वो ट्रैक्टर से वो जुताई करके मार देंगे, तो उससे क्या होगा कि जितने खरपतवारों के बीज ऊपरी सतह में जमीन में पड़े हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा आगे एक महीने में जो खरपतवार जमने वाले थे उनकी संख्या काफी कम हो जाएगी। तो इससे किसान भाई बिना कुछ खर्च किए खरपतवारों का नियंत्रण कम कर सकते हैं। तो ये एक विधि है जिसमें किसानों को ना तो किसी रसायन का प्रयोग करना और ना ही कोई विशेष खर्चा करना।
3: जी, और देख आपको बता दें कि राजवीर जी बहुत सारे यहाँ पर खरपतवार भी लेकर आए हैं, पौधे लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए जब ऐसे बात करते रहते हैं तो कई बार चीजें उतनी क्लियर नहीं होती, इतनी साफ।
1: किसान साथियों, खरपतवार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
4: खरीफ फसलों में खरपतवारों का प्रकोप होने की काफी ज्यादा आशंका रहती है। खरपतवार फसलों की पैदावार पर असर डालती है। खरीफ फसलों में पाई जाने वाली खरपतवारों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। ये 2 बीज पत्रीय पौधे होते हैं जिनकी पत्तियाँ चौड़ी होती है, जैसे सफेद मुर्ग, कनकौवा, जंगली जूट और जंगली तम्बाकू। दूसरी, संकरी पत्ती वाली खरपतवार। इसको घास कुल की खरपतवार भी कहते हैं। इस कुल की खरपतवारों की पत्तियां पतली और लंबी होती हैं, जैसे सांवा, दूब घास। तीसरी तरह की खरपतवार होती है मोथा वर्गीय खरपतवार। इस कुल की खरपतवारों की पत्तियां लंबी और तना 3 किनारों वाला ठोस होता है। इनकी जड़ों में गांठें होती हैं, जैसे मोथा। धान की प्रमुख खरपतवार सांवा, कोदो, कनकौवा, जंगली जूट, मोथा और जंगली धान है। वहीं खरीफ की दलहनी और तिलहनी फसलों में महकुआ, हजारदाना, कनकौवा, सफेद मुर्ग, सावा और मोथा उगाती है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो निवारण विधि अपना सकते हैं। इस विधि में वो सभी शस्य क्रियाएं शामिल हैं जिनके जरिए खेतों में खरपतवारों के उगने को रोका जा सके, जैसे उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल, अच्छी तरह से सड़ी गोबर खाद और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल, ग्रीष्मकालीन जुताई, खेती की तैयारी और सिंचाई, नालियों की साफ सफाई। दूसरी ओर यांत्रिक विधि खरपतवारों पर नियंत्रण की आसान और प्रभावकारी विधि है। फसल की शुरुआती अवस्था में फसलों को खरपतवार के प्रकोप से मुक्त रखना जरूरी है। आमतौर से 2 निराई गुड़ाई, पहली बुआई के 20-25 और दूसरी 45 दिन बाद करने से खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है।
5: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय कीटनाशी जीव प्रबंधन, जैसा कि अंग्रेजी के वर्ड शब्द जो IPM से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, समेकित नासी जीव प्रबंधन में वो समस्त विधियों का हम उपयोग करते हैं जो कीट को प्रबंधन के लिए हम प्रयोग में लाते हैं।
3: IPM जैसा कि आपने बताया यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट
5: जी। इसके अंतर्गत हम किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं वो तमाम विधियों का समावेश है जो सही समय पर हमको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि कीट का प्रबंधन हो सके। लेकिन हमारा किसान भाई आजकल करता क्या है, कीटनाशक डायरेक्ट डालता है, जैसे ही इंसेक्ट दिखाई देता है और तुरंत वो कीटनाशक डालता है। इस विधि के अंतर्गत हमको पहले मॉनिटरिंग करना है, देखना है आपके खेत में कीड़े की कितना है ETL लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, उस हद तक कीड़ा है या नहीं है।
1: किसान साथियों, जैसा कि डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कितना उसमें कितना प्रतिशत कीटनाशक है, कितना प्रतिशत हमारे खेत में जीवाणु है, ये जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम उसमें दवाइयों का प्रयोग करें। आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
4: समेकित नाशी जीव प्रबंधन से मतलब प्राकृतिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खेत और इसके आसपास के वातावरण में मौजूद नाशी जीवों को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ कीटनाशकों या दूसरे विषैले रसायनों पर ही निर्भर ना होकर ऐसी सुरक्षा विधि को अपनाना है जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो। समेकित नाशी जीव प्रबंधन में प्रकृति में पाए जाने वाले फायदेमंद परजीवी, परभक्षी और फफूंदी व विषाणुओं को बढ़ावा मिलता है। समेकित नाशी जीव प्रबंधन आर्थिक दृष्टि से भी फायदेमंद है। इसके तहत क्षेत्र की जलवायु और फसल के प्रकार के आधार पर कीट या जीवनाशी के प्रबंधन के लिए प्राकृतिक तकनीकों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जिसमें फसल के मित्र कीटों की संख्या में इजाफा कर शत्रु कीटों का सफाया किया जाता है। इसके अलावा कुछ तकनीक जैसे लाल कद्दू बीटल के लिए नीम तेल का छिड़काव, पीले चिपचिपे जाल का इस्तेमाल, मिट्टी की रैंकिंग से फल मक्खी के प्यूपा को नष्ट करना आदि का इस्तेमाल भी किया जाता है। समेकित नाशी जीव प्रबंधन की कई विधियां मौजूद हैं, जैसे शस्य क्रियाएं, यांत्रिक विधियां, जैविक विधियां और रासायनिक नियंत्रण। शस्य क्रियाओं में गर्मी में खेतों की जुताई करके उसमें मौजूद कीटों की अवस्थाओं को नष्ट किया जाता है। समय से बुवाई और उचित फसल चक्र अपनाया जाता है। कीट और रोगों से ग्रसित पौधों को नष्ट किया जाता है। खेतों में लाइट ट्रैप लगाकर कीटों को नष्ट किया जाता है। जैविक विधि में मित्र कीटों को संरक्षण दिया जाता है, जबकि रासायनिक नियंत्रण में सुरक्षित रसायनों का सही समय पर निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, हमें कैसे खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए, किन किन कीटों को अपने खेतों से दूर रखना चाहिए, कौन से हमारे मित्र कीट हैं और कौन से हमारे शत्रु कीट हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हमें हमारी कृषि में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा हम कितने भी पोषक तत्व हमारे खेतों में डाल लें उससे हमें नुकसान ही होगा। अगर जब तक हम अच्छे से खरपतवार नियंत्रण नहीं कर लेते तब तक हमें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: किसान भाई भी जानते हैं कि हमारे खेतों में मुख्यतः तीन प्रकार के खरपतवार देखे जाते हैं। पहले घास जाति के खरपतवार हैं। घास जाति में खरीफ मौसम में सबसे ज्यादा जो खरपतवार आता है वो आता है सावक, सावा जिसको बोलते हैं लोग, कभी कभी व्रत में इसको इसकी खीर भी बनाते हैं।
3: सावक की
2: खीर भी बनाते हैं और हम तो जानते हैं गांव में इसकी झाड़ू भी बनाई जाती थी। जब पहले बांस की झाड़ू नहीं मिलती थी तो सावक ज्यादा होता था, तो किसान जो है लोग निकाल करके इसके झाड़ू के रूप में भी इसको यूज करते थे। तो ये सावा बहुत ज्यादा आता है धान की फसल में भी और दूसरी फसलों में भी।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: तो जैसा कि मैं घास जाति के खरपतवारों की चर्चा कर रहा था, उसमें सवा है, मकरा है, जिसके जिसको क्रैप ग्रास बोलते हैं, जिसके जैसे ये देखिए ये सवा है, देखिए ये पूरा गुच्छे में आता है और इसको किसान भाई देख लेते हैं धान की फसल में और जो खरीफ की फसल है, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मक्का हो, चाहे अरहर हो, जो कोई भी फसल है, लोबिया हो, उसमें काफी आता है। इसके बाद जो है ये है मकरा।
3: मकरा,
2: हाँ देखिए, इसके अगर आप इसको दिखाएंगे किसानों को तो जब कौवे के पैर जो होते हैं क्रैब फुट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके पंजे के हिसाब से इसको फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस ऐसा होता है तो इसको मकरा बोलते हैं। तो ये भी घास जाति का एक मुख्य खरपतवार है। इसके अलावा ये है, इसको बोलते हैं फूल नहीं घास, एक्रेनिक रेसिमोसा जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटी होती है और जहां मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां ये ज्यादा पनपती है। इसके अलावा ये एक दूसरी ग्रास है जिसको रेट्रोफ्लेक्सा डाइनेवरा रेट्रोफ्लेक्सा बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। इसको भी घास जाति का ये भी मुख्य खरपतवार है। और आजकल जो है धान की फसल में जो है सांवा कम हो रहा है जबकि ये खरपतवार उसकी जगह ले रहा है। अच्छा। खरपतवारों की एक प्रकृति होती है कि हम अगर एक शाकनाशी एक हर्बिसाइड बार बार प्रयोग करते हैं धान की फसल में तो उस शाकनाशी के कारण कुछ खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं लेकिन धीरे धीरे धीरे कुछ खरपतवार उन पुराने खरपतवारों की जगह ले लेते हैं जिसके काल क्या होते हैं हम कहते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। जैसे हमारे कुछ क्षेत्रों में गेहूं की फसल में आइसोप्रोटन बहुत प्रमुख हर्बिसाइड था जिसको गुल्ली डंडा कंट्रोल होना बंद हो गया। तो ऐसी समस्या जो है बार बार किसान भाइयों को मैं ये हिदायत दूंगा कि एक तरह की हर्बिसाइड बार बार।
1: किसान साथियों जैसा कि अभी हमने सुना कि वही दवाइयां डाल डाल के क्या होता है धीरे धीरे वही खरपतवार अपने आप को मजबूत बना लेता है और जो पुराने वाले खरपतवार की जगह कर लेता है। खरपतवार से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, उससे पहले आइए लेते हैं यहाँ पर छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से बिली गीत को।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याभील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक माना गया है और आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि हमें खरपतवार का नियंत्रण करना कितना जरूरी है, अन्यथा हम कितना भी पोषक तत्व डाल लें हमारे खेतों में और हम कितना भी हमारे खेतों में मेहनत कर लें, लेकिन सही खरपतवार का सही समय पर इसका ध्यान रख के इसमें सावधानियां बरतना बहुत ही जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, खरपतवार से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, लेंगे कुछ एक्सपर्ट की राय।
1: खरीफ के मौसम में, इस मौसम में धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे आपका सोयाबीन हो, चाहे कोई भी दलहनी फसल हो, इस मौसम में मोथा जो है बहुत मात्रा में आता है। कभी कभी पूरे खेत में मोथा दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि देखिए, अभी मेरे हाथ में मोथा है, इसकी जड़ें देखेंगे, इसकी जड़ों में गांठे हैं। इसका भोजन जो है ना, इसकी एक मोथा, अगर मोथा ऊपर से कट गया है तो कम से कम ये 15 साल तक जीवित रहता है, क्योंकि इसकी जड़ों में भोजन काफी पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए इसका प्रकोप बहुत होता
2: है। तो मतलब इसको काटना छाटना इसका समाधान नहीं है, इसको जड़ से निकालना पड़ेगा।
1: हाँ, दूसरी बात ये है, आपने कहा ग्लाइफोसेट नामक दवाई से इसका नियंत्रण नहीं होता है। ऐसा कीजिए, जब आप मई के महीने में बहुत गर्मी होती है तो खेत की गहरी जुताई कीजिए, खेत को बिल्कुल नीचे से खोल दीजिए। खोलने से सूर्य की जो गर्मी है उससे इसकी जड़ें जो हैं, इसका भोजन जो है सूर्य की गर्मी के कारण उसको निष्क्रिय हो जाएगा, और 15 दिन बाद आप हल्का सा पानी दे करके उसके अंदर ग्लाइफोसेट नामक दवाई डाल दीजिए। पूरे खेत के अंदर ग्लाइफोसेट की मात्रा जो है, आप 1 किलो लेंगे प्रति हेक्टर 2.5 एकड़ के लिए, और 500 लीटर पानी में ये दवाई का जो घोल बनाकर छिड़काव कीजिए। उससे क्या होगा, जो जड़े हैं, आपने गहरी जुताई से खोली है खेत को, पूरा खेत को आपने फाड़ दिया है, तो ये जड़े ऊपर आ जाएंगी, सूर्य की गर्मी से ये नरम हो जाएंगी, काफी कमजोर हो जाएंगी, और ऊपर से इसका दवाई का प्रकोप होने से इसके अंदर जो है ग्लाइफोसेट चला जाएगा।
2: मतलब ये ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है, पूरा समाधान यही है।
1: हाँ, लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों को ये कहूंगा कि ये सोचें कि 100% नियंत्रित हो जाएगा, नहीं होता, क्योंकि इसकी गांठें जो है ना जमीन में काफी गहरी तक होती है, तो ऊपर की जो गांठें हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो आपको कम से कम लगभग 60-70% तक का निजात आपको मिल सकता है।
0: किसान साथियों, जैसा अभी हम सुन रहे थे मोथा खरपतवार के बारे में, तो किसान साथियों, मोथा खरपतवार जो है, अगर हम अपने झाबुआ की भाषा में बोलें तो इसको डुंगड़ू कहते हैं। ये डुंगड़ा हमें तालाब के किनारे अधिकतर देखने को मिलता है, साथ ही जहां काली मिट्टी में अधिकतर ये देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारी अप्रैल मई जून की जो कड़ाके की गर्मी होती है, उस समय हम हमारे खेत की जुताई कर दें। खेत की जुताई करने से क्या होगा, थोड़ी गहरी जुताई करें ताकि उसमें से इसकी जड़ें हैं, इसकी जड़ें जो बाहर आ जाएगी और अच्छी गर्मी की वजह से वो थोड़ी सी नरम पड़ जाती है, और उस पर हम दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। तो इसका नियंत्रण पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन 70% तक इसका नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही अगर आप भाई अपने हमारे किसान भाई जानते हैं, ये जो अपना डुंगड़ा है, इसके अंदर की जो गांठें होती है वो बच्चे बड़े चाव से इसे खाते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है इसकी गांठें। अगर आप अभी पानी के दिनों में भी इसको आप उसको उखाड़ेंगे तो उसके अंदर की जो गांठ निकलेगी उसको साफ करके अंदर की गांठ खाई भी जा सकती है। आप में से बहुत किसान भाइयों ने इसको इसका टेस्ट लिया होगा, साथ ही कुछ बच्चे भी इसको बड़े चाव से खाते हैं। ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अगर इसको स्वाद से खाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है।

0: जो पक्षी है
1: देखिए उसमें भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, जैसे जैसे हमने अभी बात की खरपतवार की।
0: यस, उसके बाद में पक्षियों की संख्या कम से कम होती जा रही है, हमारे जमीन के अंदर केंचुए खत्म होते जा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय को देखते हुए कि आप सबसे पहले कीट प्रबंधन, कीट आता कहाँ से, कीट जमीन के अंदर से आता है। तो हम ग्रीष्मकालीन जुताई करके नीचे की मिट्टी को ऊपर, क्योंकि कीड़ा जो सोने के लिए जमीन में जाता है, जब उसको उत्पन्न करते हैं तो ऊपर आ जाता है प्यूपा अवस्था में, उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। दूसरा, जब फसल उगाती है 1 फीट की होती है तो इंसेक्ट रस चूसने वाला आता है, उसको रोकने के लिए हमारे पास ये आप देख रहे हैं ये येलो स्टिकी ट्रैप है। अगर आप अपने खेत में जगह जगह लगा देंगे, ये मात्र 10 से 15 रुपए में आसानी से मिल जाता है।
1: दिखाएंगे इसे?
0: जी, इसमें बहुत सारे कीट हैं जो चिपक गए हैं।
1: अच्छा, कीट चिपके हुए हैं?
0: इसमें कीट चिपके हुए हैं और अनगिनत संख्या में ये बहुत सारे कीट हैं जिसे आप देख रहे हैं।
1: अच्छा,
0: 10 रुपए के खर्चा है और हम 1 बीघे लगभग 1/4 हिस्से में हम लोग उसको लगा करके रोक सकते हैं। दूसरा, जैसे ही फसल आगे बढ़ती है, इंसेक्ट आता है फ्लावरिंग स्टेज पर, वहाँ बहुत सारे अंडे दे देता है। उस अंडे को देखने के लिए, यार इंसेक्ट को देखने के लिए एक फेरोमोन ट्रैप है, तरह तरह के फेरोमोन ट्रैप आपके।
1: फेरोमोन ट्रैप का क्या मतलब हुआ डॉक्टर साहब?
0: फेरोमोन ट्रैप का मतलब होता है कि जो जमीन से, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए हमारे समाज में शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, इसी तरह से इंसेक्ट में ऐसा नहीं होता। इंसेक्ट जमीन के अंदर से निकलता है, मादा द्वारा एक गंध छोड़ी जाती है जो नर को आकर्षित करती है। इस फेरोमोन ट्रैप के अंदर आप देख रहे हैं, इस फेरोमोन ट्रैप के अंदर बहुत सारे हैं। यहाँ पर हमने मादा की गंध लगा दी, क्योंकि नर को आकर्षित करने के लिए गंध होती है। इसके अंदर अगर हमने गंध लगा दिया, गंध से नर इस मादा से मिलने के लिए आते हैं। हमने सारे नर को इस ट्रैप के माध्यम से एकत्रित कर लिया।
1: ये तो अंदर कीट है, ये जो दिखाई दे रही मिट्टी जैसा?
0: जी जी जी, मिट्टी जैसे नहीं है, ये कीट है।
1: कीट है,
0: हाँ, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत सारे इंसेक्ट को आप कलेक्ट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं
1: निकाल
0: ये आम की, अमरूद की, ये फल मक्खियां हैं।
1: अच्छा,
0: आम और अमरूद की फल मक्खियां हैं। और आम और अमरूद पर क्या होता है, जैसे अभी बरसात का सीजन आने वाला है तो अमरूद में बहुत ज्यादा इंसेक्ट लगता है। इंसेक्ट पे हम लोग दवाइयां छिड़कते हैं, लेकिन वो मक्खी है ना, मक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, स्प्रे से इसको रोकना बहुत मुश्किल है। हम इस विधि से आसानी से रोक सकते हैं। दूसरा बहुत प्रभावी तरीका,
1: आपने बताया कि इसमें मादा की गंध लगा दी जाती है तो नर्स में, तो इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं।
0: यस, उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें इतना छोटा छेद होता है कि एंट्री तो कर जाता है लेकिन उसमें एग्जिट यानी निकल नहीं पाता है। तो सारे नरों को हम खिट्टा कर लेते हैं, मादा के साथ मिलन नहीं होता है, अंडे नहीं होते हैं और हमारी फसल बिना दवाइयों के सुरक्षित हो जाती है। इसके साथ साथ मैं और बताना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं, कि जैसे अभी अमरूद है, आम चल रहा है, आम में ये बहुत प्रभावी है और अमरूद में एक और छिड़काव कर सकते हैं, उसके साथ चिपकना हुआ पदार्थ जैसे मोलासिस या सीरा थोड़ा सा मिला करके अगर हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे में क्या होता है कि वो चिपक फल पर और पत्तियों पर आ जाती है और वहां जब मक्खी बैठती है तो उसके पंख चिपक जाते हैं और मैनेजमेंट होता है बिना दवाई।
1: बिल्कुल,
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: कुमार जी, धान की फसल जैसे आप जानते हो कि पडलिंग द्वारा रुपाई ट्रांसप्लांटेड से लगाते हैं, सीधी बुआई करते हैं, सीधी बुआई में आज आपकी फसल 15 दिन की है, अब आप उसमें एक दवाई आती है बिस्पारीबैक सोडियम नॉमिनी गोल्ड के नाम से बाजार में बिकती है, आप उसकी 25 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व, 25 ग्राम सक्रिय तत्व 1 हेक्टर के लिए, 2.5 एकड़ के लिए आप लें और उसमें 300 से 350 लीटर पानी में घोल बनाकर अब आपकी जो फसल 15 से 20 या 25 दिन की है, जो सीधी बुआई, सीधी विधि द्वारा बुआई बो रखी है, उसमें आप छिड़काव करेंगे तो सारे खरपतवार जो उग गए हैं वो सारे मर जाएंगे।
1: अच्छा, तो अभी अभी ये कर देना चाहिए ने?
3: हाँ बिल्कुल, 15 से 25 दिन की ये अवधि है दवाई की, बिस्पारीबैक सोडियम जो नॉमिनी गोल्ड के नाम से बाजार में बिकती है।
1: हाँ हाँ, राजवीर जी, लेकिन कई जैसे हम देख रहे हैं कुछ जगह पर बारिश भी हो रही है काफी, तो उसमें भी कुछ बताना चाहेंगे किस समय पर करें?
3: नहीं देखिए, ऐसा है जब बारिश का मौसम है, मैं

0: किसान भाइयों को एक हिदायत दूंगा कि कोई भी शाकनाशी, कोई भी हर्बिसाइड खरपतवार को मारने के लिए प्रयोग करें तो सबसे पहले मौसम का मिजाज जरूर देख लें
1: जी।
0: अगर मौसम में बारिश होने वाली है एक दो घंटे में या लग रहा कि बारिश होगी तो दवाई का छिड़काव ना करें, क्योंकि आप अगर आपने दवाई छिड़की और एक घंटे में या 15 मिनट में या एक दो घंटे में बारिश हो गई तो सारी दवाई साफ होकर के एक इकट्ठे एक खेत के एक कोने में रुक जाएगी, जिससे आपको नुकसान होगा और दवाई का फायदा जो होना चाहिए किसान को वो नहीं होगा। तो दूसरा, हवा का जो प्रकोप है, हवा का जो बहाव है, उसमें भी मौसम का बहुत जरूरी है। तेज हवा नहीं चलनी चाहिए, मौसम शांत होना चाहिए, सुबह 10 बजे का समय नहीं होना चाहिए, 11 से 1 के बीच में आप दवाई का छिड़काव करें तो अच्छा, उसमें उस पर दवाई का प्रभाव अच्छा होता है और खरपतवारों के अंदर जो है दवाई अच्छी तरीके से चली जाती है, जिससे उनका नियंत्रण होना संभव अच्छी तरह संभव हो जाता है।
1: ठीक है, अब बात कर रहे थे राजेंद्र जी से। राजेंद्र जी, जैसे कि आपने स्टिकी पैड दिखाया, फर्मेंट ट्रैप आपने दिखाया, पता है कैसे काम करता है। मैं कुछ और भी देख रही हूँ कि ये एक आप ये देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब जैसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्या है?
2: ये किसान भाइयों, आपने सुना होगा ट्राइकोग्रामा।
1: हम इसको अभी
2: परजीवी
1: जी जूम करके दिखाते हैं, क्या है ये?
2: ये ट्राइकोग्रामा अंड परजीवी है। आप इसे अपनी भाषा में समझ सकते हैं छोटा ततैया यानी टिनी वाष्प, जैसे आपने घरों में खेतों में पीले वाला ततैया देखा होगा, ये उसी परिवार से संबंध रखता है, बस शर्त एक ये छोटा है और वो बड़ा है।
1: जैसे उसके अंदर है,
2: यस इसके अंदर है, आप देख सकते हैं मूवमेंट कर रहा है, बहुत अधिक संख्या में इसको मूवमेंट कर रहा है। और इसमें आप देखेंगे ये अंड परजीवी जैसे आप समझते हैं हमारी फसल में बहुत ज्यादा संख्या में हानिकारक कीड़ों द्वारा अंडे दिए जाते हैं, उनके अंडे से सुंडी निकलती है, उस सुंडी को मारना के लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो उचित नहीं है। अगर हम अपने खेत में मॉनिटरिंग फिरोमोन ट्रैप से पता कर लेंगे कि हमारा हानिकारक कीट का जो एडल्ट है, जो ततैया वो है, वो उसमें आ जाएगा, जैसे मोथ है, जैसे तितली है, अंडे दे देगी और वो हमें फिरोमोन ट्रैप से पता लग जाएगा। ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की एक विधि है। उसके अंदर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में आएंगे। ये अंड परजीवी को हम अपने खेत में 15 से 20 दिन के अंतराल पर छोड़ते रहेंगे।
1: तो कहाँ से मिलेंगे परजीवी ये वाले?
2: ये परजीवी क्या करेगा कि उसके अंडे में उसको परजीवित कर देगा, तो परजीवित करने के बाद में जो उसके पीले रंग का पदार्थ होता है अंडे के अंदर, तो उसको ये खा लेगा। जो सुंडी से लार्वी निकलनी थी, फिर वो लार्वी नहीं निकलेगी, फिर इसके अंदर से ये ततैया निकलना शुरू हो जाएंगे। और एक जो ट्राइकोग्रामा अंड परजीवी है, ये एक से लेके 10 तक अंडों को परजीवित करता है, और फिर उस अंडे से जो एक लार्वी निकलनी थी, लार्वी नहीं निकल करके फिर 2 से 19 तक उसमें से परजीवी निकलते हैं। और आप इसको देख सकते हैं बहुत ही माइन्यूट संख्या में घूम रहे हैं हमारे किसान भाई, देख सकते हैं। और अब ये काफी जगह आसानी से मिल जाता है, हमारे किसान भाई इसको समय समय पर इसको इस्तेमाल करें, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं, देखिए अभी और ये जीवित है, बहुत छोटे छोटे से हैं, अभी आपको शायद नहीं दिखाई देंगे क्योंकि देखिए ये ग्लास का है और बिल्कुल, तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
2: और इनकी जो लगाने के लिए, थैंक यू मैडम, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे जो दर्शक हैं, ये ट्राइको कार्ड के रूप में।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: कि धान की फसल में सबसे पहले लगाने के 15-20 दिन बाद तना छेदक आता है, पत्ती मोड़क कीट आता है और गंदी बग आता है, बहुत सारे फिर हॉपर भी आते हैं जैसे GLH है, इस तरह के आते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो किसान भाई हैं, एक तो तना छेदक जो बीच में गोब खींचते हैं तो आसानी से खिंच आती है, वहां के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा ट्राइको कार्ड है,
1: ट्राइको कार्ड
2: 1 एकड़ में दो लगते हैं, जिसमें एक एकड़ में लगभग 20,000 अंड परजीवी होते हैं जिन्हें हम एक एकड़ में इस्तेमाल करते हैं।
1: इतना सा ये पूरे एक एकड़ में काम करेगा?
2: इसमें लगभग एक में 20,000 होते हैं और दो में 40,000 हमारे परजीवी होते हैं। इन परजीवी एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसे लगाने का तरीका यह है कि खेत से 2 मीटर अंदर जाके लगाएं, क्योंकि अगर हमने किनारे पे लगा दिया तो दूसरे के खेत में चले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि सलाह सभी को दिया जाए, जैसे कि हम सभी को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये मात्र 45 रुपए का हमारे कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल में मिलता है, जिसे 2 लगाने 90 रुपए का खर्चा है। और 2 से 3 बार धान की फसल में लगाएंगे तो तना छेदक और पत्ती मोड़क कीट नहीं लगेगा। अच्छा। हम आईपीएम की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पत्ती मोड़क जो कीट है, पत्ती मोड़ के और एक जाला बना करके उसके अंदर बैठ जाती है सुंडी, लेकिन हम ऊपर से स्प्रे करते हैं, जब ऊपर से स्प्रे करते हैं तो वो तो नीचे है लेकिन सुंडी मर नहीं पाती है। मैं यहाँ बिना दवाइयों के बहुत अच्छा एक तरीका बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे पत्ती मोड़ करके जो सुंडी बैठी हुई है, 10 मीटर की रस्सी हमारे किसान भाई यूं ही घुमा दें और पानी भरा हुआ है, उस सुंडी को जैसे डिस्टर्ब करेंगे, रस्सी से हिलाएंगे तो सुंडी नीचे गिर जाएगी और जैसे ही पानी के संपर्क में सुंडी आएगी वो मर जाएगी। बिना दवाई के इलाज है। इसी तरह से अगर एक बहुत खतरनाक कीड़ा जब हमारी धान की फसल पकने को आती है तो वहाँ एक गंदी कीट आता है, और गंदी कीट जब आता है कि पहले वो खेत के चारों तरफ जो मेड़ होती है उसमें खरपतवार होता है, वहां पर पहले वो अंडे देता है, उसके बाद वो खेत में जो धान की फसल दूधिया उस अपने पीरियड में आती है जब धान की फसल पकने को होती है जी, जी। तो रस चूसता है, रस चूसने के बाद में वो उसको सारा बाली को सफेद कर देता है, जो दाली दाना पकने को होता है उसको काला कर देता है। यहाँ पर जब वो कीट आता है तो एक अजीब सी गंध आती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि डस्ट करते हैं, बहुत सारे स्प्रे करते हैं। वहां स्प्रे और डस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जैसे नाम से आप जानते हैं गंधी कीट, उस गंदी कीट को नियंत्रण करने के लिए हम अपने किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि एक गंध जैसा ही पदार्थ उस खेत में छिड़काव किया जाए, जैसे 2 से 3 किलो लहसुन को कुचल के और उसको आप अपने खेत में पानी में के साथ छिड़काव कर दें, एक एकड़ में उस समय लगभग 150 लीटर पानी लगता है, वो उस गंध से दूर भग जाएगा। दूसरा बड़ा आसान सा तरीका है, क्योंकि उस समय थोड़ा सा फसल पकने को होती है तो थोड़ा हमारे किसान भाई विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर एक थोड़ा सा आग जला दें और आग जलाने पर वो गंदी कीट रोशनी की तरफ बहुत ज्यादा आता है। ऐसा करें, थोड़ा सा आग को एकदम जब घर आए तो बिल्कुल खत्म करके आए। तीसरा, वहां पर लाइट ट्रैप और फिरोमोन ट्रैप की जैसे हम बात कर रहे हैं, सॉरी लाइट ट्रैप और स्टिकी ट्रैप की बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ लाइट ट्रैप लगाएंगे वो गंदी कीट लाइट पर बहुत आता है और यहाँ आकर के वो चिपक जाता है। इसके साथ साथ वहां पर ये अंड परजीवी भी बड़ा प्रभावी ढंग से इस पे काम करता है। इस तरह से हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि ये सारी विधियों को मॉनिटरिंग के आधार पर अपने खेत में इस्तेमाल करें, दवाइयां डालने की कोई आवश्यकता।
4: हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी हमें डॉक्टर साहब ने बताया, हमें अनावश्यक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस अनावश्यक दवाइयों के प्रयोगों से न केवल हमारी मिट्टी परंतु हमारा वातावरण भी खराब होता है। किसान साथियों, आप आसानी से इसे घर पे भी बना सकते हैं, साथ ही लहसुन को कूच कर भी इसकी दवाइयां बना सकते हैं। आदि जो जैविक दवाइयां हैं उनका प्रयोग हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और रासायनिक जितनी भी दवाइयां हैं उनसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनसे हम जितना हो सके दूर रहें और अनावश्यक खर्चों से बचे रहें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण के बारे में हम सुन रहे थे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हमें कुछ किसानों ने सोयाबीन में खरपतवारों को नियंत्रण करने हेतु आग्रह किया था कि हम कैसे सोयाबीन के खरपतवारों को हम नियंत्रण कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं और लेते हैं इसमें एक्सपर्ट की राय।
0: हाँ, सोयाबीन की फसल का अभी टाइम आ रहा है या लगा दी होगी, जुलाई के 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में सोयाबीन की फसल लगाई जाती है। जब फसल लगाने के 1 या 2 दिन बाद जो है आप इसमें एक पेनिसिलिन दवाई आती है, पेनिसिलिन कई नामों से बाजार में बिकती है, उसकी एक किलो मात्रा लें और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर सोयाबीन के लगाने के एक या दो दिन बाद जो है छिड़काव कर दें खेत में। अगर पेनिसिलिन ना मिले तो एक दवाई आती है मेट्रीविजिन, मेट्रीविजिन कई नामों से बिकती है बाजार में, उसकी मात्रा सिर्फ 200 से 250 ग्राम। देखिए मेट्रीविजिन बहुत तेज दवाई है, इसकी मात्रा मैं दोबारा बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को, 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टर, प्रति हेक्टर का मतलब है 2.5 एकड़, और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर सोयाबीन की बुआई के एक या दो दिन के अंदर किसान भाइयों का इसका समान रूप से खेत में छिड़काव करना है। और उसके बाद जिन किसान भाइयों की फसल, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि अगर सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की हो गई है, तो उसमें भी वो खरपतवार नाशी का प्रयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए दवाई दूसरी है जिसका नाम है एमेजेदाफायर। एमेजेदाफायर नाम की दवाई आती है जिसकी मात्रा 50 से 70 ग्राम। देखिए आजकल जो है दवाइयों की मात्रा ग्राम में आती है, किलो में प्रयोग होने वाली दवाइयों का समय अब चला गया, तो 50 से 70 ग्राम एमेजेदाफायर दवाई को आप लीजिए एक हेक्टर के लिए, और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर जब आपकी सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की हो या 25 दिन की हो, अगर 30 दिन की भी हो गई है, तो उसमें भी एमेजेदाफायर नामक दवाई का प्रयोग करके किसान भाई सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण आसानी से कर सकते।
4: जी हाँ किसान साथियों, जैसे कि अभी हमने डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अगर आपकी सोयाबीन की फसल अभी छोटी है, 10 दिन की है, 15 दिन की है, या 15 से 20 दिन की, या 20 से 30 दिन की है, तो हमें अभी हम उस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हमें यह बहुत ध्यान देने की जरूरत है किसान साथियों कि हम क्या करते हैं कि ज्यादा कीट दिख

0: दवाई जो है 1 किलो मात्रा लें 2.5 एकड़ के लिए, 1 हेक्टर के लिए, और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर जब मूंग और मूंगफली दोनों लगा दी हैं खेत में, सोइंग कर दी है उनकी, सोइंग के 1 या 2 दिन बाद छिड़काव कर दें, क्योंकि ये दवाई दोनों फसलों के लिए कंपेटेबल है, दोनों फसलों के लिए सिलेक्टिव है, ये खरपतवारों को मारेगी और फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: ये बहुत बढ़िया है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। तिल की खेती के बारे में मैं बताऊंगा। पेंडीमिथ्रिन दवाई तिल की खेती के लिए उपयुक्त है। जब आप तिल की बुआई कर दें, सोइंग कर दें, सोइंग करने के 1 या 2 दिन बाद जो है पेंडीमिथ्रिन दवाई आप 1 किलो दवाई जो मैं आपको पहले ही बताया, 1 किलो दवाई 500 लीटर पानी में 2.5 एकड़ के लिए आप इसका छिड़काव कर दें तिल के और खरपतवारों के जमने से पहले। पेंडीमिथ्रिन का प्रयोग जो भी किसान भाई करें, जिस भी फसल में करें, फसल के उगने और खरपतवारों के उगने से पहले दवाई खेत में छिड़की होनी चाहिए।
2: अच्छा,
0: ये विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, आपने कहा कि हमको ये दो पेंडीमिथ्रिन है कहाँ से सस्ती मिले, देखिए
2: नकली बता रहे कहीं मिल जाती है ये।
0: बिल्कुल सही बात है। आप जो है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कई जगह कोऑपरेटिव सोसाइटीज की दुकानें हैं, जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं कई कंपनियों के, पेंडीमिथ्रिन आज कम से कम 10-12 कंपनियां बनाती हैं। आप ऑथराइज्ड डीलर के पास जाइए और पेंडीमिथ्रिन जब खरीदेंगे तो उसका ओरिजिनल बिल लीजिए। देखिए बाजार के अंदर स्पूरियस मटेरियल नकली दवाइयां बहुत फैल रही हैं, जिसके कारण खरपतवार समय से जब छिड़काव करने से नहीं मरते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों का नुकसान भी होता है और फसल पे भी उसका नुकसान हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो आप बिल जरूर लीजिए और ऑथराइज डीलर से ही।
3: जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने एक्सपर्ट की राय में सुना, बहुत सारी फेक कंपनियां चल रही है जो कि आपको फेक दवाइयां दे सकते हैं, फेक दवाइयां मिल सकती है। इसीलिए हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। हमें हमारे पर्यावरण को, हमारी ज़मीन को और हमारी पूंजी जो हम खेतों में लगा रहे हैं वो अनावश्यक ना जाए, उसे अनावश्यक ना बहाएं। उसे आप केवीकी के माध्यम से भी, आप केवीकी में जाकर वहाँ भी आप अपने जिले से, अपने पास के ब्लॉक से आप वहां पर मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जो ऑथराइज दवाई है उसी को ही आपको लेना चाहिए और फालतू में हमें मार्केट से दवाई लेके जो अनावश्यक लागत लगती है उससे हमें बचना चाहिए। साथ ही वो ऑथराइज भी नहीं होती है कहीं कहीं पर, तो हमें इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो दवाइयाँ हम हमारे खेतों में डाल रहे हैं उसका प्रयोग हमें, ये जो दवाइयाँ हैं ये ना केवल हमारे पर्यावरण को बल्कि हमारी कृषि भूमि को भी दूषित करती है, साथ ही हमारी फसलों में जाती है, जिस फसलों को हम खाते हैं तो उसमें भी काफ़ी प्रभाव देखा जा रहा है। तो किसान भाइयों, यहाँ हमें बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है इस दवाइयों का प्रयोग करने से पहले।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना जो कि खरपतवार से संबंधित थी। आपने जाना कैसे खरपतवार का प्रबंध किया जाता है अलग अलग फसलों के साथ, अलग अलग फसलें जिनमें हम मिश्रित खेती को लेकर भी हमने चर्चा की थी। साथ ही हमें कीटों को कीटों से कैसे हम बच सकते हैं, साथ ही हमें अलग अलग प्रकार की जो खरपतवार घास है उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आज

0: अपने जाना। किसान साथियों, अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः मुलाकात होगी कल इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में रेडियो टंडियाबिल 90.8 FM के साथ।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंडियाबिल रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। आज के कलाकार का ये मंच दोस्तों, आप जानते हैं, नए कलाकारों का है, नए गायकों का है, नई प्रतिभाओं का है। और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं चंद्रकांत कांबले जी। बाकी चंद्रकांत अपने बारे में खुद बताएंगे। चंद्रकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए ना, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं?
1: सर, मैं पुणे में रहता हूँ, धायरी में, और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, कस्टमर केयर में, विप्रो में।
0: ओके, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने सुना कि चंद्रकांत जी पुणे में हैं, किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, एम आई राइट चंद्रकांत जी?
1: हाँ सर।
0: ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को चंद्रकांत जी के ही गाए हुए इस बहुत ही प्यारे से गीत से।

0: बहुत बढ़िया चंद्रकांत जी, चलिए हमें बताइए ना कि आप जब छोटे थे, जब बचपन में, तो आप क्या बनना चाहते थे?
1: वैसे तो मैं वकील बनना चाहता था।
0: ओके।
1: लेकिन पिताजी का ये था कि वकील बनो, घर में सब टीचर एक है, इंजीनियर है, तो कोई अलग। तो वकील बनने के लिए पढ़ाई भी किया मैं थोड़ा बहुत, फिर बीच में ही पिताजी का निधन हो गया ना, तो मेरा पढ़ाई वही रुक गई थोड़ा।
0: ओके ओके ओके ओके, कोई बात नहीं।
1: उसके बाद मैं हाँ
0: जी, उसके बाद?
1: उसके बाद मैं ग्रेजुएशन किया फिर मैंने।
0: ओके,
1: हाँ, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हबीबपुर में आ गया मैं।
0: बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारे हमारे जिंदगी में कई चीजें विधाता तय करता है, कई डेस्टिनीज होती हैं जो हम फॉलो करते हैं, कई बार जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान हमको वो नहीं देता जो हमको अच्छा लगता है, भगवान हमको वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसलिए जो कुछ भी मिला है वो बहुत अच्छा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत चंद्रकांत जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। चंद्रकांत जी, मुझे बताइए ना, आपके बचपन से लेकर अभी तक में की जिंदगी में आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: मेरे फेवरेट टीचर थे एस पाटिल सर, जो इतने अच्छे थे ना, वो जो जितने भी गरीब लोग है ना, जितने भी, उनको मुफ्त में पढ़ाते थे। ट्यूशन रहता था तो पूरा मुफ्त में पढ़ाते थे वो, इसलिए वो मेरे सबसे फेवरेट है, क्योंकि मार भी बहुत पड़ती थी और वो बहुत स्टिक भी बहुत थे।
0: अरे वाह,
1: उनकी वजह से तो हम अच्छे पढ़ पाए, नहीं तो हमारा अच्छा पढ़ना पॉसिबल नहीं था।
0: आपने ठीक कहा चंद्रकांत भाई, किसी भी शिक्षक का या टीचर का उद्देश्य होता ही यही है कि उसके सानिध्य में, उसके अंदर जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो बेहतर पढ़ ही जाए। कोई टीचर इस दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो ये चीज ना चाहता हो, और उसके लिए उसको अगर थोड़े से कड़े कदम उठाने पड़ते भी हैं तो दिली इच्छा उनकी यही होती है कि बच्चा पढ़े और अच्छी राह पे चला जाए। बहुत खूब। तो दोस्तों आइए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत, जो मैं चंद्रकांत जी के ही टीचर को डेडिकेट करना चाहूंगा। चलिए सुनते हैं।

0: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी गायकी। चंद्रकांत भाई, मुझे ये बताएं ना, ऐसे कौन से तीन शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो आपको सबसे अच्छा बयान करते हैं, आपको डिस्क्राइब करते हैं? अगर तीन शब्दों को कहा जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ओके, हम चंद्रकांत जी के बारे में बात कर रहे हैं।
1: मेरे तीन शब्द, एक है ईमानदारी, दूसरा है कृतज्ञता और तीसरा है मदद करना
0: जी।
1: तो ईमानदारी ऐसा है कि जिंदगी में ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। एक अंदरूनी खुशी मिलती है ईमानदारी, क्योंकि बचपन से पिताजी भी बहुत ईमानदार थे, पहले से
0: जी
1: क्लास वन ऑफिसर थे, लेकिन पूरा ईमानदार थे। वही हमारे अंदर गुण आ गए सब भाइयों के। और कृतज्ञता यानी धन्यवाद बोलना चाहूंगा सबको, क्योंकि मेरे जिंदगी में जो भी लोग आए ना, मैं सबको कृतज्ञता करता हूँ, यानी धन्यवाद परोपकार उतनी चाहिए ना धन्यवाद बोलने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मदद, हेल्पिंग, कैसा है कि हेल्पिंग पीपल, जो हेल्प करने से जो समाधान मिलता है ना, वो खुशी जो मिलती है, इंटरनल हैप्पीनेस, वो किसी में नहीं, अलग ही खुशी मिलती है वो हेल्प करने से।
0: बहुत सही बात कही आपको, बहुत बहुत अच्छी बात कही। किसी की भी मदद करने से जो खुशी मिलती है, वो कितने भी बहुत सारे पैसे खर्च करके कोई चीज खरीदने में कभी मिल ही नहीं सकती। बहुत बहुत प्यारी बात कही आपने। दोस्तों चलिए फिर हो जाए इसी बात पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत चंद्रकांत जी की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। चंद्रकांत जी, आपको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी हॉबीज क्या हैं? गाना गाने के अलावा बताइएगा।
1: हाँ, गाना गाने के अलावा मैंने क्रिकेट बहुत खेला है। क्रिकेट खेलना देखना पसंद करता हूँ
0: जी।
1: मूवीज देखना पसंद करता हूँ, न्यूज देखता हूँ और प्ले देखता हूँ। नाटक जो होते हैं ना,
0: जी जी
1: वो प्ले थिएटर में जो नाटक होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो ज्यादा पसंद है, वो देखता हूँ बहुत सारे।
0: तो हमें
1: मराठी
0: कौन से
1: हमारे
0: ना?
1: यहाँ के,
0: अच्छा, मराठी नाटक।
1: हाँ मराठी नाटक हमारे यहाँ के जो होते हैं ना,
0: तो अपने कुछ
1: मैं वो थोड़ा
0: फेवरेट
1: बहुत देखते
0: मराठी
1: हैं बहुत
0: नाटकों
1: ज्यादा।
0: के नार
1: हाँ, नट सम्राट है जैसे, वो दिखा है
0: जी
1: हिस्तर प्रेमाची खरी गम्मत है,
0: जी
1: एका लग्नाची दुसरी गोष्ट, ऐसा दो चार नाटक है ना, वो
0: ओहो।
1: बहुत पसंदीदा है।
0: और आपकी सबसे पसंदीदा मूवी कौन सी है?
1: मूवी तो
0: क्या
1: दिल वाले दुल्हे जाएंगे शायद
0: बात
1: देखते
0: है,
1: भी
0: बहुत
1: देखते
0: बढ़िया। दिल वाले
1: हैं
0: दुल्हनिया ले जाएंगे।
1: रोमांटिक मूवी देखते हैं,
0: क्या
1: थोड़ा
0: बात है।
1: अर्थिन वाला वो भी देखते हैं, पुराने
0: आहा,
1: वाला
0: आहा।
1: सेंसिटिव रहता है ना, आर्ट फिल्म जैसे होती है वो भी अच्छा लगता है मुझे,
0: जी
1: टच होते हैं
0: जी जी जी जी बहुत
1: वो भी
0: बढ़िया,
1: देखते
0: बहुत
1: हैं।
0: बढ़िया। दोस्तों, आपने सुना, चंद्रकांत भाई बहुत संजीदा, बहुत सेंसिटिव इंसान है। रोमांटिक भी है और मराठी नाटक बहुत पसंद करते हैं। तो जिनमें जिन कंटेंट में, जिस भी कंटेंट में थोड़ा मीनिंग होता है, थोड़ा संजीदापन
1: हाँ
0: होता है, वो चंद्रकांत भाई को पसंद है। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों एक प्यारा सा गीत चंद्रकांत जी की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया चंद्रकांत, मुझे ये बताएं मेरे भाई कि कई बार होता है हमारी चलती हुई जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, कुछ लोगों के मैनरिज्म में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमारा मूड खराब हो जाता है। लोगों के व्यवहार में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो जाता है?
1: मूड ऐसा है, मूड खराब नहीं होता, मैं क्या करता हूँ, बाधा तो आती नहीं, लेकिन दिल से जो चाहते हैं ना, वो जो मांगते हैं सच्चे दिल से वो मिल ही जाता है वैसा मुझे। लेकिन मूड में थोड़ा सहमा सा रहता हूँ, यानी ऐसा
0: मतलब आपके कौन सी बाधाएं आ जाती हैं ऐसी जो आपकी खुशी को खराब कर देती हैं?
1: खुशी को खराब करने वाली कोई बाधा नहीं आती है ऐसे,
0: ओके।
1: मैं थोड़ा समझ के लेता हूँ उन दूसरों के वो फीलिंग्स को।
0: जी ठीक कहा आपने, ठीक कहा, मतलब ये समझदारी तो दरअसल इसी में है चंद्रकांत भाई की, अपनी खुशी को हम किसी और को ना सौंपें, कोई भी आकर हमारी खुशी को यूं ही खराब करके कैसे जा सकता है। सही कहा,
1: हमारी वजह से दूसरों का दिल ना टूटे यही देखता हूं मैं।
0: जी
1: थोड़ा हम सह लेते हैं दुख,
0: क्या
1: उनके जीवन में खुशी आ जाए।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात कही। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर एक बहुत प्यारा सा ही गीत सुनते हैं चंद्रकांत जी की आवाज में ही।

0: बहुत प्यारा गीत। चंद्रकांत भाई, मुझे ये बताइए ना, आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि आज तक की डेट में क्या रही?
1: हाँ, वो मैं कॉलेज में फर्स्ट प्राइज मिला था सिंगिंग कंपटीशन में
0: जी।
1: वो मैं कॉलेज में था ना, तब मिला था मुझे, वो मेरा पहला फर्स्ट वाला ही है। उसके बाद मैंने क्रिकेट बहुत खेला था, तो क्रिकेट में फर्स्ट नंबर आता था। हम ग्रुप में खेलते थे ना, तो टीम रहती थी हमारे गाँव में, तो बहुत सारे ट्रॉफी जीते वहां हमने।
0: ओके,
1: हाँ,
0: तो ये आपकी

0: जिंदगी की कुछ गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं जिन पर आपको सचमुच बहुत गर्व है।
1: हाँ,
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, चंद्रकांत जी की इन गौरवपूर्ण उपलब्धियों के ही नाम ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया चंद्रकांत भाई, क्या आप सपनों में विश्वास रखते हैं? जो रात को देखते हैं वो सपने, और जो खुली आंखों से देखे जाते हैं पूरे करने के लिए वो सपने?
1: हाँ हाँ, रात के सपनों में इतना विश्वास नहीं, लेकिन जो खुली आंखों से देखता हूँ ना
0: जी,
1: उस पे मेरा विश्वास है। क्योंकि सपना पूरा करने में अगर ईमानदारी से काम मेहनत करे ना, तो सपने पूरे हो ही जाते हैं, और वो यूनिवर्स को देना ही पड़ता है, मेरा विश्वास है ऐसा।
0: वाह क्या बात है, क्या
1: अच्छे
0: बात
1: दिल
0: है।
1: से मांगेंगे ना तो मिल जाता है।
0: वाह बहुत बढ़िया बात कही, सच्चे दिल से मांगे तो मिल ही जाता है, यूनिवर्स को देना ही पड़ता है। बहुत बढ़िया, तो चलिए दोस्तों हो जाए फिर इसी बात पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत चंद्रकांत जी की आवाज में।

0: चंद्रकांत भाई, आज तक की जिंदगी में आपको सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिला है और किसने दिया है?
1: सबसे अच्छा गिफ्ट तो मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे बेटी का जन्म मेरी बेटी का जन्म हुआ ना, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है।
0: दैट्स वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जाहिर से बात है, आपकी जिंदगी रोशन हुई होगी, सज गई होगी, ये बहुत प्यारी बात है। बहुत बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, चलिए फिर आगे चलते हैं और चंद्रकांत जी की आवाज में सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। चंद्रकांत भाई, क्या आपने कभी कोई छोटी मोटी चीटिंग की है? कभी एग्जाम में या दुकान पर कुछ मिठाई लेकर खा ली हो, घर पे कुछ मिठाई खाई हो, समथिंग लाइक दैट?
1: नहीं, एग्जाम में तो कभी नहीं किया। जो भी है ईमानदारी से ही किया है। जो भी मार्क मिले वो अंदरूनी खुशी अलग ही होती है। जो ईमानदारी से किया ना, वो कितना भी कम भी मार्क पड़े तो अपना अपना खुद का ईमानदारी से किया होता वो अच्छा ही लगता है।
0: जी
1: वो खुशी नहीं मिलती फिर ऐसा खाने के पास। हम सब, मेरा पहला सही वसूल है, मेरे माँ कहती थी ना, एक तिल 7 जन्मे बांटू, छोटा सा
0: ओके
1: तिल। तो
0: ओ
1: वही हमारा गुण है हमारे सर, क्यों हम मिल बांट के खाते थे। ऐसा चोरी चुकी कुछ खाया ऐसा कुछ किया नहीं ज्यादा जिंदगी में
0: ओहो,
1: ऐसा कुछ।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं तो इस सवाल को पूछने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा होता है कि हमारे दिल में कोई छोटा सा बच्चा होता है जो कभी एक टॉफी ज्यादा खा ली, या एक पेस्ट्री ज्यादा खा ली, या एक रसगुल्ला, वो छोटा सा बच्चा खेलता रहता है, उसको जानने की इच्छा के चलते ये सवाल पूछते हैं। लेकिन बहुत सुंदर आपने कहा, आपकी माँ कहती है कि एक तिल को भी 7 लोगों में बांट के खाओ, क्या बात है, बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक बहुत ही प्यारा सा गीत चंद्रकांत जी की आवाज में।

0: चंद्रकांत जी, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह पर आ गए हैं जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के साथ कुछ बात कीजिए, कुछ संदेश दीजिए उनको।
1: हाँ, वही, सदा खुश रहिए, स्वस्थ रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे, दया कृपा प्रेम बांटते रहे, सब हंसी खुशी जिए बस।
0: क्या बात है जी, बहुत ही क्यूट, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही सच्चा सा संदेश। दोस्तों, आपने सुना, चंद्रकांत कांबले जी कितनी खूबसूरती से आप सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। चंद्रकांत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: आइए दोस्तों, आज की टैलेंट, आज की प्रतिभा, आज की सिंगर, बहुत मजा आने वाला है उनसे बातचीत करके, उनसे कुछ सीख के और उनके संगीत का लुत्फ उठा के। हमारे साथ हैं चित्रा मैडम। बाकी मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं हूं, आई एम नॉट अ पोजिशन टू यू नो डिस्क्राइब हर, तो मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा। चित्रा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज हमारे सारे सुनने वालों को आप ही बताओ, कौन हो आप, कहाँ हो आप, क्या करते हो आप?
1: थैंक यू सो मच सवे जी, आई एम सो एक्साइटेड कि आई विल बी ऑन दिस शो। वेल टू नो मी, यस एज यू सेड आई एम चित्रा। मैं एक एजुकेटर हूँ स्कूल में एंड आई एम ऑल्सो अ को करिकुलर कोऑर्डिनेटर। सो आई डील विथ चिल्ड्रन एंड आई एम इन द प्रोफेशन दैट इन्वॉल्व्स बीइंग विथ वेरी यंग माइंड्स। सो आई बिलीव दैट कीप्स मी वेरी I would say very young at heart, and so that I am in Bangalore. Sangeet ki taraf se dekha jaye to I have learned classical for over 8 years. Lekin kahin na kahin zindagi mein there was a pause, and now I have decided to take it on with a little more interest and with giving it a little more time. And so that's what has brought me here.
0: Wow! Thank you so very much. Thank you so very much, Chitra ji. दोस्तों आपको मालूम है, एक चीज मेरे को सुनाई दी जो चित्रा जी ने अपने परिचय में बताई कि वो एजुकेटर हैं और साथ साथ ही कैरिकुलम एक्टिविटी, डिफरेंट कैरिकुलम एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर भी हैं। आई परफेक्टली अंडरस्टैंड, जो कैरिकुलर एक्टिविटीज होती है स्टूडेंट्स की, वो होती है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, जो कि हर टीचर का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बहुत हार्ड स्किल्स सिखाते रहते हैं। चलिए, इससे पहले कि हम लोग चित्रा मैम को और थोड़ा सा परेशान करें, उनके बारे में बताने के लिए कुछ सवाल पूछें, एक बार रुकते हैं, थोड़ा सा उनका म्यूजिक का मजा ले ले और फिर आगे बढ़े। लीजिए, पेश करता हूं ये गीत जो चित्रा मैम ने खास हमारे लिए बनाए।

0: बहुत बहुत ही सुंदर शुरुआत। चित्रा मैम, आपने कहा कि आप एजुकेटर हैं, ऑलराइट, और आपने ये भी बताया कि आपने क्लासिकल म्यूजिक की भी थोड़ी सी तालीम हासिल की। थोड़ा सा छेड़ते हुए आपको पूछना चाहूंगा मैम, बीइंग एन एजुकेटर, मतलब कि एक तरीके से कहा जाए तो समझें कि हम हलवाई हैं जो कि मिठाइयों में डील करता है, करेक्ट?
1: बिल्कुल।
0: सो हाउ ऑफन डू वी ईट आवर ओन स्वीट्स? सो इस बात को बता के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एजुकेटर हैं तो यू आर इन द बिजनेस ऑफ यू नो टीचिंग, रीडिंग, राइटिंग। Am I right, ma'am?
1: Absolutely.
0: आपको ये बात कितनी इम्पोर्टेंट लगती है कि किसी भी एजुकेटर को साल में कुछ टारगेट बना के 5-6 बुक्स पढ़नी चाहिए, बिकॉज दे आर इन टू दैट बिजनेस ओनली?
1: Absolutely. I think books हो, magazines हो, basically I think as an educator, हर एक इंसान को, ना ही सिर्फ एक एजुकेटर को, आई थिंक बहुत जरूरी है अपने आप को अपडेटेड रखना। एंड आई थिंक नथिंग बेटर देन गेटिंग इनटू बुक्स, गेटिंग आई मीन रीडिंग। बट समवेयर आई थिंक ओवर द इयर्स देखा जाए तो विथ यू नो विथ टीवी, ओटीटी सब देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो रीडिंग हैबिट जो है वो एक बैकसीट ले चुका है। And in fact, even number of writers we see are, you know, not as many as we would like. So definitely reading, or not for anything else, I think apni man ki shanti ke liye, even if not, there are, while we have different genres, I think whether it is fiction, whether it is apni hi industry mein updated rehna, anything requires a lot of reading, requires you know updating yourself. So reading, writing aur apne is system ko, I think ye jo brain aur ye hand, ye sab coordination jo hai na, bahut important hai ki hum likhte rahe, hum sochte rahe. So I think nothing better than reading, writing and all this for any normal person, not just an educator. I think it's for everybody.
0: बट मुझे ऐसा लगता है जितना मैम एजुकेटर के लिए तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दे आर इनटू दैट बिजनेस ओनली, राइट मैम?
1: वी आर लेकिन होता क्या है ना, बट वी एंड अप वेदर इट इज इन आवर ओन फील्ड, वी डेफिनेटली आर इनटू इट और हम करते ही रहते हैं, वी आर ऑलवेज इनटू इट, वी आर रीडिंग, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज वी सी देयर इज ऑलवेज अपग्रेड, देयर इज ऑलवेज न्यूअर थिंग्स कमिंग अप विद ईच पासिंग ईयर। तो वो देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ स्कूल रिलेटेड, इन टर्म्स ऑफ हमारा जो सब्जेक्ट है उस रिलेटेड, तो डेफिनेटली वी आर ऑलवेज यू नो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग। आई थिंक वी लर्न मोर देन व्हाट वी टीच ऑन अ डेली बेसिस, लेकिन बियॉन्ड दैट ऑल्सो डेफिनेटली फॉर एवरीबॉडी आई थिंक रीडिंग इज समथिंग दैट इज डेफिनेटली से डज अ लॉट टू योर थिंकिंग।
0: Right, ma'am. So this is extremely important and ये जो question मेरे दिमाग में आया दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है, गलत ना समझिएगा, मैं किसी इंजीनियर से इंजीनियरिंग की ही बात तो करूंगा, किसी टीचर से टीचिंग की ही बात तो करूंगा, और टीचर्स आर इन द बिजनेस ऑफ बुक्स। सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या आज की डेट में एजुकेटर्स बुक्स पढ़ रहे हैं। चलिए इसी बात में विचार कीजिए, हाउ मेनी, बहुत बहुत सारे एजुकेटर्स हमारे इस प्रोग्राम को भी सुन रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट इट। इन द मीनवाइल चित्रा मैम के गाए हुए ये दो बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत हम सुने और इसके बाद हम वापस आते हैं।

0: बहुत खूब। ये तो बात हो गई चित्रा मैम आपके प्रोफेशनल लाइफ की, अब आपकी म्यूजिक की बात कर लेते हैं। आपने बताया था कि अभी 7 इयर्स और 8 इयर्स यू हैड गॉन थ्रू आर प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ म्यूजिक, एम आई राइट मैम?
1: करेक्ट।
0: ओके, तो क्लासिकल म्यूजिक भी आपने सीखा अच्छी तरीके से, तो यू नो इन एंड आउट ऑफ द म्यूजिक, बट हम बहुत सिंपल लोग हैं मैम जो आपकी म्यूजिक को सुन रहे हैं, गीतों को सुन रहे हैं, सो आई जस्ट लाइक टू नो हु इज योर फेवरेट सिंगर्स, मतलब दो सिंगर्स की बात कर सकते हैं, एक फीमेल एक मेल, एंड व्हाई आर दे योर फेवरेट?
1: ओके, आपने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट लाइक टू से, आपने कहा यू नो 8 इयर्स इनटू द फील्ड आपने मैंने सीखा है, तो आई मस्ट बी एन एक्सपर्ट? नॉट एट ऑल। आई थिंक संगीत एक ऐसा ओशन है, यू कैन नेवर एवर बी एन एक्सपर्ट इन इट, देर इज स्टिल सो मच मोर टू लर्न, यू नो, सो एवरी आई एम स्टिल लर्निंग विथ एवरी सॉन्ग आई सिंग। लेकिन यस, डेफिनेटली नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट माई फेवरेट सिंगर्स, I think I can divide it into two eras. Maybe I have grown up jaise listening to papa bahut gana sunte the, old gaane, to usme if I see, I think definitely Asha ji is my real you know inspiration in terms of her versatility, mujhe wo bahut bahut pasand hai. And I think if it comes coming to male singers, it's definitely Sonu Nigam. He Sonu Nigam and KK to some extent, definitely. Wow. They are my favorite singers.
0: Okay. That is very interesting. दोस्तों, टाइम एंड अगेन बहुत बहुत सारे सिंगर्स, और ठीक है उनकी बात गलत भी नहीं है, दीज आर सम पैरागॉन्स इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, आशा जी की बात हो गई, लेकिन आई एम रियली सरप्राइज, हैप्पीली सरप्राइज, एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी टू लिसन कि सोनू निगम के बारे में बताया मैम ने और केके के बारे में बताया, एम आई राइट मैम?
1: Absolutely.
0: Wow, that is so beautiful. चलिए, हम लोगों को लगता रहा कि बस म्यूजिक की दुनिया खत्म हो गई मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश, तलत महमूद के साथ, बट नहीं हैं, अभी भी सिंगर्स अच्छे हैं, सोनू निगम ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स केके, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। चलिए दोस्तों, विचार कीजिए आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है, थोड़ा सा ऊपर उठिए रफ़ी साहब से, किशोर कुमार साहब से, और भी बच्चे और भी अच्छे सिंगर्स हमारे चारों तरफ हैं, थोड़ा सा हम आंखें नहीं कान खोलकर उन्हें सुने तो शायद हमें मिल जाएंगे। आइए तब तक इन गीतों का आनंद लें जो मैम ने हमारे लिए तैयार किए, ब्यूटीफुल।

बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल मैम, अमेजिंगली ब्यूटीफुल सिंगिंग. आगे बढ़ते हुए, प्लेजर इज आर्स, प्लेजर इज आर्स. इस म्यूजिक को एंजॉय करना हर शाम को, और उसके बाद बहुत पीसफुल नींद. सचमुच वी आर ब्लेस्ड कि इतने सुंदर गाने हमें सुनने को मिलते हैं. राइट मैम, चलिए थोड़ा सा आपको और समझते हैं, थोड़ा सा और अपने बारे में बताइए. आपके म्यूजिक के बारे में बात हो गई,

0: मेरा जो ग्रेजुएशन है सर जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से किया है, जो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट है मुंबई से. सो आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट, सो दैट इज समथिंग आई ट्राई टू कीप गोइंग. आई कंटिन्यू टू पेंट व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. उसके अलावा मुझे फिल्में देखना पसंद है,
1: वाह,
0: मुझे सीरियल देखना पसंद है. सो एंड थैंकफुली आजकल वी आर इन अ सिचुएशन कि हम पूरा नहीं देख सकते, तो कोई बात नहीं, कुछ देर देख के हम रुक के अगला दिन फिर उसको कंप्लीट कर सकते हैं. सो आई हैव टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट, आई डू वॉच मूवीज.
1: वाह, ब्यूटीफुल। देखो मैम, पेंटिंग के बारे में तो मेरा हाथ थोड़ा टाइट है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन वेयर इज द क्वेश्चन लाइज ऑफ मूवीज, आई ऑल्सो लव वॉचिंग मूवीज, दो ऑफ कोर्स आई ट्राई माई सेल्फ टू बी अरेंज्ड अकॉर्डिंगली सो दैट आई कैन वॉच वन और टू मूवीज इन इन 2 to 3 days। फिर भी किस तरह के इरा की मूवीज की बात कर रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है?
0: I think I'm okay with any type of any era के movies. जब देखा जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट ऑल्सो मैं देखती हूँ, देन मिड 70s 90s के भी देखती हूँ. इनफैक्ट आजकल OTT के आने के बाद हम तो वी कैन इवन गो टू अदर कंट्रीज, मूवीज मेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो भी देखते हैं. You know, and I even like, of course, the recent movies which are made in India. I like watching Malayalam movies. I like watching so many, har ek region ke movies. So I would, any movie that has a good storyline that keeps me gripped, I am okay to watch it. Aisa nahi, as I said again, aaj hum aise zamane mein hai ki subtitles bhi hai, to एंड आई थिंक इट्स ऑल व्हेन इट कम्स टू मूवीज, अगर इमोशंस डिपिक्ट बराबर किया जाता है, इफ यू आर एबल टू ट्रांसलेट दैट टू द ऑडियंस, सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग. सो आई एम नॉट स्पेसिफिक अबाउट एवरीथिंग, बट आई लाइक मूवीज फ्रॉम एवरी.
1: कैन आई पॉसिबली आस्क यू मैम टू बी स्लाइटली मोर स्पेसिफिक, किसी फेवरेट फेवरेट मूवी का नाम ले सकेंगे आप?
0: फेवरेट मूवी, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू रिकलेक्ट. आई वुड से मैंने रिसेंटली एक्चुअली आई वॉच दृश्यम 3, एंड द रीजन आई वॉच दृश्यम 3 वॉज क्योंकि मुझे 1 and 2 इतना पसंद आया दैट आई वॉन्टेड टू गो फॉर द थर्ड वन वेरी यू नो आई रियली वॉन्टेड टू सी इट सो बैडली. So I think that was Drishyam 1 was definitely one of the good movies that I came across. Agar purane zamane ke movies dekha jaye to I think I loved watching movies like Jaane Bhi Do Yaaro.
1: Wow.
0: It was hilarious. So these are the movies that actually keep you light-hearted at the end of the day. Movies like Jaane Bhi Do Yaaro. I think maybe those if I just sit back and recollect, maybe a few more I can, but I think at the moment these come to my mind.
1: You are so right. You are so very right. Ma'am, Jaane Bhi Do Yaaro is one movie which was made with a lot of intelligentsia, humorous, बहुत ही अप्रोप्रिएट ह्यूमर था उसके अंदर, और बहुत इंटेलिजेंट मिशन के साथ उस मूवी को बनाया गया था। अगर दोस्तों ने देखी हो, याद हो दोस्तों, चलिए याद कीजिए। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट कलर्स ऑफ चित्रा जी, उनके कैरेक्टर का, उनकी शख्सियत की डिफरेंट आस्पेक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हुए अभी तो चित्रा जी के इन गानों का मजा लें, एंड देन विल कम बैक।

बहुत खूब। चित्रा जी, अपने किसी बहुत ही अच्छे से दोस्त के बारे में बताइए। मैं मानता हूं बहुत सारे होंगे।

0: Excuse me.
1: Yes, ma'am.
0: Can you please get me Sachin's autograph, please?
1: Sorry, ma'am. The cricketers are very tired and they have requested to be left alone. Hope you understand.
0: Hi.
2: Hi.
0: आप क्रिकेट टीम के साथ हैं?
2: जी.
0: आप सचिन को जानते हैं?
2: हाँ.
0: Can you please get me his autograph? Please.
2: No, no,
0: please.
2: No, no, no, अभी हो.
0: Please, please, but, please. I'm his biggest fan.
2: But right now.
0: Please.
2: क्या नाम है आपका?
0: प्रियंका.
2: प्रियंका.
0: Please, please, please, please, please. Please. Thank you.
3: हालत देख कर
2: एक ऑटोग्राफ दीजिए ना प्लीज. वो बहुत बड़ी फैन है आपकी. प्रियंका. थैंक यू बाजी.
0: थैंक यू. आप करते क्या हैं?
2: मैं कीपर बैट्समैन हूँ.
0: ओह.
2: इंडियन टीम में.
0: सॉरी. आई डिडंट नो.
2: व्हाई आर यू सॉरी? डोंट नो बिकॉज़